FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 मई सन 2026। इस वक्त प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रही हैं। सुबह की 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप

0: के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रिजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का

0: राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। आराधना में आइए सबसे पहले करें अपनी मातृभूमि को नमन इस देश वंदना के साथ।

समूह स्वर में अभी हमने सुनी देश वंदना। आइए अब करें ईश वंदना राजा सिन्हा की गाय इस भजन के साथ।

राघव राज और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना शिव भजन। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए अब प्रभु राम की भक्ति में खो जाएं जगजीत सिंह और साथियों के गाए इस राम भजन के साथ।

0: चित्रा सिंह के गाए इस पारंपरिक भजन के साथ ही आज की आराधना यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:30 हुए हैं। समय हो चला है श्रोताओं कार्यक्रम खेती की बात का। इसमें आज जानकारी दी जाएगी नराई बचाबो खाद बनाबो। वाचन स्वर है अभिनव गौराहा का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। वर्तमान समय के बात करी तो चाहे धान लगाई चाहे गेहूं लगाई, आजकल खेती में यंत्रीकरण के उपयोग बढ़े से गेहूं के धान की कटाई हार्वेस्टर से ट्रैक्टर से आसानी से करे जा सकते हैं। लेकिन खेत में फसल कटे के बाद धान के ठूंठ गेहूं के डंठल यानि नरई या भूसा जिन्हें खेते में छोड़ दिए जाते और जिला किसान भाई मन आगू के समय में दूसर फसल के तैयारी करते तो ओला आगी लगा देते। लेकिन नरई में आग लगाए से नरई भर नहीं जले, भूया के अंदर भूया के ऊपर उपस्थित जम्मो सूक्ष्म जीव तापक्रम बढ़े से समाप्त हो जाते। परिणाम स्वरूप जले हुए भूमि जले हुए माटी जले हुए खेत मृत अवस्था में बदल जाते। जिला सजीव हुए में कई साल लग जाते। कहे जाते सूक्ष्म जीव कई बच्छर में तैयार हो जाते और कुछ घंटा के आगे में जल के भुंजा के नष्ट हो जाते। नरई जलाना खेत के न सिर्फ किसान पर हानिकारक है बल्कि प्रकृति पर्यावरण भूमि के प्रदूषण भी होते। खेत में आगे लगाए से प्रत्यक्ष रूप से बड़े नुकसान होते जेकर बात आज हम करबो। भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाते। भूया में जिन भूसा हवा है रखे हुए गिरे हुए पैरा है ओखर हानि हो जाते। भाई कुछ लाभ तो दे सकते हो चाहे बेचा जाही चाहे हमर गाय गरुआ खा ली। हमर मित्र कीट जिसे केचुआ है सांप है सूक्ष्म जीव आदि सब आग में भुंजा जाते। माटी के संरचना खराब हो जाते। भूया के उपजाऊ शक्ति बढ़ाए वाले सूक्ष्म जीव घलो नष्ट हो जाते। भूया कड़क हो जाते। वैसे भी हार्वेस्टर चल चल के

0: भुयां कड़क हो ही चुके हैं। अगर एक बित्ता से अंदर हम खनबो तो खन नहीं सकबो, अतका पट्ठल हो गए। भुयां के जल धारण क्षमता कम होके जुताई में ज्यादा खर्चा, ऊर्जा के खपत होते, पर्यावरण दूषित होते और धरती के तापमान बढ़ते। देखे है अभी कैसे 45 डिग्री तक पहुंच गिरीस, वो तो पानी गिर गए, नहीं तो का हाल होतेस। कार्बन की मात्रा खेत में कम हो जाते जेखर से उपजाऊपन कम होते। नरई जलाय से जन धन और जंगल के नष्ट होए के संभावना बने रही थे। तो भाई नरई जलाय से होए वाले नुकसान से बचना है और नरई ला आगी नहीं लगाना है। एकरे बर किसान भाई मन से अपील है कि खेत मा एला जलाए नहीं बल्कि ओखर उपयोग करी, खाद बनाए में उपयोग करी। अगर छोटे किसान है, लघु सीमांत किसान है जेखर तीर कम भुयां है और ज्यादा श्रमिक उपलब्ध है, तब फसल के कटाई जहां हो सके मजदूर मन करें, पैरा कम बस। माटी पलटे वाले यंत्र के उपयोग करके गहरा जुताई करा सकत हन जेखर से नरई ऊपर के है ते नीचे चल दही, दब जही और कार्बन के मात्रा बढ़ी। अगर बड़े किसान है, आधुनिक किसान है, अगर भूसा मशीन मतलब था हो ही, तो किसान भाई मन स्टारीपर के भी उपयोग कर सकते। विशेषकर कंबाइन हार्वेस्टर के कटाई के बाद गेहूं और धान के फसल में जो लंबा 8 से 12 इंच के भूसा रिथे ओला ये मशीन से काट के भूसा बनाया जा सकते। ये मशीन ट्रैक्टर के शाफ्ट से चलते और भूसा ट्राली में भरे जाते। मशीन ला सरकार अनुदान में भी उपलब्ध कराते, एकर चेत हमन कर सकत हन। धान के खेत में नरई के उपयोग खाद के रूप में करे बर हैप्पी सीडर मशीन के उपयोग करे जाते, जेमा डंठल ला तोड़ के खेत में बिखारे के व्यवस्था रहते और माटी के संग मिलके ओ हा कार्बनिक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाते। अपन ला बता दी, आप सोचा तो हा कि भाई रासायनिक उर्वरक डाले से ही हमन ला हमार फसल ला पोषण मिल जाए, तो अपन ला बता दी कि भाई रासायनिक खाद ल तोड़े बर भी हमन ला कार्बनिक जिनिस के व्यवस्था करेल पड़ी। 5 साल लगातार बिना गोबर के, बिना दूसर जिनिस के उर्वरक मन से खेती करी है, तो आपके खेती 6वां साल उत्पादन दिए बर सक्षम नहीं रही है। आज आनी बानी के व्यवस्था आगे, आनी बानी के जिनिस आगे है, जेला हमन खेत में डाल के भी पानी से पलो के नरई मन ला सरो के व्यवस्था कर सकत हन। बस व्यवस्था है तो केवल हमन ला जागे के, हमन ला बुद्धि लगाए के, हमर खेत हमला ही सोचना पड़े और अवैया पीढ़ी बर खेत ला स्वस्थ रखे ला पड़ी। तब माटी ला बनाबो स्वस्थ, तबे रही फसल के उत्पादन मस्त। राम राम, जय जोहार।
1: नरई बचाबो, खाद बनाबो, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात FM 103.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:35 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं श्री रामचरित मानस गान का। मुख्य गायन स्वर हैं सविता देवी के, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गौएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि

0: सविता देवी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:45 हुए हैं। समय है चिंतन का। आज का विषय है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आलेख है स्वामी सत्य रूपानंद का।
1: स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्थान पर कहा है, प्रत्येक संत का एक भूतकाल था और प्रत्येक असाधु का एक भविष्य है। उनका यह कथन हमें निरंतर प्रेरणा दे सकता है। संसार के जिन महापुरुषों को हम जानते हैं, यदि हम उनके जीवन पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि उन सभी ने जीवन में महान संघर्ष करके, तपस्या करके वो महानता उपलब्ध की जिसके कारण कि वे लोग महान हुए, प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन में भी एक ऐसा समय था जब वे महापुरुष नहीं थे। उनमें भी मानवीय दुर्बलताएं थीं, उनके जीवन में भी कठिनाइयां थीं, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी, कठिनाइयों के आगे नहीं झुके, बल्कि उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को जीता, कठिनाइयों को दूर किया, उन पर विजय पाई और अपने जीवन में सद्गुणों का विकास किया और इस प्रकार एक दिन महापुरुष हुए। इन महापुरुषों के जीवन पर ध्यान देने से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हम सभी साधारण व्यक्तियों के लिए भी आशा है, निराश होने का कोई कारण नहीं है। हम आज चाहे जहां हो, जिस स्थिति में हो, हम में जितनी भी दुर्बलताएं क्यों न हो, यदि हम ये निश्चय दृढ़तापूर्वक कर लें कि हम भी अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं, तो वो अवश्य ही उज्ज्वल हो उठेगा।

0: हम सभी अपने क्षेत्र में महान हो सकते हैं और अपने जीवन में पूर्णता और तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं, किंतु इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प होकर कठोर परिश्रम करना होगा, अपनी दुर्बलताओं को जीतना होगा, कमर कसकर कठिनाइयों को दूर करना होगा। इसके साथ ही अपने जीवन में सद्गुणों का भी विकास करना होगा। मन को समुन्नत और जीवन को महान बनाने के लिए दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन का एक महान और उदात्त लक्ष्य हो और उस लक्ष्य की ओर हमारी दृष्टि सदैव लगी रहे। संसार के सभी महापुरुषों के जीवन में ये तथ्य स्पष्ट दिख पड़ता है, उन सभी लोगों ने अपने जीवन के लिए एक महान और उदात्त लक्ष्य स्थिर कर रखा था और वे सभी लोग निरपवाद रूप से सदैव अपने जीवन लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते थे। लक्ष्य की ओर दृष्टि रखने पर मनुष्य सावधान रहता है और ऐसी सभी बातों को त्याग देता है जो कि लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती हैं अथवा सहायक नहीं होती। उसी प्रकार वो व्यक्ति उन सभी बातों को जीवन में उतारने की, आचरण में लाने की चेष्टा करता है जो उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है। इस प्रकार उसका आचरण व्यवस्थित, मन संयत और जीवन क्रमशः उन्नत होता जाता है। वो एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम सभी के लिए जीवन विकास का, जीवन को समुन्नत और महान बनाने का अवसर उपलब्ध है। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हम जीवन विकास की ये साधना आज और अभी आरंभ कर सकते हैं। बस आवश्यकता है दृढ़ प्रतिज्ञ होकर कर्म में लग जाने की। एक बार कर्म में लग जाने पर धीरे धीरे रास्ता अपने आप बनता जाता है और हमारा कार्य सहज हो जाता है, प्रगति निश्चित हो जाती है। यही मार्ग है जीवन की सफलता और सार्थकता का।
1: कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आलेख था स्वामी सत्य रूपानंद का। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:50 हुए हैं। ये समय होता है श्रोताओं आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने का। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज दिन में 4 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाएगा संध्या 5 बजे।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का समय होगा हर रोज की तरह सुबह 7:05 पर। 7:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे का, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन सकते हैं आज सुबह 8:30 पर, और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद सुनिएगा दिन में 10:00। कार्यक्रम नए तराने का समय होगा दिन में 10:30 पर।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: संध्या 5:35 पर होगी महिला सभा। इसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा डिजिटल साक्षरता का महत्व। साथ ही क्रम महिला मंडली में सुनिएगा जांजगीर चांपा की पैरा आर्ट कलाकार श्रीमती उषा बनवा किरण, सविता पटेल और रिया पटेल से ली गई बातचीत। संध्या 7:20 पर चलेंगे ग्राम सभा की ओर। इसमें बेरा की कोट का विषय होगा माटी जांच पर ध्यान देवा। संध्या 7:30 का समय होगा कार्यक्रम किसान वाणी का। इसमें आज की बात का विषय होगा सॉइल हेल्थ कार्ड। साथ ही सुनेगा फोन इन कार्यक्रम, विषय होगा धान की फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन। इस विषय पर आपके सवालों के जवाब देंगे कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक विशेषज्ञ डॉक्टर आर के एस तिवारी। कार्यक्रम के संचालक होंगे पैसा खूब भैया। कार्यक्रम चिट्ठी मिली सुनिएगा आज रात्रि 8:00। शास्त्रीय संगीत का समय होगा रात्रि 8:20 पर। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने आप सुन सकते हैं संध्या 6:20 और संध्या 7:00। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा संध्या 5:05 पर। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी रायपुर से समाचार अपने निर्धारित समय पर अनुप्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में संस्कृत व हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारत वियतनाम देशयोर् मध्ये डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजाः, चिकित्सा विनिमयनम्, सार्वजनिक क्षेत्रस्य लेखा परीक्षा, डिजिटल व्यवहारः, संस्कृतिः, पर्यटनम् इत्यादिषु बहुविध क्षेत्रेषु सन्धयः कृताः। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपतिः टोलाम इत्यनयोर्मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं सन्धि विज्ञप्तिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि। संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसम्बन्धं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः।
3: कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक

0: एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
1: राष्ट्रपति ही द्रौपदी मुर्मू ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती। आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारत वियतनाम सम्बन्धस्य उन्नत व्यापक रणनीतिक सहयोगस्य अभिवर्धनम् न केवलं द्विपक्षीय सहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपितु क्षेत्रे शान्ति समृद्धौ अपि योगदानं करिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान अद्य जयपुरे संयुक्त सेनापति सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य शोभां वर्धयिष्यतः। द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अस्य मुख्य विषयो वर्तते नूतन क्षेत्रेषु सैन्य क्षमता इति। एकस्मिन् उद्वेगकर घटनायां पश्चिम बंगालस्य उत्तर चतुर्विंशतिः परगणा मण्डलस्य मध्यग्रामे भाजपा दलस्य नेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य निकट सहायकः चन्द्रनाथ रथः अज्ञात आक्रमणकारिभिः भुशुण्डिकया प्रहृतः। समाचारानुसारं गतरात्रौ दोहरिया नगरे मोटरबाइक चालकाः दुष्टाः आततायिनः तस्य कार्यानस्य उपरि यथेच्छं गोलिकाप्रहारं कृतवन्तः। चन्द्रनाथं तत्क्षणमेव स्थानीय चिकित्सालये प्रेषितः, परन्तु सः मृतः इति घोषितः। तस्य चालकः बुद्धदेव बेरा अपि गोलिकाभिः बहुधा व्रणितः, अथ गंभीरस्थितौ कोलकाता चिकित्सालये स्थानान्तरितः वर्तते। बिहारस्य मुख्यमंत्री साम्राट चौधरी अद्य तस्य मंत्रिमंडलस्य विस्तारं करिष्यति। पटनानगरस्य गांधी मैदानम् इत्यत्र अद्य मध्याह्ने 12 वादने आयोजिष्यमाणे शपथग्रहण समारोहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, एनडीए इति राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः च भागं गृहीष्यन्ति। अस्माकं संवाददात्रा सूचितं यत् पूर्व सर्वकारे अनुसृतस्य सूत्रस्य आधारेण मंत्रिमंडल विस्तारः क्रियते। प्रायः 15 भाजपा विधायकाः, 14 जेडीयू विधायकाः मंत्रिरूपेण शपथं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः परमाबीरो इत्यत्र तस्य सूरीनाम समकक्षेन मेलविन बोबा इत्यनेन सह मिलितवान्। भारतीय सूरीनाम प्रतिनिधि मंडलानि नवम संयुक्त आयोग सभायां भारत सूरीनाम संबंधानां व्यापक समीक्षायाः आयोजनं कृतवन्तः। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सनराइजर्स हैदराबाद दलेन पंजाब किंग्स दलं 33 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स अथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलयोर्मध्ये लखनऊ नगरस्य भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडांगणे प्रतिस्पर्धा भविष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
0: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी

और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों पर आधारित हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता

0: आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से स्थित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेल्विन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए नए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक शक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हमले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। इसके साथ ही समाचार
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 7:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

तूफान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर बिखरी पड़ी थी। लेकिन उसी दृश्य में एक और तस्वीर भी थी। मैंने देखा वही लोग जो रात भर डर और नुकसान से जूझते रहे, सुबह फिर से अपने घरों को संवारने में जुटे हुए थे। किसी के हाथ में हथौड़ा था तो कोई टीन की चादर संभाल रहा था, तो कोई टूटी दीवारों को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगा था। उनके चेहरों पर थकान जरूर थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था हौसला। एक बुजुर्ग को मैंने देखा धीरे धीरे ईंट जोड़ते हुए, और उनके पास खड़ा एक छोटा बच्चा जो अपने छोटे छोटे हाथों से मदद कर रहा था। उस पल मुझे लगा तूफान छते उड़ा सकती हैं, हौसलों को नहीं। श्रोताओं, जिंदगी में तूफान आते रहेंगे, कभी प्रकृति के रूप में तो कभी परिस्थितियों के रूप में, लेकिन हर बार हमें इन्हीं लोगों से सीख लेनी है कि गिरकर भी कैसे उठना है और टूटकर भी कैसे फिर से जुड़ना है।

0: आज सुबह
1: श्रोताओं नमस्कार। सुबह की इस ताजगी भरी हवा के साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र पुष्पा साव। करती हूं आप सभी का वंदन और अभिनंदन। श्रोताओं मंगलवार रात में आए आंधी तूफान को हम सब ने महसूस किया। तेज हवाएं, उड़ती चीजें और एक अजीब सी बेचैनी। सुबह जब मैं बाहर सैर पर निकली तो मैंने देखा कुछ घरों की छतें उड़ चुकी थी। दीवारों पर

तो श्रोताओं, आइए इस नई सुबह में हम भी यह प्रण लें कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम अपने हौसलों की उड़ान को कभी कम नहीं होने देंगे, क्योंकि छतें उड़ सकती हैं लेकिन सपनों की नींव नहीं।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम में यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी देने का, तो आइए सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट उमा शंकर पांडे से।
2: नमस्कार, मैं हूं उमा शंकर पांडे। लीजिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर, अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के तत्वावधान में आज पीपीटी की परीक्षा ली जा रही है, जिसमें 1045 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा पूर्वान 10 बजे से अपराह्न 1:15 बजे तक होगी। सभी परीक्षार्थियों को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं। साथ ही हमेशा की तरह आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, शहर की सड़कों में कई स्थानों में अभी निर्माण कार्य जारी है, जिससे सड़कें संकीर्ण हो गई है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आए भीषण तूफान के कारण झाड़, पोल, टीन टप्पर, पोस्टर आदि के गिरने से अभी कुछ सड़कों में ये ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, जिससे आवागमन की गति कम है। अतः आप सभी अपने घर से जल्दी निकलें, ताकि परीक्षा में विलंब जैसे हालात ना बने। मित्रों, प्रतिवर्षानुसार स्थानीय पुलिस मैदान में मुस्लिम समाज का विशाल धार्मिक आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है, जो दिनांक 10/5/2026 तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आयोजन के प्रथम दिन आज संदल चादर जुलूस निकाले जाने की योजना है। तय कार्यक्रम के अनुसार आज शाम 6 बजे यह संदल चादर जुलूस जूनी लाइन से चलकर सदर बाजार, गोल बाजार, खपरगंज, मसानगंज होते हुए पुलिस लाइन आएगा। संदल चादर जुलूस में चल रहे सभी वाहन एवं सभी सदस्यगण सड़क में कुछ इस प्रकार चलें, जिससे आम आवागमन तनिक भी प्रभावित ना हो, और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे वाहन 1 सेकंड के लिए भी न रुके, यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव गांव तक, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों, प्रायः देखा जाता है लोग अपने बहुत छोटे बच्चों को, जो अभी किसी प्रकार बैठना ही सीखे हैं, खड़ा होना या चलना बिल्कुल ही नहीं जानते, ऐसे बच्चों को दोपहिया वाहन की टंकी में बैठाकर तमाम प्रकार के वाहनों से भरी सड़क में घूमते हैं। ऐसे बच्चे वाहन के चलते ही सो जाते हैं, तब इन्हें संभालना बहुत कठिन होता है। अतः ऐसे रिस्क कभी भी मोल ना लेवें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये तो था आज का ट्रैफिक अपडेट। इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज दिन में 10:30 से 11 बजे के बीच। और अब श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। तेज कदमों की रफ्तार, ऊंची उड़ान का विस्तार, खेलों से बनता है जीवन, यही है असली आधार। इन्हीं प्रेरक भावनाओं के साथ आज हम मना रहे हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस। श्रोताओं, हर साल मई महीने की 7 तारीख को मनाया जाने वाला यह दिवस युवाओं में खेल, विशेषकर एथलेटिक्स के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाने के लिए समर्पित है। श्रोताओं, एथलेटिक्स एक प्रकार का ट्रैक एंड फील्ड खेल है, जिसमें दौड़ना, कूदना, चलना और फेंकना शामिल है। ये व्यक्तिगत खेल होते हैं और ओलंपिक खेलों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये सिर्फ खेल नहीं होते, बल्कि हमारे शरीर और मन को मजबूत बनाने का सबसे सरल और प्रभावी

भी माध्यम है। इस दिन की शुरुआत साथियों अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा की गई ताकि दुनिया भर के युवाओं को खेलों से जोड़ा जा सके। भारत ने भी एथलेटिक्स के क्षेत्र में कई गौरवशाली क्षण देखे हैं। जब भी हम मैदान में तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। आज के युवा खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा एक प्रेरणा है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। और हमारे अंचल में हमारी छत्तीसगढ़ में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है श्रोताओं। छत्तीसगढ़ के युवा धावक अनिमेश कुजूर जिसने अपनी रफ्तार से देश का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यह सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक संदेश है, अगर हौसला हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इसी तरह बिलासपुर के रोहन शाह जिन्होंने विश्व मंच पर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते और कवर्धा की छोटी मेहरा जिन्होंने शारीरिक चुनौतियों को पीछे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतकर साबित कर दिया कि हौसलों की कोई सीमा नहीं होती। श्रोताओं ये सभी खिलाड़ी हमें एक ही बात सिखाते हैं, संसाधन कम हो सकते हैं लेकिन सपने और मेहनत कभी छोटे नहीं होते।

0: अपने घर। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: पुनः स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम आज सुबह में। कार्यक्रम में बढ़ने से पहले श्रोताओं हम आपको एक सूचना दे दें कि प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में आज गुरुवार दिनांक 7 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व एवं सावधानियां। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665592। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आज 7 मई 2026 और 8 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोता बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, जहां ज्ञान मुक्त हो, जहां दुनिया संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा टुकड़ों में विभाजित ना हो, जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो। श्रोताओं, इन शब्दों में सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक पूरे समाज का सपना छिपा है। एक ऐसा समाज जहां स्वतंत्रता, ज्ञान और मानवता का वास हो। आज 7 मई को हम स्मरण कर रहे हैं श्रोताओं महान कवि, दार्शनिक और विश्वविख्यात साहित्यकार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। आज उनकी जन्म जयंती है। श्रोताओं, गुरुदेव टैगोर केवल एक कवि ही नहीं थे, वे एक विचार थे, एक चेतना थे। वे पहले एशियाई साहित्यकार थे जिन्हें उनकी अमर कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी रचनाएं आज भी हमें सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। आज के दौर में जब दुनिया तेजी से बदल रही है, तकनीक आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदनाएं पीछे छूटती नजर आती हैं। ऐसे समय में टैगोर जी की शिक्षा और विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। वे कहते थे, शिक्षा का उद्देश्य

केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना है। आज जब हम प्रतिस्पर्धा की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना होगा कि इंसानियत और संवेदनशीलता ही हमारी असली पहचान है। गुरुदेव ने प्रकृति से प्रेम करना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध कितना गहरा है। आज जब पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं तो उनके विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं।

गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के इस पावन अवसर पर हम भी अपने भीतर के भय को दूर कर ज्ञान और संवेदनशीलता को अपनाएं और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। इसी संदेश के साथ अब समय हो चला है कार्यक्रम आज सुबह से विदा लेकर दूसरी कार्यक्रम की ओर कदम बढ़ाने का। तो दीजिए अपनी रेडियो मित्र पुष्पा को अनुमति और आप जुड़े रहिए आकाशवाणी बिलासपुर के साथ, जहां हर शब्द में है अपनापन।

आज सुबह। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 7:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सदाबहार नगमे का।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चरस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी की रचना है और लक्ष्मी

0: www.delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुनः स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। कार्यक्रम में अगला नगमा हमने आपके लिए लिया है माचिस फिल्म से। ए हरिहरन और सुरेश वाडेकर की आवाजें, गुलजार के लिखे बोल और विशाल का संगीत।

0: छात्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना लव स्टोरी फिल्म का गीत, आनंद बख्शी की रचना और आरडी बर्मन का संगीत।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स।

0: एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना को, जिसे अपनी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने और फिल्म का नाम है लोफर।

किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वर में अभी आपने सुना महान फिल्म का गीत, अनजान की रचना थी और आरडी बर्मन का संगीत। चलिए अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं मझधार फिल्म से। आवाजें हैं एसपी बालसुब्रमण्यम और अलका याग्निक की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: एस पी बाल सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आप सुन रही थी मझधार फिल्म का ये नगमा, जिसे लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंक हम यहीं संपन्न करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के

गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को

0: स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएम की अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है।

0: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
1: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है। हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमरीका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप

0: से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमंग होस्ट ऑफ डिग्निटरीज टू अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी इन पटना। Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party Ram Vilas and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai today. More from our correspondent.
3: In Keralam, meeting of the newly elected legislatures of Congress will be held today morning at Thiruvananthapuram.

माटी के स्वर सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जय जोहार, राम राम। आपकी ढेर सारे पत्रों के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो मित्र पुष्पा साहब। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत आपके ही पसंदीदा लोकगीतों के साथ। पहला लोकगीत हमने लिया है संतोष शुक्ला और साथी की आवाज़ों में, और इस लोकगीत को पसंद करने के लिए पत्र भेजा है आप सभी ने। आप हैं धरसीवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा और अल्पना यादव ने। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से ये खत आया है छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव का। साथ में है कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। रुआबाधा सनिचरी बाजार भिलाई से हैं सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया जैन, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। आपने भी इसी लोकगीत के लिए पत्र भेजा है। पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से हमारे श्रोता साथी हैं पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बंछोर। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। ये खत आया है हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से, रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू, सनी और कोमल यादव का। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर संतोष शुक्ला और

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। और इस कार्यक्रम में अगला फरमाइशी लोक गीत हमने लिया है नरेश निर्मलकर की आवाज़ में, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। आप हैं ग्राम रसेड़ा अकलतरा सी, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या साहू और डिकेश कुमार साहू, साथ में हैं वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। ये खत आया है सुभाष वार्ड भाटापारा से श्रीमती अमृता यादव, श्रीमती पार्वती यादव, ईश्वरी लक्ष्मी और कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव का। हथबंध नेवधा से हैं दुलारी यादव, प्रियंका और कुमारी प्रीति यादव। शांतिनगर भाटापारा से ही हमारे श्रोता साथी हैं रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, आयाज अलफैज, महजबीन बानो, शादिया खान और हजीरून निशा। आपने भी इसी लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। मुनगाड़ी पाली कोरबा से हैं विकास, दीप्ति डिकसेना, प्रवीण चंद्रमणि, बेबी नित्या डिकसेना। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। बेमेतरा से हमारे श्रोता साथी हैं सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर नरेश निर्मलकर का गाया ये लोकगीत।

0: देखा। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर और कार्यक्रम चल रहा है माटी के स्वर। श्रोतो, कार्यक्रम में आपके पसंदीदा लोकगीतों को हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये सूचना। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में आज गुरुवार दिनांक 7 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसलों में।

रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व एवं सावधानियां। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग का प्रसारण आज 7 मई 2026 और 8 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और श्रोता, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं आपके भेजे फरमाइशी लोकगीत को। तो अगला लोकगीत हमने लिया है अनसुईया मानिकपुरी और साथियों की आवाज़ों में, और इस लोकगीत को पसंद किया है आप सभी ने। आप हैं तेलीपारा बिलासपुर से रंजन साहू, बेबी शानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। शीतलानगर दुर्ग से हमारे श्रोता साथी हैं शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। ग्राम रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा। हठौत बाजार लाहौत से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। इंदिरा नगर रायगढ़ से ये खत आया है शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम रजा का। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर अनसुईया मानिकपुरी और साथियों का गाया ये लोकगीत।

कार्यक्रम का अंतिम लोक गीत हमने लिया है शैल कुमार और किरण मरकाम की आवाज़ों में, और इस लोक गीत को पसंद किया है आप सभी ने। आप हैं भाटापारा से दान सिंह रावत दानू, पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत और नीरज रावत। ये खत आया है नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का। आपने भी इसी लोकगीत के लिए फरमाइश भेजी है। भाटापारा दतरेंगी से हमारे श्रोता साथी हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। ये खताया है बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल का। नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज, आप हैं लुथरा खमरिया से। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर शैल कुमार और किरण मरकाम का गाया ये लोकगीत।

0: शैल कुमार और किरण मरकाम के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम माटी के स्वर हम यहीं संपन्न करते हैं। कार्यक्रम में पत्र भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम माटी के स्वर द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 नूतन कॉलोनी सरकंडा आकाशवाणी बिलासपुर। हमारा पिन नंबर है 495006। तो दीजिए अब हमें अनुमति इस कार्यक्रम से जिसका नाम है माटी के स्वर। अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 9 बजे हैं। आइए अब जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: घोषाल की आवाजों में रश्मि विराट के बोल थे और जीत गांगुली की का संगीत था। और अब बारी है एक छोटे से अंतराल की।

0: एंड विजुअल समिट वेब्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: FM बैंड 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर और कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में हम आपके ही पसंदीदा फिल्मी गीतों को लेकर आते हैं। तो अगला आपका पसंदीदा फिल्मी गीत हमने लिया है सुनैना फिल्म से, यशुदास की आवाज़, रविंद्र जैन का गीत और संगीत। पसंद करते हमारे श्रोता साथी हैं ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त, नैला बोड़सरा जांजगीर से हैं हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई ठगिया देवी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद, मोंगरा देवी मिश्रा और प्यारे लाल मिश्रा। दतरेंगी भाटापारा से हमारे श्रोता साथी हैं नोखीलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। ग्राम बुड़गहन से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। इसी गीत को पसंद किया है भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुआराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम लतेल साहू ने। मारवाड़ी कुआं भाटापारा से ही हैं सियाराम, अश्वनी पांडे, सोनाडी से हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से हैं नीलू मेघ। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर यशुदास की आवाज़ में सुनैना फिल्म का ये नगमा, जिसे संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने और रविंद्र जैन ने ही इस गीत को लिखा है।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो

आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम आपकी पसंद में और भी नगमे हम आपके पसंदीदा नगमे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक सूचना। श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में आज गुरुवार दिनांक 7 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियाँ, महत्व एवं सावधानियाँ। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 2665592। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण आज 7 मई 2026 और 8 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, तो आप अपना फ़ोन उठाइए और हमारे फ़ोन नंबर से मिलाइए। देर किस बात की, सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर, सुनते हैं ममता फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और रोशन का संगीत पसंदकर्ता हमारे श्रोता साथी हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। गांधी चौक रोपण पंजाब से हमारे श्रोता साथी हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। ये खत आया है जाफराबाद जिला जालान से श्री सुधाकर राजे जाधव का, और उनके साथी हैं डॉक्टर प्रशांत राजे।

जाधव, जगुताई, साक्षिताई, संचित, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख। देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मायाराम रजक, पुनेश्वर फानीश्वर, मुकेश कुमार, कुमारी हाव्या और कुमारी तानिया रजक। आपने भी इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है। डूंगरगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ से ये खत आया है रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन का। चांदनी चौक गंडे पटेरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू और रविंद्र सेन, यहीं से है खुशी रौनक सेन। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ममता फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और रोशन का संगीत।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: कार्यक्रम आपकी पसंद का अंतिम नगमा लीजिए पेश है मन मंदिर फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल स्वर, राजेंद्र कृष्ण के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, कुमारी आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा और मनोज कुमार कंवर। शांतिनगर पाली से हैं विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और उनका समस्त कोरम परिवार। बोड़सरा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली, प्रियांशु साहू। गौतम नगर जिला नांदेड़ से हैं प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले। जांजगीर महेंदा से हमारे श्रोता साथी हैं रामनारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुमलता, खुशबू कुमारी कश्यप। ये खत आया है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का। भाटापारा से हैं मिलऊ मानिकपुरी, संतोष, संदीप, अजीत, लक्की, भार्गव, विलक्ष और विवान मानिकपुरी। यहीं से हैं बिरझा, संजना, संगीता, अंजलि और चारू मानिकपुरी। तो चलिए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर मन मंदिर फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए मन मंदिर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद हमें ही संपन्न करते हैं। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।

0: अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाजों में अभी आप सुन रही थी केसरी फिल्म का गीत। गीत और संगीत तनिष्क बख्शी का था।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती
2: सुरीली संदली।
0: पुनः स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम नए तराने में। चलिए अब सुनते हैं लुका छुपी फिल्म का ये नगमा अखिल सचदेव और ध्वनि भानुशाली की आवाजों में। कुणाल वर्मा ने गीत लिखा है और अभिजीत वगानी ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: आइए अब सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज में लव आजकल फिल्म का ये नगमा। इरशाद कामिल के बोल हैं और प्रीतम का संगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय हो चला है ट्रैफिक अपडेट के पुनः प्रसारण का, तो आइए अब सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर पांडे। लीजिए प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर, अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के तत्वावधान में आज पीपीटी की परीक्षा ली जा रही है, जिसमें 1045 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा पूर्वान 10 बजे से अपराह्न 1:15 बजे तक होगी। सभी परीक्षार्थियों को बिलासपुर पुलिस की शुभकामनाएं। साथ ही हमेशा की तरह आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, शहर की सड़कों में कई स्थानों में अभी निर्माण कार्य जारी है, जिससे सड़कें संकीर्ण हो गई है। इसके अतिरिक्त हाल ही में आए भीषण तूफान के कारण झाड़, पोल, टीन टप्पर, पोस्टर आदि के गिरने से अभी कुछ सड़कों में ये ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, जिससे आवागमन की गति कम है। अतः आप सभी अपने घर से जल्दी निकलें, ताकि परीक्षा में विलंब जैसे हालात ना बने। मित्रों, प्रतिवर्षानुसार स्थानीय पुलिस मैदान में मुस्लिम समाज का विशाल धार्मिक आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा है, जो दिनांक 10/5/2026 तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। आयोजन के प्रथम दिन आज संदल चादर जुलूस निकाले जाने की योजना है। तय कार्यक्रम के अनुसार आज शाम 6 बजे यह संदल चादर जुलूस चूनी लाइन से चलकर सदर बाजार, गोल बाजार, खपरगंज, मसानगंज होते हुए पुलिस लाइन आएगा। संदल चादर जुलूस में चल रहे सभी वाहन एवं सभी सदस्यगण सड़क में कुछ इस प्रकार चलें, जिससे आम आवागमन तनिक भी प्रभावित ना हो, और एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसे वाहन 1 सेकंड के लिए भी न रुके, यह सुनिश्चित करें। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव गांव तक, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। साथियों, प्रायः देखा जाता है लोग अपने बहुत छोटे बच्चों को, जो अभी किसी प्रकार बैठना ही सीखे हैं, खड़ा होना या चलना बिल्कुल ही नहीं जानते, ऐसे बच्चों को दो पहिया वाहन की टंकी में बैठाकर तमाम प्रकार के वाहनों से भरी सड़क में घूमते हैं। ऐसे बच्चे वाहन के चलते ही सो जाते हैं, तब इन्हें संभालना बहुत कठिन होता है। अतः ऐसे रिस्क कभी भी मोल ना ले दें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: अभी आपने सुना आज का ट्रैफिक अपडेट, और श्रोताओं अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और सुनते हैं राहत फतेह अली खां की आवाज में मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया है सोहेल सेन ने।
2: मुन्नी और शम्स की रामपुर, मेरठ और इटावा से

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे

0: से अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप, आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

दंगल फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत। कार्यक्रम का अंतिम नगमा लीजिए पेश है पैडमैन फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज़, कौशल मुनीर की रचना और अमित त्रिवेदी का संगीत।

पैडमैन फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने हम यहीं संपन्न करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
0: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
0: जी,
2: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी, आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
2: जी, है ना? बिल्कुल।
0: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
2: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को

0: धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
1: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या है।
0: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड

0: बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: जी, एक रोचक बात और जान लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
0: जी,
1: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंक्टन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
0: जी,
1: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है, वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है?
1: ये देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
0: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
1: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
0: लेकिन अब एक खतरा है
1: जी
0: जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
1: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है
0: जी
1: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
0: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
1: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
0: जी,
1: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
0: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई दो कारण बताइए।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-44-0559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
1: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी

0: छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते, उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की होश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौं से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियां। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
2: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
1: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नि और शुद्ध नि प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय

रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं, उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
1: आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। ये कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले और अदनान सामी की आवाजें थीं। अदनान सामी का ही संगीत और कलाम था रियाजुर रहमान सागर का। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

साहिर लुधियानवी की ये रचना थी रोशन की तर्ज पर, आवाजें आशा भोसले और साथियों की, फिल्म थी दिल ही तो है। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। चलिए अब हम बढ़ेंगे जसपिंदर नरूला की आवाज की ओर। एल्बम है कुछ कुछ दिल में।

कुछ कुछ दिल में एल्बम से आप सुन रहे थे जसपिंदर नरूला की आवाज, और अब आप सुनेंगे श्रीकांत एल्बम से जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाजें। श्लोक लाल के बोल हैं और तनिष्क बागची का म्यूजिक।

श्रीकांत एल्बम से आपने सुना जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार का गाया ये गाना। श्लोक लाल ने इसे लिखा था, तनिष्क बागची का सुरीला संगीत था और अब निदा फाजली का कलाम, जगजीत सिंह की आवाज, एल्बम गम बड़े आते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन की 11:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज होगा चावल उत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस का आयोजन। और महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन के शुल्क में 50% की छूट, अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित। और अब समाचार विस्तार से। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। नई श्रम संहिताओं के तहत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच की राष्ट्रव्यापी पहल का आज शुभारंभ होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न हिस्सों में स्थित 11 प्रमुख ईएसआई अस्पतालों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर के रावाभाटा स्थित ईएसआई अस्पताल में आयोजित राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह में श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राज्य बीमा निगम के पदाधिकारी तथा श्रमिक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के बीमित श्रमिकों को इस निःशुल्क स्वास्थ्य जांच सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज चावल उत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस का आयोजन किया जाएगा। रोजगार दिवस पर ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और रोजगार के नए अवसरों पर कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित मामलों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए मोर गांव मोर पानी मोर तरिया अभियान के तहत नवा तरिया आय के जरिया थीम पर विशेष चर्चा और कार्य होंगे। राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन के पंजीयन शुल्क में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। ये प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में किसानों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम के अनुसार चेम्स पोर्टल के माध्यम से किसान आवेदन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए आवेदन कल से, शाकंभरी योजना के तहत सिंचाई पंपों के लिए 11 मई से और ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर सहित अन्य कृषि यंत्रों के लिए आवेदन 15 मई से लिए जाएंगे। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि दस्तावेज जरूरी होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ

0: आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। रायपुर के कुम्हारी पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और नकदी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज होगा चावल उत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस का आयोजन और महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन के शुल्क में 50% की छूट, अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11:59 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: हमारा प्रसारण आप सुन।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
4: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है।

भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये कार्रवाई ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण GMADA से भूमि उपयोग परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त करने में हुई धोखाधड़ी और जनता से करोड़ों रुपए की ठगी के सिलसिले में की जा रही है। निदेशालय नितिन गोहल की तलाश कर रही है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। घरेलू

0: कर रही है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

निगाहों की जादूगरी। आप सुन रहे थे ये गाना शबनम फिल्म से, लता मंगेशकर का स्वर था, प्रेम धवन की रचना और उषा खन्ना का संगीत। साथियों, आज के यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन के कुछ नायाब गीत।

0: प्रेम धवन की ये रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम के। युगल स्वर थे, फिल्म थी सावन। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं आकाशवाणी पूरा जो है।

0: हमारे सुनने वालों के लिए
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
0: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
2: चलिए अब यादों की महफिल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, जो प्रेम धवन की रचना है, सलिल चौधरी का संगीत, हेमंत कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर, फिल्म का नाम तांगे वाली।

तांगे वाली फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन की रचनाएं। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ें, जिसमें स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों के। इस गाने में गीत और संगीत प्रेम धवन का, फिल्म का नाम शहीद।

0: प्रेम धवन की यह रचना आप सुन रहे थे, जिसका संगीत तैयार किया था संगीतकार चित्रगुप्त ने। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। जबक फिल्म का ये दो गाना भी आप सुन रहे थे। बढ़ेंगे अगले गाने की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

बड़ा ही सुरीला ये दो गाना आप सुन रहे थे, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत प्रेम धवन की रचना थी और संगीतकार थे चित्रगुप्त। चलिए अब बढ़ते हैं अगले गाने की बात। वल्लाह क्या बात है।

वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, ये नाम है फिल्म का जिसका गीत आपने अभी सुना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। प्रेम धवन के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रोशन ने। और अब आगे बढ़ते हैं एक फूल तोमाली फिल्म के इस गाने के साथ।

0: एक फूल दो माली फिल्म से आपने ये गीत सुना। आशा भोसले और सखियों के स्वर थे। प्रेम धवन की रचना थी, रवि का संगीत। अगले गाने में भी रवि का ही संगीत है, प्रेम धवन की रचना है और इस बार आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी का स्वर है। ये दो गाना आप सुनेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले ये संदेश। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: पहलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में तराना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रेम धवन के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार अनिल बिस्वास ने।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे हंसराज बहल के संगीत से सजा गाना मिलन फिल्म से, जिसे प्रेम धवन ने लिखा था। अगली रचना में गीत संगीत प्रेम धवन का, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम पवित्र पापी।

पवित्र पापी फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाए जा रहे हैं सुप्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार प्रेम धवन की रचनाएं। और अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, प्रेम धवन का संगीत, मन्ना डे का स्वर, फिल्म का नाम काबुलीवाला।

मन्ना डे के गायक काबुलीवाला फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओ नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, समय और जिंदगी दुनिया के दो बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माने जाते हैं। जिंदगी सिखाती है समय का सदुपयोग और समय सिखाता है जिंदगी की अहमियत। तो चलिए आज का सुरीला सफर शुरू किया जाए, और उससे पहले आपको वो इबारत, वो टेक्स्ट पढ़कर मैं फिर से एक बार आपको सुनाऊंगी, ताकि आप उस टेक्स्ट में शब्द ढूंढ के गाने ढूंढ सकें। तो साथियों, आज के लिए जो टेक्स्ट हमने पोस्ट किया है आप तक पहुंच भी गया है, मैं आपको एक बार फिर से पढ़कर सुनाती हूँ। समय कभी रुकता नहीं, हर घड़ी हर पल, इसके साथ हमारी जिंदगी भी कई रंगों में बदलती रहती है। बचपन की नादानियाँ, यौवन के सपने और वृद्धावस्था का अनुभव, ये सभी समय के अलग अलग पड़ाव हैं। बचपन में छोटी सी टॉफी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। यौवन का दौर खुशी के मायने बदल देता है। सपने बड़े हो जाते हैं, आंखों से दिल में उतरने लगती है किसी की तस्वीर। समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। बदलते रिश्तों में कुछ करीबी पीछे छूटते जाते हैं, कुछ अजनबी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। समय का दामन थामे कल आज और कल के साथ जिंदगी बदलती रहेगी। तो समय के साथ तुम भी चलो, हम भी चलें, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें। तो साथियों, ये था आज का टेक्स्ट, आप तक पहुंच भी गया है, और मैं बीच में एक बार फिर इस टेक्स्ट को रिपीट करूंगी और उन शब्दों पर थोड़ा सा पॉज करूंगी, ताकि आप समझ सकें कि वो शब्द कौन से हैं जो हमने चुने हैं। बहरहाल, आपने बहुत सारे मैसेजेस में भेजे हैं, वो काफ़ी हद तक हमसे मिलते जुलते हैं, है ना। वैसे हमारी एक साथी लिखती हैं कि जीवन एक बहती नदी की तरह है, जो समय के किनारों से टकरा कर अपने रास्ते बदलती रहती है। ये बदलते मौसमों की तरह है, जहां बचपन की बेफिक्र बहार, यौवन की चिलचिलाती धूप और बुढ़ापे की ठंडी शामें सब अपनी अपनी खूबसूरती लिए हुए हैं। वक्त के इस सफर में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं, बचपन के खिलौने, पुराने घर और वो दोस्त जो अब सिर्फ यादों में बसते हैं। पर साथ ही हम बहुत कुछ नया पाते भी हैं, नए रिश्ते, नए जिम्मेदारियां और नए तजुर्बे। सच तो ये है कि ठहराव मौत की निशानी है और चलना जिंदगी का नाम। तो क्यों ना वक्त की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलें, हर मोड़ पर मिलने वाले नए रंगों को अपनाएं और अपनी जिंदगी की किताब के हर पन्ने को मुस्कुराहट की स्याही से लिखकर इसे एक हसीन दास्तान बना लें। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपने लिखी हैं। तो साथियों, विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आज आपके साथ हूं मैं, शिफाली कपूर।

वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए भाई, आप सबके कमेंट्स के सिलसिला हम जारी रखेंगे। अब फिलहाल हंसते मुस्कुराते हम भी शुरू करें आज का सुरीला सफर। सुनिए ये गीत। और हाँ, जरा बताइए तो आप समय के कितने पाबंद हैं।

खून भरी मांग फिल्म के इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के कार्यक्रम सुरीला सफर की। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि भाई वाह शानदार गीत से आगाज, हंसते हंसते कट जाएं रास्ते। तो भाई जिंदगी का सफर है, हंसते मुस्कुराते कटे तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी को हमने पूछा था कि आप समय के कितने पाबंद हैं, तो भाई सभी ने अपनी अपनी पाबंदियां लिखी हैं कि हम कितने पाबंद हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हम तो समय के बहुत पाबंद हैं, उठना सोना खाना पीना पूजा पाठ सब समय के अनुसार होता है। सच बात है भाई, समय के साथ चलना भी पड़ता है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि इस चिलचिलाती धूप में भी सुरीले गानों की बौछार विविध भारती से होगी जो हम श्रोताओं को ठंडक का सुकून प्रदान करेगी। विविध भारती सचमुच मनभावन चैनल है जो दिल को तरोताजा कर देती है। एक साथ ही लिखते हैं कि समय समय की बात है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जीवन की बगियार नए गुजरते बचपन जवानी बुढ़ापा के साथ जिंदगी रिश्तों के हंसती बिखरती रिश्तों जिंदगी बदलते रिश्तों के साथ जीना अवश्य सिखा देती है। और आगे लिखा है तो घबराएं नहीं, जिंदगी सुख दुख दोनों में बदलते रिश्तों की बुनियाद भी रखती है। तो आगे दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि समय के पाबंद पूरी तरह से तो नहीं है हम, पर हैं जहां समय पर पहुंचना होता है और जो काम जिस समय करना होता है जरूर कोशिश करते हैं। अब देखो ना, एक बजे इस प्रोग्राम में पहुंच गए ना। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि हम समय के पाबंद हैं क्योंकि समय की पाबंदी जीवन बनवाए आनंदी। क्या बात है। एक कमेंट में लिखते हैं कि समय दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु है। गया हुआ धन, स्वास्थ्य और अवसर फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बिल्कुल सही बात लिखा है आपने। और आगे लिखते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति समय की कद्र करता है समय उसकी कद्र करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि हम अपने जीवन में खुशहाली और तरक्की चाहते हैं तो हमें आलस्य त्याग कर समय का पाबंद बनना होगा। याद रखें, समय ही धन है और इसे सही जगह निवेश करना ही बुद्धिमान है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि समय हमारे अनुसार नहीं, हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है। आप सभी ने शब्द चुनकर गाने भी भेजे हैं हमें। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि समय के साथ हम चलने के लिए तैयार हैं, देखते हैं कौन से शब्द पर कौन सा गाना सुनने को मिलता है। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि सपने जीवन कल बदलना जीवन के मतलब बहुत सारे गाने और शब्द इन्होंने हमें लिख भेजे हैं। वहीं एक साथी लिख रहे हैं कि समय जीवन की वो धारा और है जो अविरल और निरंतर बहती है। इंसान की जिंदगी ये तो शायद मैं पढ़ चुकी हूँ। और आगे और इन्होंने लिखा है कि इंसान की जिंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक चक्र की तरह चलती रहती है जिसमें कई रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। सुख दुख का सामना भी करना पड़ता है क्योंकि जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। तो ऐसे में हमें हिम्मत और विश्वास से अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तुम भी चलो हम भी चलें। भाई आपने एक बात बिल्कुल सही लिखी है, वैसे तो सारी बातें ठीक लिखी हैं, अच्छी लिखी हैं, सही लिखी हैं कि जीवन में परिवर्तन भी जरूरी है। जी हाँ, तो वैसे ही परिवर्तन हुआ है हमारे कार्यक्रम में। नया कार्यक्रम शुरू हुआ है सुरीला सफर। ये छोटा सा परिवर्तन है और आप धीरे धीरे इसके इसमें ढल जाएंगे। शुरुआत में हर सफर हर एक जो परिवर्तन होता है थोड़ा कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब हमें उसकी आदत हो जाती है तो वही सफर वही जो परिवर्तन रहता है वो बहुत आसान हो जाता है। बहरहाल हम भी समय के साथ आगे बढ़ेंगे और वैसे तो समय अपने हिसाब से ही चलता है, लेकिन हम उससे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा तो धीरे चलो। हमें अभी इस कार्यक्रम में कुछ और गीतों का आनंद लेना है, कुछ और आपके मैसेजेस पढ़ने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और ज़रा बताइए तो इस फिल्म का नाम।

क्योंकि अभी बहुत समय हमें लेना है, हमें अपने साथियों के कमेंट्स लेने हैं और गाने सुनवाने हैं। बहरहाल हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं समय का पाबंद हूं या नहीं, पर समय पर रहना मेरा सगुल है। मैं ना किसी को इंतजार करवाता हूं और ना ही कभी कहीं देर से पहुंचता हूं। इंतजार कर सकता हूं और बड़े ही धैर्य के साथ, पर कभी किसी से नाराज नहीं होता। अगर कोई इंतजार करवाता है तो क्योंकि सोचता हूं कि उसकी कोई मजबूरी होगी। मैं कई बार बांका जिलाधिकारी से मिलने गया था, जो मेरे ही विद्यालय से था और बहुत जूनियर था, पर उसने 4 घंटे इंतजार करवाया, पर मैंने धैर्य नहीं खोया और मिलकर ही आया। जी बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी कोई हमें इंतज़ार करवाता है तो कभी कभी हम एकदम से चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये धैर्य बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि आपने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मैं बचपन से लेकर आज तक कभी भी समय का पाबंद नहीं रहा। अपने दोस्तों, अपने जान पहचान वालों में मैं लेट लतीफ के नाम से मशहूर हूँ। तो वैसे बताइएगा कि आप स्कूल भी लेट जाते थे। वैसे आगे इन्होंने लिखा है कि मैं स्टेशन पर तब पहुंचता हूं जब ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी होती है। अरे वाह भाई, तो फिर ट्रेन में चढ़ते कैसे हैं आप? आगे लिखते हैं कि लोगों की शादियों में लेट पहुंचता हूं, हद तो तब हुई जब मैं अपनी ही शादी में भी 1 घंटा लेट पहुंचा। मेरी बीवी तो कहती है कि थोड़ा और देर करते तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से करा देते। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि समय के साथ न चलने वाले जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। हम तो समय के साथ चलने में मानते हैं। बिल्कुल, समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है और साथियों, कुछ परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो वहीं एक साथी ने क्या लिखा है कि मेरी आदत यह है कि हमें किसी भी प्रोग्राम, मीटिंग, शादी या किसी से मिलना हो कामकाज पर, समय से पहले जाने की आदत है। मेरा मानना है कि 12 बजे का समय दिया गया हो तो 11:45 पे हमें वहां होना चाहिए। भाई ये भी बात अच्छी है कि हम बिफोर टाइम हम वहां पर पहुंच जाएं। एक और कमेंट है कि वैसे तो मैं समय का पाबंद हूँ, पर कभी कभी मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई बारिश शुरू हो गई है और आपका प्रोग्राम इतना अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। एक और कमेंट आया है कि लवली सॉन्ग्स, व्हाट इज द थीम, वी डोंट नो, आवर फोकस ऑन ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। तो थैंक यू सो मच। एक साथी ने लिखा है, समय के साथ इतने पाबंद थे कि 40 वर्षों तक सुबह 4 बजे उठना और गाड़ियों की अनलोडिंग लोडिंग कराकर नो एंट्री टाइम तक शहर से बाहर भेज देना रोज का काम था। ताजुब करेंगे कि 4-5 गाड़ियां तो रोज रहती थी, इससे ज्यादा भी। और मौसम चाहे बरसात हो या कड़कड़ाती सर्दी, रोज करते कंपनी को ऊंचाई पर पहुंचा दिया, लेकिन समय ने ऐसे करवट ली कि फालिज मार गया और फिर सब छोड़कर स्वास्थ्य के लिए 5 सालों से घर पड़े विविध भारती सुनते समय गुजार रहे हैं। तो आप अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें। एक साथ ही लिखते हैं कि जिंदगी का फलसफा यही सिखाता है कि हर खुशी के पीछे एक इम्तिहान छुपा होता है और हर दर्द के बाद सुकून का एक नया सवेरा आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एक बार टेक्स्ट एक बार फिर से आपको पढ़कर सुनाऊंगी, तो एक बार फिर मैं आपके साथ टेक्स्ट शेयर कर रही हूँ। समय कभी रुकता नहीं, हर घड़ी इसके साथ हमारी जिंदगी भी कई रंगों में बदलती है। बचपन की नादानियाँ, यौवन के सपने और वृद्धावस्था का अनुभव, ये सभी समय के अलग अलग पड़ाव हैं। बचपन में छोटी सी टॉफी भी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। यौवन का दौर खुशी के मायने बदल देता है। सपने बड़े हो जाते हैं, आँखों से दिल में उतरने लगती है किसी की तस्वीर। समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। बदलते रिश्तों में कुछ करीबी पीछे छूट जाते हैं, कुछ अजनबी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। समय के साथ जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। समय का दामन थामे कल, आज और कल के साथ जिंदगी बदलती रहेगी। तो समय के साथ तुम भी चलो, हम भी चलें, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें। तो साथियों, बात करें बचपन के दौर की, तो वो समय, वो नादानियाँ, जो एक बार गुजर जाता है ना, फिर वो नहीं आता। अपने बचपन की कुछ नादानियाँ, शैतानियाँ, शरारतें याद हो तो साझा कीजिए, कुछ पुराने दिनों को तरोताज़ा कीजिए आज हमारे साथ। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जो संदेश, जो टेक्स्ट है, उसमें आखिरी में जो संदेश दिया है, हंसते हंसते अपनी जिंदगी के सुहाने सफर को सुरीला बना लें, असली में यही जीने का तरीका है। तो भाई बिल्कुल यही तरीका है कि हंसते मुस्कुराते जीवन जिया।

जाए तो बहरहाल हम बचपन के दौर में चल रहे हैं, इस वक्त बातें उसी की कर रहे हैं, तो जरा अपने बचपन की शैतानियों को हमारे साथ साझा कीजिए और सुनिए ये गाना। जरा फिल्म का नाम तो बताइए।

तो गीता दत्त और आशा भोसले की आवाजों में बचपन से जुड़ा ये बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और हमने पूछा था कि इस फिल्म का नाम क्या है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि गानों के बारे में अगर आपसे कोई जानकारी मांगी जाए तो आप ना दें। बहरहाल आप सभी ने लिखा कि सुजाता फिल्म का ये सुंदर मधुर गीत बहुत अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा ये गाना सुनकर और आप सबके कमेंट्स देखकर। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं मोबाइल महाराज को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूं कि मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, कि मैं कई बार समय से लेट हो जाता हूं अनेकों जिम्मेदारियों के कारण। तो वहीं दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि मैं भी समय की बहुत पाबंद हूं, स्कूल और हो या किसी भी कार्यक्रम में हो या शादी ब्याह जन्मदिन, सब में समय से पहुंच जाती हूं। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं समय हूं, निरंतर चलता रहता हूं, जैसे अपना जीवन को समय के साथ ढाल देना चाहिए, नदी की तरह बहना चाहिए। शुरुआत छोटा झरना होता है, चलते चलते वन, पहाड़ों, जंगल, कठिन रास्तों से गुजरती, मैदानों को चीरती हुई, कहीं गांव, कस्बों और शहर के सफर निरंतर करती, समुंदर की और मिलन में अपना अस्तित्व मिटा देती है। समय के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो भाई हमारी एक सखी लिखती हैं कि महिलाओं पर लोग हंसते हैं कि वो कभी समय पर नहीं पहुंचेंगी क्योंकि वो तैयार होने में बहुत समय लगाती हैं। बहरहाल आप बताइएगा कि आप कितना समय लगाती हैं तैयार होने में। तो एक साथी ने भेजा है कि आज के गीत हो सकते हैं हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, समय तू धीरे धीरे चल, सपने सुहाने लड़कपन के, आंखों से जो उतरी है दिल में, अजनबी कौन हो तुम, हम भी चलें तुम भी चलो। तो भाई देखते हैं कौन कौन से गाने हमारे आपके मिलते हैं।

एक साथी लिख रहे हैं कि काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात तो कभी बिना सामान चले, आगे भी जाने न तू पीछे भी जाने न तू, जिंदगी कैसी है पहेली इसी दौरान, आंखों से उतरी है दिल में और तस्वीर है एक अनजाने की, अजनबी तुम जाने पहचाने लगते हो तब उनसे कहिए कि तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। एक साथी ने लिखा है कि यौवन के सपने अक्सर भविष्य को लेकर आशावादी होते हैं, इसमें करियर, प्यार और एक बेहतर जीवन की कामना होती है। यौवन के सपने सिर्फ करियर तक सीमित नहीं होते बल्कि इसमें भावनात्मक और संबंधों से जुड़े सपने भी शामिल होते हैं। युवा अवस्था में इंसान नए विचारों और कल्पनाओं से भरा होता है जो उनके सपनों को रंगीन बनाते हैं। इसे अक्सर जीवन का सबसे प्रभावशाली और यादगार समय माना जाता है। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है कि देखिए ना, एक छोटा बच्चा होता है वो कब बड़ा जाता है, फिर स्कूल जाता है, नौकरी करता है, अपना घर बसाता है, इस दौरान उसको कितने पड़ावों से गुजरता है और ये जो युवावस्था होती है वहां पर उसकी सोच भी बदलती है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। एक कमेंट में आया है कि जिंदगी में बदलाव ही एकमात्र निरंतर सत्य है, इसे रोकने के बजाय इसके साथ ढलना ही जीने का असली सलीका है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, ये जो समय होता है ना, ये हमें अपने और परायों की जो पहचान है वो करा देता है। हमारे जीवन के कठिन समय में, उस समय जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, अपने पराए अच्छे बुरे की पहचान हमें हो जाती है। देखने में आता है कि अक्सर जिंदगी के जो कठिन दौर होते हैं, कठिन समय होता है, उसमें अपने भी साथ छोड़ देते हैं लेकिन कोई अजनबी साथ दे जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं एक यौवन के सपनों की, एक युवावस्था के, बचपन के बाद युवावस्था में आकर जो सपने आंखों में बुने जाते हैं अपने जीवन के सुनहरे काल के लिए, तो हम उस पे बात कर रहे हैं। क्या आपने अपने इस दौर में कौन से सपने बुने थे, जरा बताइए तो। और बहरहाल सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें संगीत हेमंत कुमार का है।

बहरहाल लड़कपन के सपने आंखों में लिए, ये बड़ा ही प्यारा सा गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म थी 20 साल बाद। तो हमारी एक सखी लिखती हैं कि अगर आज टाइम मशीन होती तो सबके सब अपने बचपन में वापस जाना चाहते। भाई ये बात तो बिल्कुल आप 100% सही कह रही हैं, हमारा भी ऐसा ही मन करता है। और बताइएगा आप में से किस किस का ऐसा मन करता है। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बचपन की प्यारी सी मासूमियत नादानी और शैतानियों को मधुर बनवा देती है, गुनाहों को माफ करवा देती है। और एक सखी लिख रही हैं कि देखो आपकी बातों ने हमें अपने साथी की फिर इतनी प्यारी सी बात याद दिला दी जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो समय से पहले ही चलते थे, हमेशा कहते थे थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए, कभी ट्रैफिक में फंस गए तो हम थोड़े लेट लतीफ। भाई आपने ये बात कह के हमें भी अपनी बात याद दिला दी कि मेरे भी पापा ऐसे ही कहा करते थे कि जहां जाना है वहां समय से पहले पहुंचना चाहिए। तो भाई दूसरे साथी ने लिखा है कि भाई क्या बात है, आज लॉटरी लग गई, अभी तक 3 गाने बजे मेरी लिस्ट में से। वाह क्या बात है भाई, हमारी आप सबकी पसंद काफी हद तक मिल रही है। तो दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि हमारे पापा जी ने हम बच्चों को समय का मूल्य अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि समय सभी कीमती है, हमारा भी और दूसरों का भी, तो न कभी अपना समय नष्ट करो न दूसरे का। समय के साथ चल सको तो बहुत अच्छा, पर समय से पीछे होना जीवन में कभी कभी दुखदायी हो सकता है, विशेषकर परीक्षा के लिए। जब किसी को आपने समय दिया हो या किसी ने आपको दिया हो तब समय को प्रधानता देनी चाहिए। बहुत सटीक बात है। तो कुछ बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं। भाई हमारे साथियों की लिखा है कि बचपन में हम आम के बागीचे में आम मारते थे और बागीचे के मालिक से पकड़े जाने पे कहते थे कि अब आम नहीं मारेंगे, लेकिन फिर वही गलती दोहराते थे और बागीचे में जाकर आम मारते थे। ऐसा कौन करता था ज़रा बताइएगा। तो वहीं एक साथी लिखते हैं कि अपना बचपन भी बड़ा कमाल का हुआ करता था, न कल की फिक्र न आज का ठिकाना हुआ करता था, वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई है, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई है। बचपन के दिन भी कितने अच्छे होते थे, तब दिल नहीं सिर्फ खिलौने टूटा करते थे, अब तो एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं होता और बचपन में जी भर कर रोया करते थे। अजीब सौदागर है ये वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। एक बड़ा ही प्यारा सा कमेंट है, बचपन की बात क्या कहूँ, सचमुच बचपन तो बचपन ही होता है, आज तक वो खुशियाँ नहीं मिली जो स्कूल के दोस्तों के साथ मिली थी। जैसे ही पीरियड खाली रहता है बस स्कूल के पीछे इमली का पेड़ था, पेट की जेब में इमली भरकर, पैंट की जेब में इमली भरकर लाया करते थे और पूरी क्लास में अपने अपने टेबल के नीचे कचरा करते थे, लेकिन जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन खूब पिटाई होती और इमली भी जब्त हो जाती है। मेरे ख्याल से ऐसी शरारतें हम सभी किया करते थे। तो वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बचपन की बहुत सारी चीज हम मिस करते हैं। जब बारिश हो जाती थी और हम स्कूल से लौटते थे तो सड़कों पर पानी भरा रहता था और हम उसमें पानी में छपक छैया करते हुए एक दूसरे से को उस पानी से भिगोते थे। आज भी सड़कों पर पानी देखती हूँ तो मुझे डम डम डिगा डिगा वो राज कपूर साहब वाला स्टाइल करने को मन करता है, पर जब अगल बगल लोगों को देखती हूँ तो बस ये रह जाता है। ओहो एक कमेंट में लिखते हैं कि वक्त हमें सिखाता है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, पुराने दोस्त पीछे छूट सकते हैं, नए लोग जुड़ते हैं और परिवार की अहमियत सबसे ऊपर आ जाती है। हम रिश्तों में शब्दों से ज्यादा उपस्थिति और भरोसे को तलाशने लगते हैं। बचपन में जो छोटी सी बात दुनिया का अंत लगती थी उम्र के साथ समझ आता है कि वो सिर्फ एक अनुभव था। समय हमें प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रतिक्रिया को चुनने की समझ देता है। बिल्कुल साथियों, समय के साथ साथ बहुत बदलाव होते हैं, हमारे सपने बड़े हो जाते हैं और फिर आंखों से दिल में किसी की तस्वीर, कोई एक नया चेहरा हमारी जिंदगी में शामिल होने लगता है।

ओपी नैयर का यादगार संगीत आप सुन रहे थे, फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। बिल्कुल साथियों, यही वो दौर होता है जब आंखों में एक तस्वीर उभरती है और कोई अजनबी जिंदगी में शामिल होता है। वैसे जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं तो कोई अजनबी ही होता है जो हाथ थामता है और यही कहता है कि घबराओ मत, मैं हूं ना। ढेर सारे हमारे कमेंट्स हैं हमारे पास और अपने अपने कुछ अनुभव साझा किए हैं, यादें साझा की हैं साथियों ने। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बाहर कहीं नहीं पर स्कूल में आम के पेड़ पर आम के टिकोले के लिए पत्थर मारा करते थे, तब पूरी स्कूल को सजा मिलती थी, कान पकड़कर क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता था। तो साथी दूसरे लिखते हैं कि समय जिस तरह बदलाव होता है उसी तरह रिश्तों में भी बदलाव आ जाता है। वो बचपन का समय क्या खूब होता है जो आज तक नहीं भूल सकते। अच्छा, एक साथी लिख रहे हैं कि देखिए हमारी और आपकी पसंद मिल गई, आंखों से जो उतरी है दिल में गाने को लेकर। और आगे लिखा है कि आप पहले आप जब कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी तो बैकग्राउंड में वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, उसका म्यूजिक बजता था। तो भाई देखिए, जब बदलाव हो रहे हैं तो हमने भी सोचा क्यों ना इस बदलाव में हम भी शामिल हो जाएं, तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा बदलाव कर लिया है। एक साथी लिखते हैं कि देखो आपकी बातों ने हमें कुछ बातें हमें याद दिला दी, ऐसा इन्होंने अगर कुछ हमें लिखकर भेजा है, वो मुझे क्लियर नहीं इसमें दिख रहा है, कुछ इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। आगे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के सुरीला सफ़र, रोमांचक सफ़र में इबारत के रहस्यों के बीच कई फिल्मों के गाने हमें सुनने को मिल रहे हैं। और एक साथी ने लिखा है, कभी कभी एक अजनबी इंसान आपको उतना समझ लेता है जितना आपके करीबी भी नहीं समझ पाते। कुछ लोग किस्मत बनकर जीवन में आते हैं और धीरे धीरे रूह यानी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं।

ये अजनबी जो शुरुआत में अजनबी होते हैं, समय के साथ यादों और भावनाओं का अहम हिस्सा बन जाते हैं और ये जीवन की अनिश्चितता और मानवीय रिश्तों की सुंदरता को दर्शाता है कि अनजान लोग भी जीवन को कैसे खुशनुमा और खास बना देते हैं। बिल्कुल, और जब अजनबी का साथ हो तो थोड़ी सी चूहल भी हो जाती है एक दूसरे को जानने के लिए। बहरहाल, ये गाना सुनिए और जरा फिल्म का नाम बताइए।

अजनबी से बन के करो ना इशारा, हमने पूछा था ये गाना किस फिल्म का है। तो भाई आप सबने लिखा कि ये फिल्म है एक राज, किशोरदा की आवाज का जादू है इसमें और साथ लता मंगेशकर का। एक साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के साथ एक घंटा कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। तो भाई दूसरे साथी बड़े खुश हैं, वो लिख रहे हैं कि आज मेरी लिस्ट से अभी तक 3 गाने बच चुके हैं, आभारी हूँ आपका और विविध भारती का। भाई हम आभारी हैं आपके इतने सारे कमेंट्स के लिए और इतने शिद्दत से हमारे साथ जुड़ने के लिए, शब्दों को चुनने के लिए, गानों को चुनने के लिए। तो वहीं एक साथी ने लिखा है कि समय के साथ रिश्तों में भी बदलाव आ गया है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज हुआ करती थीं जहां सब रिश्ते हुआ करते थे, पर अब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जहां रिश्ते 4 लोगों में सिमट कर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन बहरहाल कहीं कहीं आज भी जो ज्वाइंट फैमिलीज हैं वो रह रही हैं और बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि बहुत याद आता है अपना बचपन, पीछे मुड़ के देखती हूँ

माँ पापा दीदी छोटा भाई और भरा पूरा परिवार था, लेकिन सबने साथ छोड़ दिया। अब हम अकेले रह गए हैं, लेकिन सच तो सच को स्वीकार करना पड़ता है। एक साथी ने लिखा है कि बहुत ही खूबसूरत और गहन चिंतन है समय के इस अनमोल प्रवाह पर। आपकी ये पंक्तियां बचपन की मासूम खुशियों से लेकर यौवन के सपनों और वृद्धावस्था के अनुभवों तक जीवन के हर पड़ाव को इतनी कोमलता से बुनती हैं कि मन झूम उठता है। समय का वो दामन जो रिश्तों को नए रंग देता है, कभी छोड़ कर जाता है, कभी नए मेहमान लाता है, सचमुच जीवन का सार है। देखा जाए तो सचमुच जीवन के कितने रंग हैं, जिंदगी के इतने सारे रंग हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी दरअसल है क्या, और जब तक समझ आती है तब तक जीवन गुजर चुका होता है। बहरहाल जिंदगी का ये रंग क्या है, जरा इस गाने में सुनिए। बताइएगा हमसे आपकी पसंद कितनी मिलती है इस गाने में।

आदमी और इंसान फिल्म से ये गाना आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस गाने को पसंद किया। एक साथी ने लिखा है कि वाओ, मेरा तीसरा गाना भी आपसे, आपकी चॉइस से मिल गया। देखिए ना, हम सब की चॉइस कितनी मिलती है। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं कि भाई, मेरी लिस्ट का ये चौथा गाना फिल्म एक राज का, जो आपने अभी इससे पहले सुना था, वो जो किशोर कुमार जी का था, वो भी मिल गया। तो दूसरे साथी ने लिखा है, कुछ बातें याद की हैं कि हमारे समय में माता पिता और घर के बड़े बुजुर्ग शादी ब्याह कराते थे और जीवन साथी मिलना तो दूर, फोन पर भी बात नहीं कर सकते थे, और आज तो लड़का लड़की की रजामंदी बहुत जरूरी है। ये जीवन का बहुत बड़ा बदलाव है और परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। बात तो बिल्कुल सही है। एक साथी लिखते हैं कि विविध भारती के सभी साथियों को राधे राधे, और मेरे पापा बोलते थे कि हमेशा समय पर जहां जाना, समय पर जाना, समय कितनी जल्दी निकल जाता है। पापा ने भी जाने की बहुत जल्दी की, समय से पहले ही चले गए, बस उनकी यादें रह गईं। ये बात आपने

मेरे मन की जान ली। जो बहरहाल आपकी ये बात मुझसे बहुत मिलती जुलती है। एक साथी ने लिखा है कि बचपन, यौवन और अंतिम पड़ाव के अनुभव मनुष्य को अपने जीवन के चार पड़ाव पार करने होते हैं। सभी का अनुभव जीवन को खूबसूरत बनाता है अगर हम सकारात्मक सोच के साथ सभी को साथ लेकर चलें, गलतियों से सबक लें। आज खूबसूरत गजल, ये दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, मेरा एक सपना है, मेरा नाम करेगा रोशन, तमाम गाने इन्होंने लिख भेजे हैं। तो भाई बिल्कुल, अगर हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ें, तो जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाएगी।

हमारे एक साथी लिखते हैं कि तुम भी चलो हम भी चलें, सुरीला सफर अब अंतिम पड़ाव पर रुकना नहीं है, हमें तभी आगे बढ़ाना है प्रोग्राम को। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि बहुत रोचक और एक शानदार लाजवाब कार्यक्रम, कब एक घंटा पार हुआ, वक्त का पता ही नहीं चला। तो इसी के साथ हम भी चलते हैं और मिलेंगे आपसे कुछ थोड़ी देर के बाद अगले कार्यक्रम में। बहरहाल आप सभी का दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम को और सुरीला और सुहाना बनाने के लिए। यूं ही जुड़े रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती, एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों? लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सच्चे दोस्त इस सफर के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने

0: संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात मुतिष्ठ यशो।

0: లభస్వ జిత్వా శత్రుణ భుజంగక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయే వేతి నిహత పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్య సాచిన.
1: కంధో సే మిల్తే హై కంధే కదమో సే కదమ్ మిల్తే హై హమ్ చల్తే హై జబ్ ఐసే తో దిల్ దుష్మన్ కే హిల్తే హై.
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है. मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली. शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं. जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली. श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था. 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे. तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है. तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की. बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था. श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की. कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था. इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है. वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी. उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं. वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें. कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं. केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा. उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है. वे इस समय चेन्नई में हैं. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी. हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया. कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं. पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है. राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है. तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा.
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है. मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा. पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है. एक रिपोर्ट.
4: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है. उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है. उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है. राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है. बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे. बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो. साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल. आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य.
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है.

0: है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH यार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से अब आप सुनेंगे सदाबहार नगमे। गुजरे जमाने के कुछ दिलकश, कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमों के साथ हाजिर हैं हम। स्वागत है आपका कार्यक्रम, आपका अपना सदाबहार नगमे।

नमस्ते जी फिल्म का ये गाना बना आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। लता मंगेशकर की आवाज, अनजान के बोल, जीएस कोहली का संगीत। अगला गाना क्या कहता है दिल की बात, आइए सुने साथ साथ।

0: भैया दिल की बातें हैं दिल ही जाने। बहरहाल गेस्ट हाउस फिल्म का गाना सुन रहे थे आप लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन के बोलों को सुरों में ढाला था चित्रगुप्त ने। बढ़ेंगे आगे एन दत्ता के संगीत से सजे गाने की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
2: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे क्यों है, क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मेरे दिल पे हाय इतना तुम्हें इख्तियार क्यों है। बड़ी ही खूबसूरत सी बात ब्लैक कैट फिल्म के इस गाने में आपने सुनी। जानिसार अख्तर के बोल थे, एन दत्ता का सुरीला संगीत, लता मंगेशकर की कर्णप्रिय आवाज।
1: हर तरफ अब

मदन मोहन के संगीत से सजा ये गाना आपने सुना। कैफी आजमी के बोल थे, मन्ना डे का स्वर, फिल्म का नाम हिंदुस्तान की कसम। अब बढ़ते हैं शंकर जयकिशन के संगीत की ओर। शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज। क्या कहता है ये गीत, आइए सुनें।

लता मंगेशकर के स्वर में पतिता फिल्म का ये गाना आपने सुना। अगले गाने में भी स्वर लता मंगेशकर का है, राजा मेहंदी अली के खां के बोल हैं, मदन मोहन की तर्ज। आइए सुने दुल्हन एक रात की, इस फिल्म का ये गाना।

महेंद्र कपूर की आवाज, असद भोपाली के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आप सुन रहे थे फ्री लव फिल्म का गाना और यही थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होने में बस चंद मिनट बाकी। फिलहाल आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद इस मंच के साथ आपकी और हमारी भेंट हुई है।
1: बिल्कुल। और इस भेंट में ये देख रही हूँ कि निजात, इतनी भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए आपके चेहरे पर जो सुकून दिखाई दे रहा है ना स्टूडियो में एसी की ठंडक में, वो अलग ही बता रहा है कि आप भीषण गर्मी से हाल बेहाल है सब लोग, हम सब।
2: हाँ, सभी का इन दिनों तो कह सकते हैं कि देश के हर हिस्से में जिस तरह से गर्मी ने अपना प्रचंड रूप ले लिया है तो हर कोई त्रस्त है और वो यही देखता रहता है कि कहीं कोई छांव मिल जाए।
1: और ऐसे तो छांव सड़क पे, खुली सड़क पे तो छांव ढूंढते रहते हैं, तो एक जरा सी छाया मिलती है, पेड़ जब पत्तियां हिलती हैं तो जरा सी हवा चलती है, ठंडी हवा जिसे हम कह सकते हैं। हाँ। लेकिन गानों की छांव ऐसे सुकून दे है कि ठंडी हवा के जब गाने सुनते हैं तो सचमुच हमें सुकून मिल जाता है। लेकिन ठंडी हवा की छांव में चलने से पहले जरा आज के विषय पर हम गौर फरमा लें।
2: हाँ, तो जो हमारे साथी जुड़ चुके हैं और अभी तक उन्होंने फेसबुक की पोस्ट नहीं देखी है, जो फेसबुक से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी पता लग जाएगी किन विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आपने जब ठंडी हवा की बात करी ना, तो भाई उसके लिए पर्यावरण का दुरुस्त होना बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल।
2: ताकि पर्यावरण अच्छा रहे, पेड़ पौधों से भरा हुआ वातावरण हो, तो एक ऐसी महिला जिसने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया उनकी आज हम बात करेंगे। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये हैं तुलसी गौड़ा, इनकी आज बात होगी।
1: पर्यावरणविद हैं, इनके बारे में बताएंगे। और गर्मी से निजात पाने के लिए कपड़ों का ध्यान रख रखाव भी जरूरी है कि हम कौन सी पोशाक पहनते हैं गर्मी के मौसम में। कई बार बहुत सिंथेटिक कपड़ा या सिल्क पहन के धूप में, तपती दोपहरिया में, या बहुत डार्क कलर पहन के निकल जाते हैं तो आपको गर्मी का एहसास और ज्यादा होता है, बल्कि पसीना ज्यादा आता है। गर्मी में कॉटन कपड़े पहन के निकलें तो ज्यादा आपको ठंडक महसूस होगी।
2: और आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कुछ कपड़े जिन्हें कई बार हम थोड़े ही दिन पहना, उन्हें बस यूज नहीं हो रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनको फिर से अगर पहनने का मन करे तो उनको एक नया रूप देकर किस तरह से पहना जा सकता है। कई कपड़े बहुत बार पहनने के बाद भी कपड़े की क्वालिटी अच्छी है, कपड़ा अभी तक चल रहा है, तो अब इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ये जो तरीके हैं कि पुराने कपड़े को किस तरह से एक नया लुक देना है, इसके बारे में बात।
1: बिल्कुल, तो ये ज्ञान की बातें हो जाएंगी। और गर्मी के मौसम में सड़क पर चलते हैं तो कैसा लगता है खुली सड़क पर, जब निचाट धूप होती है तो बहुत तकलीफ होती है ना।
2: कई बार ऐसा होता है ना कि लगा हुआ है रेड सिग्नल, लेकिन क्योंकि धूप में खड़े नहीं रहना तो सिग्नल तोड़ के हम आगे बढ़ते हैं, कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कई बार गर्मी से बचाव में भी हो जाता है, लेकिन सड़क पर चलते हुए खुद के लिए भी और जो अन्य लोग चल रहे हैं, चाहे वो वाहन में है या पैदल है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। इसलिए कुछ बातें सड़क सुरक्षा की।
1: एक और जरूरी बात है, वो कौन सी है बताइए जरा, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं।
2: बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों की जब बातें इतनी सारी चल ही रही हैं, तो एक बहुत विशेष उपकरण है रेफ्रिजरेटर, जो सबके घर में है, और कई बार उसकी अगर साफ सफाई ना की जाए या कुछ सामान ऐसे रख दिया जाए जिनमें से गंध अलग तरह की आने लगती है, तो जो अन्य खाने की सामग्री रखी है उसको भी वो प्रभावित कर देता है। तो उस गंध से कैसे बचा जाए, इसके टिप्स हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करें।
1: और हम अब साझा कर रहे हैं ये ठंडी छांव और सुकून दे गाना, जिससे हमें छांव मिलेगी, ठंडक भी महसूस होगी
2: जी,
1: और पर्यावरण के रखरखाव, पर्यावरण की सुरक्षा की भी बातें हम सोच सकते हैं इस गाने को सुनते हैं। सुनते ही ये गाना।

0: हम अब साझा कर रहे हैं ये ठंडी छांव और सुकून दे गाना, जिससे हमें छांव मिलेगी, ठंडक भी महसूस होगी
1: जी,
0: और पर्यावरण के रखरखाव, पर्यावरण के सुरक्षा की भी बातें हम सोच सकते हैं इस गाने को सुनते हुए। सुनते ही ये गाना।

0: को कम करने के लिए वो सहायक हो सकती थी। और इनकी शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तुलसी गौड़ा की, तो इनका जन्म हुआ साल 1944 में कर्नाटक के होन्नाली गांव में। बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ और जब वो सिर्फ 2 साल की थी तभी पिता का साथ भी छूट गया। इसलिए जब वो बड़ी हो रही थी तो अपनी माँ जो वो काम किया करती थी कि स्थानीय नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में, उनके साथ वो चली जाया करती थी। और औपचारिक शिक्षा वैसे तो इन्हें कभी नहीं मिली, ना इन्होंने स्कूल जाकर कभी सीखा, लेकिन तुलसी गौड़ा कर्नाटक वन विभाग में नर्सरी में जो भी उगाए जाने वाले बीज थे उनके देखभाल का कार्य किया करती थी। उन्होंने बीजों के संरक्षण में अपने कार्यों और वनस्पति विज्ञान को देखते हुए स्थायी पद की पेशकश के लिए जाने तक अपनी माँ के साथ नर्सरी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में 35 सालों तक काम किया और 70 साल की उम्र पूरा होने तक, यानी कि सेवानिवृत्त होने से पहले करीब करीब 15 वर्षों तक नर्सरी में इसी स्थायी पद पर उन्होंने काम किया था।
1: और इसके अलावा नर्सरी में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए वन विभाग के वृक्षारोपण प्रयासों में भी योगदान दिया और प्रत्यक्ष रूप से काम किया। पौधों को रोपने के साथ साथ उन्होंने वन्य जीवों को नष्ट करने वाले शिकारियों और जंगल की आग को रोकने के लिए भी काम किया।
0: तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक वन विभाग में रहते हुए करीब 60 सालों से भी अधिक समय तक सेवा की इन जंगलों की, इन पेड़ पौधों की। और इसमें एक सामुदायिक अभयारण्य, 5 बाघ अभयारण्य, 15 संरक्षण अभयारण्य और करीब 30 वन्य अभयारण्य शामिल हैं। और उनका उद्देश्य गांवों को प्रकृति से फिर से जोड़ देना था, क्योंकि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं ना, इसीलिए। और तुलसी गौड़ा को पर्यावरणविदों ने वन का विश्वकोश कहा, जैसा कि आपने शुरू में बताया, और वृक्ष देवी के रूप में भी वो जानी जाती रहीं, क्योंकि उन्हें वन और पौधों का बहुत ही गहरा ज्ञान था। और वन में कहीं भी लगाए हुए पेड़ों की प्रजाति के जो मात्र वृक्ष हैं उनकी पहचान किस तरह की जाती है, इसमें उनको एक अद्भुत क्षमता हासिल थी। तुलसी गौड़ा बीज इकट्ठा करने और उन्हें पहचानने में भी विशेषज्ञ थी। सभी तरह के जो पौधे होते थे उनकी प्रजातियों को फिर से जीवित किस तरह से करना है, दोबारा उनको विकसित करने के लिए मात्र वृक्ष से बीज किस तरह निकालना है, ये एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, लेकिन तुलसी गौड़ा इसमें सक्षम थी।
1: और इसके अलावा तुलसी गौड़ा खुद भी कभी किसी को ये नहीं समझा सकी कि उन्होंने जंगल के बारे में इतना ज्ञान कैसे पाया, लेकिन वो ये जरूर कहती थी, ऐसा लगता है जैसे वो जंगल की भाषा बोल सकती हैं। उनके समुदाय की परंपराओं में मातृसत्ता प्रकृति से जुड़ी हुई है और भूमि की देखभाल भी करती है।
0: ऐसा अनुमान ममता जी लगाया जाता है कि तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक में अकेले ही करीब 1 लाख के करीब उन्होंने पेड़ लगाए हैं। और उनके गांव के आसपास के क्षेत्र में तुलसी गौड़ा को वहां का गौरव भी लोग मानते हैं। उन्हें जंगल और औषधीय पौधों का अमूल्य ज्ञान था। उन्होंने जो भी पौधे लगाए उनमें बहुत ज्यादा जो पौधे थे वो औषधीय पौधे भी थे, और इनका उपयोग उस वक्त बहुत ज्यादा किया गया जब गांव के लोग बीमार पड़ जाया करते थे।
1: हालांकि एक समय जब वो कर्नाटक वन विभाग से सेवानिवृत्त हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने गाँव के बच्चों को जंगल के महत्व के साथ साथ बीज खोजने और उनकी देखभाल करने के बारे में सिखाना जारी रखा।
0: तुलसी गौड़ा ने अपने गांव की महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया। और जब कुछ कहा सुनी के बाद, कई ऐसे भी मामले होते हैं कि कुछ मार पिटाई भी हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है, तो ऐसे मामलों में भी वो आगे आई और किसी निरपराध को उन्होंने कभी सजा नहीं होने दी। और पुरस्कार और सम्मान भी जब कोई ऐसा काम करता है तो वो भी उन्हें दिए जाते हैं। अब उन्हें क्या क्या मिला इसके बारे में बताते हैं। साल 1986 में तुलसी गौड़ा को इंदिरा प्रियदर्शिनी वर्ष मित्र पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे IPVM पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं। और ये पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि विकास के योगदान के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्थान को दिया जाता है। इसके बाद साल 1999 में तुलसी गौड़ा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार का सम्मान प्राप्त हुआ, जो कर्नाटक राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और साल 2020 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च सम्मान है। और ये सम्मान मिलने पर भी तुलसी गौड़ा का कहना ये था कि पद्मश्री प्राप्त करके उन्हें खुशी तो है, लेकिन फिर भी जंगल और पेड़ों को वो ज्यादा महत्व देती हैं।
1: और उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी समुदायों को शामिल किया जो आसपास के समुदाय थे। इससे सामूहिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई लोगों में और लोग खुद भी पहल करने के लिए आगे आए। उनके प्रयास से कर्नाटक के बहुत सारे बंजर क्षेत्रों को पुनर्जीवित करके फिर से पर्यावरण के संतुलन को बहाल किया।

0: ठंडी हवा के झोंके जब चलते हैं तो यादों का कारवां भी चलता है
1: जी
0: और छांव तो मिलती है, सुकून मिलता ही है। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की है चंचल जी कि आज पर्यावरण विद तुलसी गौड़ा के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इस तपती दोपहरी में, तपती गर्मी में जहां भीषण गर्मी है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, ऐसे में पर्यावरण की बातें करके पर्यावरण की ओर ध्यान देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी प्रजाति के वृक्ष की, मातृवृक्ष को पहचानने की उनकी क्षमता के कारण तुलसी गौड़ा को वन का विश्वकोश कहा जाता था। वृक्ष देवी के नाम से भी वे जानी जाती थी क्योंकि उन्हें वनों का बहुत गहरा ज्ञान था। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को भी हमारी पृथ्वी की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेगी।
1: और बहुत से पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रदूषण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी मनुष्यों की गतिविधियां, जैसे जो औद्योगिकरण बहुत बढ़ रहा है या वनों की कटाई हो रही है, इसके कारण जो भी उत्पन्न होते हैं उनसे वनों को भी बहुत क्षति पहुंचती है। इन्हीं वनों के संरक्षण के प्रति उनकी जो गहरी प्रतिबद्धता थी, इस क्षति

0: गया और उन्होंने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जंगलों और उनके संसाधनों के संरक्षण के महत्व के बारे में भी शिक्षित किया, जिससे देश और समाज का कल्याण हो सकता है।
1: और फिर आया 16 दिसंबर 2024 का दिन, जब उनकी उम्र करीब 86 साल की थी। इस समय वो इस संसार को छोड़कर, हम सभी को छोड़कर चली गई, और तुलसी गौड़ा की विरासत हम सबके लिए प्रेरणा है और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली है। उन्होंने हमें समझाया कि कोई भी पहल पर्यावरण में बदलाव ला सकती है। उनका जीवन हमें प्रकृति की देखभाल और जुड़ाव की महत्वपूर्ण संस्कृति को विकसित करने का संदेश देता है।
0: और जब हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे तो ये बात अपने आप से कह

0: की रचना थी, सतीश भाटिया का संगीत था।
1: अच्छा ममता जी, इससे पिछली बार जब हम मिले थे विविध भारती में और हम जब गेट पर ही थे तब उल्टी दिशा में आप जा रही थी बड़ी तेजी से।
0: अरे बड़े ध्यान से आप देखती हैं।
1: भाई क्या होता है ना, सीधी दिशा में तो सभी चल रहे थे, अचानक आपको जब उल्टी दिशा में जाते देखा मैंने, तो मैं समझ नहीं पाई कि कारण क्या है। तो आज जब मुलाकात हुई तो लगा यही पूछ लूं।
0: ठीक, सवाल बिल्कुल सही है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि बाएं तरफ चलो
1: जी
0: और एकदम किनारे किनारे चलो।
1: हाँ।
0: जो सड़क के किनारे जो बना रहता है, जिसको हम पैदल यात्रियों के लिए चलने के लिए बना रहता है, हाँ, वहां हाँ। चलना चाहिए, ये सिखाया जाता है हमें।
1: इसीलिए सिखाया जाता है ना कि भाई सुरक्षा के मद्देनजर ये जरूरी भी तो है।
0: और सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन कुछ लोग तो बहुत सदाशयता के साथ करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो नियम उस दिन पालन मैंने नहीं किया, लेकिन आपने पूछा कि क्यों चल रही थी, उसकी एक वजह है। देखो, सड़क के किनारे चलने के लिए जो कई बार छायादार वृक्ष लगे होते हैं, बाएं तरफ हम चलते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सड़कें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और खासतौर से हाईवेज जो होते हैं वहां पर तो आपके लिए पैदल चलने के लिए कुछ बना नहीं होता है।
1: जी।
0: और हाईवे ना हो तो भी कुछ सड़कों पर जहां पर किनारे चलने की जगह ना हो तो वहां पर मुझे लगता है कि उल्टा चलना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बाएं तरफ चल रहे हैं, पीछे से बाइकर्स इतनी तेज रफ्तार में आते हैं कि वो उन बाइकर्स की आवाज से अपना बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरते गिरते बचते हैं, और ऐसे हादसे हमने आंखों के सामने देखे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब जहां पर पैदल यात्रियों के लिए जगह नहीं बनी रहती तो मैं उल्टा चलती हूँ, क्योंकि सामने से वाहन आता हुआ दिखाई देता है तो हम सतर्क रहते हैं पहले से।
1: और आपने जब बात की ना कि कई बार लोग हॉर्न बहुत तेज बजाते हैं, तो हम नियमों की बात तो करते हैं, उसमें इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी गाड़ी में कितने ज्यादा तेज आवाज की हमें जरूरत है। हम उतना ही, कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए या कहते हैं कि शो ऑफ करने के लिए, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इतनी तेज आवाज वाला हॉर्न अपनी मोटरसाइकिल में या अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं, और इससे कई बार लगता है कि जैसे कान के पर्दे कहीं फट ना जाए। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा के बारे में, और इसका मतलब होता है कि सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उसके खतरे को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। सड़क पर होने वाली जो भी दुर्घटनाएं हैं उनको कम करने के लिए यातायात के कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करना ना सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन करना, नशे में गाड़ी ना चलाना, रेड लाइट का सम्मान करना, ये सारे नियम ऐसे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं और जीवन रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। और आज के समय में सड़कों पर वाहनों की संख्या जिस तरह से बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक से हर कोई बदहाल है, बेहाल है, और इनसे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये बातें हम करते तो हैं, ये सिर्फ नारा नहीं लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है। यातायात के जो भी नियम है वो इसलिए बनाए जाते हैं कि सड़कों पर वाहन और पैदल चलने वाले जितने भी लोग हैं उनका संतुलन वो बना रहे, कोई दुर्घटना ना हो, जान माल की हानि ना हो।
0: बिल्कुल। और कुछ नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए, जैसे कि लेन का पालन करें।
1: हाँ।
0: और हमने तो भाई देखा है कि तुरंत यहाँ मुंबई की सड़कों पर लेन अगर गलत तरीके से चेंज किया तो चालान हो जाता है, और आजकल तो ऑटोमेटिक चालान आपको पता ही नहीं चलता, आपके जब पैसे कटते हैं तो पता चलता है।
1: जब खासतौर पर हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो वहाँ आपकी गति के हिसाब से लेन बनाई हुई होती है, तो जिस गति में आपकी गाड़ी चल रही है, आप चला रहे हैं, उसी लेन में आपको रहना जरूरी है ताकि अगल बगल जो भी लोग चल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर उन्हें कोई दिक्कत।
0: मुंबई की बात करें तो मुंबई में खास तौर से जो मुंबई का शहरी इलाका जिसको मुंबई महानगर कहा जाता है, जैसे कि जहां पर विविध भारती का स्टूडियो है, ये तो उपनगर है बोरीवली, लेकिन मरीन लाइंस और दादर इस तरह इस इन इलाकों में लेन का एक रूल है, अगर लेन बदला तो आपको फाइन भरना पड़ता है। तो जरूरी नहीं कि आप बाईं तरफ ही चलें, वो ट्रैफिक रूल के आपको ट्रैफिक रूल समझ लेना चाहिए मुंबई की सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए। और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य है, वरना उसके लिए भी फाइन हो जाता है। हम सब एक आध बार सीट बेल्ट के लिए कार में बैठकर फाइन भर चुके हैं, हमें लगता है।
1: कई बार लोग कहते ना कि कुछ लड़के खासतौर पर कहते हैं कि हीरोपंती में गाड़ी चलाने के लिए वो हेलमेट नहीं पहनते, सिर्फ जब उनको ट्रैफिक सिग्नल पर से निकलना होता है कि सिग्नल आने वाला है, कहीं कोई ट्रैफिक पुलिस में ना हो तो उनसे बचने के लिए वो हेलमेट पहनते हैं। लेकिन आपको हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि
0: अपनी सुरक्षा
1: के लिए पहनना है, इस बात का ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय निर्धारित जो गति सीमा है उसका पालन करना जरूरी है, क्योंकि तेज गति जो है वो कई बार दुर्घटना का कारण बन जाती है।

0: इसी तरह से ट्रैफिक के जो भी सिग्नल हैं उनका पालन करें। रेड लाइट का मतलब है कि आपको थोड़ी देर रुकना है, पीली बत्ती है कि आप तैयार हो जाएं, हरी बत्ती का मतलब है कि आप आगे बढ़िए। इसी तरह से मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद ड्राइविंग ना करें, और ये कानूनन अपराध भी है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात कभी ना करें।
1: चंचल जी,
0: जी
1: यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि मोबाइल फोन पर बात करते समय वाहन न चलाएं। ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन कोई मानता नहीं है। अब तो ईयर प्लग लगा के कार में तो आराम से लोग बातें करते हुए जाते हैं। अब तो कार में ये सुविधा भी है कि आप फोन करो और आपका स्पीकर चल जाता है, तो स्पीकर पे बात करते हो, वो भी कहीं ना कहीं खतरनाक है। और जो मोबाइल बाइक पर हेलमेट के अंदर ईयर प्लग लगा के लोग आराम से बात करते हुए जाते हैं, जब ये प्लग नया नया आया था बाजार में, तो कई लोगों को हमने देखा कि ये पागल है क्या, बंदा अपना बाइक पे चला जा रहा है और बातें करते हुए जा रहा है अपने आप से। तो बाद में पता चला कि ये सुविधा भी है कि आप आराम से बाइक चलाते रहो और बातें करते रहो। ये बहुत खतरनाक होता है। कहाँ पर आपका आपसे बात करने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है कि आपका ध्यान भटक जाए,
0: बिल्कुल सही,
1: वो बहुत खतरनाक होता है।
0: इसी तरह से जो वाहन की लाइट्स होती हैं उनका भी सही उपयोग जरूरी होता है। कई बार हमें लेफ्ट या राइट जब लेना होता है, अपनी गाड़ी को टर्न करना होता है, मोड़ लेना होता है, उस वक्त के लिए कुछ बत्तियां हमारी गाड़ी में निर्धारित होती हैं, तो कई बार उनका लोग प्रयोग किए बिना ही आपने अगर सिग्नल पे से आपने टर्न ले लिया, तो जो पीछे वाले जो लोग हैं जो अपने वाहन पर हैं उनके लिए चीज़ खतरा बन सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई जाती है, इसीलिए जब भी ट्रैफिक रुकता है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर जो लोग चल रहे हैं उन्हें रास्ता ज़रूर दें, और अगले वाहन से एक उचित दूरी ज़रूर बनाकर रखें ताकि दुर्घटना को टाला जा सके। दूसरे वाहनों को अगर दाईं ओर से ओवरटेक करने की नौबत आती है तो बड़ा सावधानीपूर्वक करना है ताकि आप भी सुरक्षित हों और जिस गाड़ी को आप ओवरटेक कर रहे हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो। ज्वलनशील जो भी पदार्थ होते हैं उनको वाहन में ना लेकर जाएं। वाहनों का समय समय पर उचित रखरखाव जो है या प्रदूषण की जांच है ये भी करवाना जरूरी है। ये सड़क सुरक्षा का नियम नहीं है लेकिन ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि आपको अपने वाहन को उसी सड़क पर
1: वरना धुआं उगलता हुआ वाहन आपके लिए नुकसानदेह है और सड़क पर जो चल रहे यात्री उनके लिए भी नुकसानदेह।
0: सड़क सुरक्षा का महत्व खुद के लिए भी और दूसरों के जीवन रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए यातायात के जो भी नियम हैं उनका पालन अगर करेंगे तो दुर्घटना या अकाल मृत्यु दोनों से बच सकते हैं और ट्रैफिक जाम को भी हम कम कर सकते हैं। आवागमन तेज हो सकता है इससे। अगर इन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना, सजा कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इनसे बचने के लिए नहीं अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी आप करिए। और कई बार तो हमें कहना चाहिए कि छोटे बच्चे जब, क्योंकि कई बार छोटे बच्चों को भी हम वाहन हाथ में दे देते हैं, तो इन चीजों के बारे में उन्हें समझ हो। पहली बात, उन्हें वाहन देना नहीं हाथ में, लेकिन बच्चे जब बड़े होकर वाहन चलाने लगे,
1: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को
0: तो उनको
1: वाहन देना है नीचे, कानूनन अपराध है। और देखिए, सड़क सुरक्षा के बहुत सारे नियम है। बच्चों को सड़क पार करने का तरीका भी सिखाएं, जो छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं नया नया, उनके भी जो रूल है बताएं कि हेलमेट लगाएं। और देखिए, सड़क सुरक्षा के बारे में अपने जाने माने अभिनेता जॉन अब्राहम क्या कहते हैं, सुनते हैं।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो ने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: अंतराल में जो गाना बज रहा था बाबूजी धीरे चलना, तो मुझे याद आई हम बात कर रहे थे सड़क सुरक्षा के बारे में। हमारे साथी का कहना है कि सड़क सुरक्षा के विषय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है। हेलमेट पहनना बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। आज की युवा पीढ़ी को रफ्तार से ज्यादा अपनी और दूसरों की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए। याद रखें, सड़क पर आपकी समझदारी ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा है। एक अन्य संदेश में हमारे एक साथी ने लिखा है कि बेहतर सड़क सुरक्षा बेहतर जीवन सुरक्षा। जीवन को बचाना है तो नियमों का पालन करना है, सड़क पर चलना है तो नियमों को जानना है। यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। और क्यों ना ममता जी, एक गाना सुन लिया जाए।
0: गाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी है जो श्रोताओं तक पहुंचा दें। हमारे एक सुधीर श्रोता हैं जो नियमित रूप से विविध भारती सुनते हैं। इन्होंने लिखा है कि मोबाइल पर बात करते या ईयरफोन पर गाना सुनते हुए सड़क पार करने की वजह से कई बार लोगों की जान चली जाती है और ट्रेन से भी दुर्घटना होती है। कई बार लोग मोबाइल पर बात करते हुए ब्रिज का प्रयोग नहीं करते हैं और रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस करते हैं, तो इस वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं घटती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, हमने वो बातें बताई हैं हालांकि, तो फिर भी इनका कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। लिखा है इन्होंने कि सड़क सुरक्षा का अर्थ है सड़क का उपयोग करते समय दुर्घटनाओं और चोटों से बचाव के लिए यातायात नियमों का पालन करना, हेलमेट सीट बेल्ट पहनना, गति सीमा का पालन, नशा न करना, जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग, ट्रैफिक सिग्नलों का सम्मान करना इसमें शामिल है। कई बार देखा है कि लोग देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो चलो सिग्नल पार कर जाओ। तो हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ जुमला इस्तेमाल करते हैं कि अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस ने नहीं देखा, कैमरा देख रहा है, जब कैमरा नहीं था तो आपका आपका अपना आपकी नैतिकता देख रही है ना। अगर आप खुद को बताओ कि हम गलत कर रहे हैं तो अपने आप सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन
1: और
0: कर
1: आजकल हर सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पर एक तीसरी आंख यानी कि कैमरा लगा दिया गया है। तो आप ये ना सोचे कि कोई हवलदार नहीं है तो आपको किसी ने देखा नहीं है।
0: अब गाना सुनते हैं एक।

0: ये पतिता फिल्म का गाना था और सड़क सुरक्षा के लिए हमारे श्रोता बहुत सजग है भाई। बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है। एक श्रोता ने लिखा है कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन ये सच है कि हम उसे उतना महत्व नहीं देते। इस विषय पर हमें बच्चों को स्कूल और घर से ही शिक्षा के एक रूप में देना चाहिए। आजकल पढ़े लिखे नौजवान, खासतौर पर नवयुवतियां भी फैशन के चक्कर में बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाते देखे जाते हैं, उनका चालान भी होता है।
1: और नवयुवतियों की जब बात हुई है तो नवयुवतियां भी कई बार फैशन में, वो सिर्फ जिस तरह का हेलमेट पहनती है वो सिर्फ एक टोपी जैसा होता है जिसमें सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं होता। ये सिर्फ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए पहनना है। और ममता जी, आपने जब उल्टा चलने की बात बताई थी ना, इसी बात पर हमारी एक सखी ने कुछ कमेंट लिखा है। वो कहती हैं कि ममता जी आपने बिल्कुल सही कहा, उल्टा चलना कई बार ज्यादा सुरक्षित है। कुछ साल अब अपनी अपनी घटना बता रही हैं। कुछ साल पहले पुणे में इसी तरह हम कुछ सहेलियां लौट रहे थे। एक सहेली बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाने लगी तो मैंने मना किया। इस पर उसने कहा कि नहीं, दाहिने से ही चलो, कम से कम उधर से आते हुए वाहन दिखाई तो देते हैं, गाड़ी आ रही है तो हम पीछे हो सकते हैं। तब से मैं भी कई बार इस तरीके को अपनाने लगी हूँ।
0: लेकिन बस सजग रहना बहुत जरूरी है कि आप, पता चला मोबाइल देखते देखते चल रहे हो, सामने से कोई वाहन चला आ रहा तेज स्पीड में, तो आपका बैलेंस तो बिगड़ेगा ही और जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये आपकी सजगता पर डिपेंड करता है। मोबाइल देखते हुए, फोन पर बात करते हुए लोग चले जा रहे होते। आजकल ये जो मोबाइल फोन है वो सब बहुत सारी मुसीबत की जड़ हो गई
1: हाँ, लेकिन अगर ये मोबाइल फोन आप कमेंट लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि हम कमेंट पढ़कर सुनाते हैं।
0: है।
1: अगला जो हमारा विषय है जिस पर हमें बात करनी थी, यानी कि पुराने कपड़े जिन्हें आपने बहुत पहन लिया लेकिन अभी वो अच्छी अवस्था में है, आपको उनको कोई नया रीयूज करना है तो किस तरह करेंगे, इसके बारे में जो कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इस पर एक कमेंट बड़ा अच्छा आया है कि पुराने कपड़ों को थोड़ी मेहनत के साथ नया रूप दिया जा सकता है। पुराने सूट, साड़ी या जीन्स को नया डिजाइन देकर फैशनेबल बनाया जा सकता है। उन पर कढ़ाई, लेस, बटन, पैचवर्क, रंग बिरंगे कपड़ों को जोड़कर आकर्षक लुक दिया जा सकता है। पुराने दुपट्टे से स्टोल, कुशन कवर या बैग भी बनाए जा सकते हैं। पुरानी पैंट के थैले जो कि सामान लाने के लिए बहुत काम आते हैं वो बनाए जा सकते हैं। और ये बनाते हुए हमने अपनी मम्मी को बहुत देखा है। इस तरह पुराने कपड़ों को नया आकार देने से न

0: तो चंचल जी, इससे गाने से पहले आप पुराने कपड़ों को नया लुक किस तरह से देना चाहिए बता रहे थे, और हमारी सखियों की बहुत सारी टिप्पणियां भी आपने सिखाई हमें, तो याद है बचपन में कि पुराने कपड़ों की बहुत सारी चीजें तैयार की जाती थी, यहाँ तक कि टेबल क्लॉथ बना दिया जाता था, और कुशन कवर तो बताया ही हमारी सखियों ने, और हमें याद है कि हमारी माँ पुराने कपड़ों से बहुत सारी चीजें और डिजाइनदार बनाती थी, सिलाई मशीन होती थी घर में, सिलाई मशीन का कवर कपड़ों से तैयार किया जाता था, और पैरपोश उस समय बाजार में बहुत कम मिलता था हमें, तो जहां तक याद है तो कपड़ों से ही तैयार किया जाता था, और बहुत सारे तकिए के कवर सुंदर डिजाइनदार बना दिए जाते थे, झालरदार झालर बहुत सुंदर लगता था।
1: कई बार अलमारियां जो घर में होती थी, जैसे अब दरवाजे वाली अलमारियां होती हैं, जब पहले नहीं होते थे ऐसे आले होते थे, खुले होते थे, तो उन पर भी पर्दा लगाने के लिए जो घर के पुराने कपड़े हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता था।
0: और एक बात और, जो बड़ा सा रेडियो हुआ करता था टेबल पर, एक परिवार के सदस्य की तरह बैठा रहता था, मर्फी वाला रेडियो, तो उसके लिए भी कवर बनाया जाता था, और वो बाकायदा डिजाइनदार कवर होता था कि वो स्पीकर दिखाई पड़े और कवर से पूरा रेडियो ढका रहे ताकि उसमें डस्ट ना जाए।
1: और कई बार होता है ना कि कोई बड़े चाव से हमने साड़ी खरीदी, कुर्ता खरीदा या कोई भी जीन्स खरीदी, उस पर कुछ ऐसी जगह पे वो अटक गया जिससे हल्की सी खरोंच लग गई या कुछ फट गया वो उस जगह से, तो हमें लगता है कि अब

0: बार नहीं पहनेंगे, मन में एक खटास सी आ जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद अलमारी में जब हम फिर से उसी कपड़े को देखते हैं तो मन करता है कि चलो कुछ नया करके इसको पहन लिया जाए। तो इस तरह से जो ये चीजें हमारी अन्य सखियों ने लिखी है ना, कि पैच वर्क लगाकर, कुछ कढ़ाई बनाकर, या उसको कुछ काट छाट कर छोटा बड़ा करके, इस तरह से कई कपड़ों को नया लुक हम दे सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और अगर वो दाग वहां पर कोई आ गया है तो उन्हें डाई करके, खुद ना कई बार हमने मशीन में सारे कपड़े एक साथ में डाल दिए और कपड़े नए के नए ही दाग लगने से खराब हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से अलग तरह से डाई किया जाए, या रंग बिरंगे जो छपाई की जाती है, इस तरह से उस कपड़े को हम नया लुक देकर फिर से पहन सकते
1: वैसे
0: हैं।
1: जो डिजाइनदार दुपट्टे होते हैं
0: जी
1: चुन्नी, उसके तो कुर्ते बनाए हैं आपने भी और हमने भी, है ना,
0: और
1: तो वो बहुत सुंदर बनता है।
0: बहुत सारी जो कामकाजी महिलाएं हैं जिनके पास इतना समय नहीं होता कि वो रोज साड़ी पहन सकें, और जब वो अपनी वार्डरोब को खोलती हैं तो लगता है कि हाय इतनी सारी साड़ियां हैं, सभी पसंदीदा हैं, तो उनका
1: ये आप अपने दिल की बात कर रही हैं
0: जी, उनका
1: ना ये
0: इस्तेमाल
1: हम
0: करने
1: सबके
0: के
1: दिल की
0: लिए
1: बात है
0: हम कई बार
1: दरअसल।
0: गाउन बना लेते हैं, कई बार उनसे प्लाजो सेट बना लेते हैं। तो और आजकल आप जाइए डिजाइनर्स के पास में तो वो इतने सारे उनके ये रीयूज बता देते हैं, और जिन कपड़ों को हम बहुत पहन चुके होते हैं तो उनसे तो आजकल इतनी तरह के बैग बनने लगे हैं, कुशन कवर बनने लगे हैं, तो ये जो रीयूज है ना ये बहुत ज्यादा होता है।
1: और बात आपने साड़ियों की निकाली है, तो साड़ियां तो ऐसे ललचाती हैं, तो
0: जी
1: हम उसको रखे रहते हैं कि अब फला मौके पर फला साड़ी पहनेंगे,
0: जी
1: और उन साड़ियों को कई बार रखे रखे उसमें क्या कहते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं,
0: जी
1: खासतौर से सिल्क की साड़ियों में।
0: जी
1: तो अगर आप टेलर के पास ले जाएं और ये कहें कि इसका एक डिजाइनदार जो आजकल बहुत चलन में था पिछले दिनों, वेस्टर्न गाउन, जिससे कि आप कहीं बाहर फंक्शन में जाते थे, पार्टी में, और वो जब खरीदने जाते थे तो महंगे महंगे मिलते थे, तो साड़ियों का डिजाइनदार आप वेस्टर्न गाउन
0: बिल्कुल,
1: बनवा
0: उनकी
1: सकते हैं।
0: कलियां अलग अलग कटवा कर, तो जो खराब हिस्सा है वो कलियों
1: अनारकली
0: में कट
1: जिसको
0: जाता है,
1: कहते
0: तो
1: हैं
0: छोटी
1: हम।
0: छोटी कलियां कटवा कर उनकी स्कर्ट बन जाती हैं, उनके अनारकली ड्रेस बन जाते हैं, या आप स्कर्ट बना लीजिए, लहंगा बना लीजिए, ऊपर से कुछ कुर्ती या टॉप नया ले लीजिए, तो वो बहुत सारे नए लुक हैं। इस तरह से जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने भी कुछ आइडियाज हमें दिए हैं, तो पुराने कपड़ों को नया लुक देने के लिए आप ब्लीचिंग या उनको डाई करना, कढ़ाई, पैचवर्क का उपयोग कर सकते हैं। टी शर्ट को क्रॉप टॉप में बदला जा सकता है, जीन्स को डिस्ट्रेट यानी कि फाड़कर स्टाइलिश बनाया जा सकता है, शर्ट पर बटन या लेस लगाकर उनको नया रूप दिया जा सकता है, डाई का उपयोग करके फीके पड़ चुके कपड़ों को फिर से चमकीला बनाया जा सकता है। इसी तरह से एक अन्य संदेश में हमारे साथी ने जो हमें लिखकर बताया है कि कुछ रचनात्मक उपाय उन्होंने बताए हैं कि डाई से नया अंदाज किस तरह से दिया जा सकता है, पेंटिंग या कढ़ाई करके किसी भी शर्ट, टी शर्ट या साधारण से कुर्ते को भी फैब्रिक पेंटिंग उस पर लगा दीजिए, हाथ से कढ़ाई कर दीजिए तो एक फूल पत्ती बना देंगे तो नया डिजाइनर लुक आ जाता है। इसी तरह से जीन्स का कई तरीके से इस्तेमाल है, शॉर्ट्स बना सकते हैं, बैग या पाउच बना सकते हैं, कुशन या मोबाइल के स्टैंड बना सकते हैं, इस तरह से लैच और पैच वर्क कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, फिटिंग में बदलाव कर सकते हैं, कुछ एक्सेसरीज जोड़ी जा सकती हैं। और आगे इन्होंने संक्षेप में लिखा है कि इससे पैसों की बचत होती है, पर्यावरण संरक्षण होता है, रचनात्मकता का विकास होता है, और यूनिक व्यक्तिगत फैशन का स्टाइल बन जाता है।
1: छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे डिजाइनदार कपड़े बन सकते हैं, फ्रॉक है, टी-शर्ट है, ये बन सकते हैं। और अब एक गाना सुन सकते हैं।

0: कपड़ों से और क्या क्या बन सकता है चंचल?
1: पुराने जो स्वेटर होते हैं ना, उनका भी हम एक नया लुक दे सकते हैं, उनसे टोपी बन सकती है, और जो पुलोवर होते हैं उनसे हम कार्डिगन बना सकते हैं।
0: लेकिन
1: और
0: ऊन घट जाता है बीच से, फिर उसको कैसे करें?
1: अरे मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ।
0: अच्छा
1: एक बार हुआ क्या कि ये तो उन दिनों की बात है जब मैं जयपुर में रहा करती थी, और वहाँ ठंड बहुत होती है। तो पूरा तैयार हो गई, हेयरस्टाइल वगैरह अच्छे से बना लिया, बाद में आता है कि स्वेटर नहीं पहना है। अब स्वेटर पहनने में रखने लगा कि भाई ऊपर से जब गले में से हम डालेंगे सर पे, तो सारा हेयरस्टाइल खराब हो जाता है, और ये समस्या और भी लोगों को शायद होती होगी। तो उस दिन तो फिर मुझे दोबारा हेयरस्टाइल बनाना पड़ा, लेकिन इससे बचने के लिए मैंने परमानेंटली उस स्वेटर को काट दिया आगे से। और फिर वहां पर मम्मी ने, क्योंकि मम्मी सिलाई कढ़ाई किया करती थी, तो वहां पर मेरी माता जी ने एक जिप लगा दी, और बड़ा सुंदर सा वो कार्डिगन बन गया। तो ये भी एक नया तरीका इस्तेमाल है। अगर आपका कोई पूरा ऐसा स्वेटर है जो आपको गले में से सर पे से डालकर पहनना पड़ता है, पूरा बंद है, और ये समस्या कभी आपके साथ भी हुई हो, तो आप इसे जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसको आगे से काट लीजिए, और वहां पट्टी लग जाती है तो वो उसको मोड़ दिया जाता है, तो ऊन के धागे निकलने का डर भी नहीं रहता, और जिप लगाने के बाद में उसे खोलकर पहनने में बड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप बटन लगाएंगे तो शायद वो ऊन के धागे निकलने का डर रहता है, इसलिए जिप लगाना ज्यादा सुरक्षित।
0: और एक बड़े काम की चीज है कि पुराने कपड़ों को, खास तौर से जो छींटदार शर्टें होती है
1: जी
0: कॉटन की मोटी, तो उसके सुंदर डिजाइनदार बैग या झोले बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको प्लास्टिक की थैलियां लेनी जानी है, तो झोले तो बहुत सारे घर में चाहिए होते हैं, तो वो डिजाइनदार बैग बन
1: और
0: सकता
1: इस तरह
0: है।
1: से ममता जी हम प्लास्टिक के उपयोग को रोक भी सकते हैं। आजकल ज्यादातर कागज के थैलियों में सामान आने लगा है, तो कई बार लटका कर आपको बहुत देर तक तो कोई भारी वजनदार सामान लाना है, तो वो कागज की थैलियां भी उस वजन को झेल नहीं पाती हैं, इसलिए बेहतर है कि आप घर पर बना हुआ कपड़े का बना हुआ कोई थैला लेकर जाए।
0: और थैले से जब सब्जियां लेकर आते हैं ना, तो
1: जी
0: कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं।
1: जी
0: उसकी साफ सफाई देख रेख कैसे करते हैं, जरा बताइए
1: हाँ
0: फटाफट।
1: भाई, ये तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में हमारे साथियों ने भी हमें लिखकर भेजा है कि ये जो बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है हमारे रसोई घर में होता है, जो कि होता है खाने को सुरक्षित रखने के लिए और ताजा रखने के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज अगर रख दी जो खाने को ताजा रखने की बजाय बदबूदार बना दे, या कई चीजें बहुत दिन तक रखी हुई हैं तो भी वो एक सड़न या बदबू पैदा करने लगती हैं, तो इससे हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। फ्रिज से जो दुर्गंध आती है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिन्हें हम कई बार नजरअंदाज करते हैं, फिर बैक्टीरिया और फफूंद पनपने लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इस गंध से आपको बचना है तो बेकिंग सोडा का जो घोल है उससे आप साफ कर सकते हैं। ये हमारे साथियों ने ये टिप हमें बताई है।
0: कटा हुआ नींबू का टुकड़ा रख देना चाहिए, उससे भी उसकी
1: ये
0: जो
1: जो आपने
0: स्मेल होती
1: बताया
0: है चली
1: ये टिप भी
0: जाती
1: हमारे साथियों ने हम तक
0: है।
1: लिखकर पहुंचाई है। अगर बेकिंग सोडे के घोल से आप पहुंच नहीं सकते हैं तो एक खुले एक बर्तन में, कटोरी में आप बेकिंग सोडा रख दीजिए, तो वो भी गंध को सोख लेता है। और अगर ये बदबू बहुत ज्यादा जिद्दी है तो सफेद सिरका जो होता है उसे पानी में घोलकर एक मिश्रण तैयार कीजिए,

0: और इसे पोछा लगा दीजिए। और कॉफी के जो दाने हैं उनको भी रखा जा सकता है, ये भी हमारे एक श्रोता की लिखी हुई टिप्पणी है। और नींबू की तो आपने बताई दी है। इसके बाद जो सक्रिय कोयला जिसे एक्टिव चारकोल कहते हैं, वो भी गंध सोखने में शक्तिशाली होता है, तो उसे भी रखकर आप फ्रिज के
1: नमी सोख
0: अंदर।
1: लेता है।
0: जी
1: और अब चलते चलते सुनते हैं ये गाना, फिल्म है भरोसा, लता मंगेशकर की आवाज।

0: भरोसा फिल्म का ये सुरीला सा गीत था। जी तो चाह रहा है कि पूरा गाना सुनवाया, लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो अब वक्त नहीं कि पूरा गाना, कुछ एक अंतरा बचा रह गया, फिर कभी। अब बस अब श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां भारती की उस सरहद की रक्षा कर रहा है, आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की, सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया है, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हो, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़ गए।
1: हाँ, मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहाँ पे जाके।
0: तो रैगिंग हुई थी सर आपकी?
1: बहुत।
0: उसके बारे में याद है, 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
1: 15 रैगिंग की वजह से मैं कहूंगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंडसाइट, क्योंकि वो रैगिंग ने ही हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत, हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया। वो एक फाउंडेशन बन जाती है और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है। और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी में, वो रगड़ा के साथ ही होती है। बेसिकली रगड़ा होता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स ऑफ कोर्स। वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन बीएससी एंड बीए। अदर देन द

0: That the subjects are all मिलिट्री साइंस, मिलिट्री
1: हम्म,
0: ज्योग्राफी एंड देयर आर फील्ड एक्सरसाइजेस. लेकिन हम जो एनडीए से जो होते हैं, वी आर बॉन्डेड सो वेल. मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बॉन्डेड है,
1: ओके,
0: और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं. पीपल माई कोस्टमेट्स हैव बीन जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन एनडीए.
1: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हम

0: आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
1: देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे
0: जी,
1: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको। मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी, वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं। और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में।
0: ओके, फौज में ही जाना है।
1: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में, और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं।
0: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में, बोला नहीं उन्होंने ये बच्चा भी जाएगा वहां।
1: उनके हस्बैंड भी थे फौज में, उन्होंने फौज के बाहर फ्रेंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने। हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली, सारा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वहाँ पे, फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशिएंट। यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया।
0: सो इज दैट एडवांटेज और You think you miss something अगर civilian area में नहीं जा रहे, कुछ ऐसा?
1: नहीं, ऐसी something? कोई बात नहीं है। Actually, most of the cantonments or army stations are in the field areas. So, field area में तो you have to be self-sufficient because आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए, चाहे राशन हो, चाहे जो entertainment चाहिए, वो तुम्हारे आसपास ही होनी चाहिए।
0: जी,
1: मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है।
0: ओके,
1: वी हैव ऑफ कोर्स अप्रोच टू मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड सो ऑन। कभी कभी आते हैं फील्ड में, अगर आप पोस्टिंग कर लें तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए।
0: ओके, मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशंस में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफ स्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी।
1: यस, बिल्कुल सही बात है। ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू एक्चुअली कम टू सी सो मेनी प्लेसेस, ए न्यू प्लेस एवरी टू इयर्स, थ्री इयर्स, एंड आई रियली लव दैट। एंड एक्चुअली वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, आई स्टिल लव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट, परहैप्स इन यू नो थिंग विच आई हैव गॉन थ्रू। एंड आफ्टर ए वाइल मेरे फादर ने सोचा भाई बहुत घूमना हो गया बच्चों को, तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया एयरफोर्स स्कूल में, सुक्रोटर पार्क दिल्ली में, बोर्डिंग स्कूल,
0: टैफ्स कहते थे,
1: टैफ्स, अब टैफ्स हो गया,
0: पहले आपका और मेरा एक कनेक्शन है,
1: एएफसीएस होता था।
0: ओके,
1: सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है, एनडीए की तैयारी हो गई, सो दैट इज हाउ द एकेडमिक्स वाज। लकीली आई वेंट थ्रू द एनडीए एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट
0: जी,
1: एंड एनडीए चले गए।
0: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं, अहमदनगर में। आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
1: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
0: जी,
1: सबसे पहले। उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं।
0: ओके,
1: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है।
0: ओके,
1: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है।
0: ओके,
1: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजयंत होते थे,
0: T-55,
1: और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए
0: जी,
1: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था। मैंने अहमदनगर में आई वॉज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक, एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड
0: वर्जन्स है। सर, टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड आल्सो वांट टू लिसन कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा, है ना? सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
1: माय फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन मिलिट्री एकेडमी वाज द टैंक रेजिमेंट।
0: ओके,
1: एंड आई जॉइंड अ रेजिमेंट कॉल्ड द डेक्कन हॉर्स, जो कि 1790 में रेज हुई थी एज द प्राइवेट आर्मी ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद।
0: ऑलराइट,
1: एंड देन इट वेंट थ्रू वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट बिकेम रॉयल डेक्कन हॉर्स एंड देन द डेक्कन हॉर्स आफ्टर 1947। एंड वी हैड ए मुस्लिम स्क्वाड्रन इन बिफोर 1947।
0: अच्छा,
1: आफ्टर पार्टीशन दैट स्क्वाड्रन वेंट इनटू पाकिस्तान इन ए रेजिमेंट कॉल्ड प्रोबिंस हॉर्स।
0: ओके,
1: for quite

0: Some time actually, strangely, we used to have a common newsletter also, I think, where Robins Horse sort of became a sister regiment, though in on the other side of the border. And we had one officer also till quite late going to London, UK, to attend the British officers who used to host. Their fathers or they themselves served in the Royal Deccan Horse or the Province Horse. So it was
1: सर
0: quite a
1: डेकन हॉर्स के साथ जुड़ने के बाद वो जज्बा कैसा आया कुछ वो अंदर की आपके अंदर की भावना यू वांट टू शेयर विद अस
0: यस आई वाज ऑलवेज अ कैवलरी मैन. हम ब्लैक बेरेज पहनते हैं, काली टोपी. एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं. एक इन्फेंट्री होती है, एक टैंक्स होते हैं. जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते. लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं, वो लीड करते हैं. दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट. ये अब हमारा हुआ एंड यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. सो दैट इज़ व्हाट द टैंक्स डू. इट्स अ टफ लाइफ. गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है.
1: हाँ वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग
0: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके,
1: जी
0: जो पूना हाउस की,
1: जी
0: अरुण खेतर पाल
1: जी
0: पर,
1: जी
0: तो
1: जी
0: उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है. ये ऊपर का पोला होता है, उसमें बैठ के जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है.
1: ओके
0: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट
1: जी
0: बताता हूँ
1: जी
0: कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी. तो
1: अच्छा
0: हम लोग जो जवान, जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे.
1: अच्छा
0: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है.
1: विच इज T-92
0: T-72,
1: 72
0: T-55, T-54 होते थे उसके
1: ओके
0: पहले,
1: ओके
0: अब T-90s. कॉम्पैक्ट टैंक, उसमें एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता
1: उसके
0: है.
1: पीछे भी कोई वजह है कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे हो
0: नहीं उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट. बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है. यू नो गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं,
1: गॉट इट
0: ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं. सो यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. देर इज लॉट ऑफ एम्युनिशन स्पेस दैट इज केप्ट टू लोड एंड रीलोड द बैरल.
1: राइट तो आज के टैंक्स भी डिजिटाइज हो गए हैं
0: सॉर्ट ऑफ
1: सॉर्ट ऑफ
0: डिजिटाइज. तो कंप्यूटर तो नहीं है अंदर एज फार एज आई नो नाउ,
1: देखिए
0: बट
1: सिविलियन हूँ सिविलियन वाले सवाल पूछूंगा
0: हाँ जी
1: क्या पता आपके पास एक जीपीएस है आपको अपनी लोकेशन अपना रूट आप देख रहे हो यू नेवर नो
0: यस यस
1: अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो
0: हाँ.
1: इट्स मोर टूवर्ड्स कुछ
0: उनके
1: ऐसा
0: पास
1: जानना
0: एक
1: चाह रहा
0: रशियंस
1: था
0: के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था क्वाड्रात.
1: ओके
0: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था.
1: जी
0: लेकिन अब तो यू नो जीपीएस है तुम्हारे पास. इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर, टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है.
1: ओके
0: लेकिन नेविगेशन इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम नाउ. एज यू नो यू हैव इवन गूगल
1: एग्जैक्टली
0: मैप्स,
1: हाँ
0: यू हैव
1: वही वही मैं
0: एवरीथिंग.
1: जानना चाह रहा था आपसे कि
0: सो
1: पर आप सोचिए एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ सोचिए हमारे टैंक्स हैं एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं आपने सारा जो प्लान है आपका जो मिशन है वो सब कैलकुलेटेड है
0: करेक्ट.
1: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा 4 टैंक्स इधर गए या उधर गए या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान कुड नॉट हैपन नाउ यू हैव टू फेस सो हु गाइड्स द रूट वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं
0: सी देखिए ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है कि क्या करना है, कैसे
1: जी
0: करना है, कहाँ
1: जी
0: जाना. देर इज हमें मैप्स, हमारे जमाने के टाइम में बता रहा
1: जी
0: हूँ, मैप्स इशू
1: एब्सोल्युटली
0: होते थे, ग्रिड मैप्स,
1: जी
0: और उस
1: जी
0: पर
1: जी
0: हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स
1: जी जी
0: और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए.
1: जी
0: फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक थ्री तीन स्क्वाड्रन्स होते हैं और हर स्क्वाड्रन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स,
1: ओके
0: हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं. तो यू नो सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर, ए ट्रुप लीडर्स जो
1: या
0: सबसे जूनियर होते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: देन यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल सीओ.
1: जी
0: दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर.
1: ओके
0: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही है. अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाड्रन होल्ड करिए यहाँ पे, होल्ड फायर, ये सारी होती है. तो सी

0: होता है वो एक दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है, ब्रिगेड कमांडर है और जीओसी के साथ, उसको वहां से इंस्ट्रक्शंस आ रही है, वो इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं मिलती है. हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो सीओ ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर आ रही है, 40 स्क्वाड्रन आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट फ्लैंक.
1: स्पोर्ट्स वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली.
0: इनफैक्ट दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड आल्सो इन द आर्मी.
1: अच्छा,
0: देयर फ्लैंक्स आर देयर. देखिए बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है.
1: ओके,
0: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में है जहां पर भी है अटैक्स में, और यू टेल योर एयर फोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन,
1: ओके,
0: सो दैट द एनिमी इज बॉग्ड डाउन एंड इट इज busy because it's down because it is being bombarded from all over, and that is the time you have your already secret instructions to go from the left or the right or from the rear and attack the enemy. You don't want to face an enemy which is up and about and free to fire at you.
1: शायद यही guns जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था.
0: हाँ,
1: उसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन कर रहा है. आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए.

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एस के यादव। आपका निक नेम मिकी है,
1: करेक्ट,
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। वेरी फनीली आमट कोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम डू यू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: ओह वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती है, आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, सील है,
0: ओके,
1: एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप,
0: या
1: उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को। सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो भी कमांडर हैं वो सैल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं?
1: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है।
0: ओह वाओ,
1: कॉम्बैट टीम एज ए यंग मेजर था तब मैं
0: जी,
1: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सैल्यूट टू द प्रेसिडेंट।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सैल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सैल्यूट, रेज करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है। तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक, द कमांडर हैज टू ओनली सैल्यूट विद हिज हैंड।
0: सर बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल

0: हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहाँ पे, बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहाँ जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि हिंद की सेना जा रही है ये.
1: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है, सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का जो आर्मर्ड विंग है उसका जो तोपखाना कह दीजिए
0: जी,
1: तो इट इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज, आई हैव हैड ए गुड टाइम इन माय टैंक रेजिमेंट बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है, हमारी प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफ़ी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पर. दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड.
0: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज अ टफ ट्रेनिंग, इट इज नॉट लाइक चलो यार आओ प्रैक्टिस करते हैं, नो इट्स लाइक दैट्स द रियल वॉर सिचुएशन. रियल लाइफ
1: सिनेरियो वॉर सिचुएशंस क्रिएट होती हैं
0: जी
1: राजस्थान डेजर्ट्स में, और वहाँ जाकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं.
0: ओके सर, मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ. बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं. आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया है और वो कह रहे हैं मेरा नाम गजानन शिंदे, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है. सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ. आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को known to you?
1: Not known to me, but yes, there are a lot of Shinde in that region. And Ahmednagar का जो Amadko school center and school है, वो एक central point है. Mainly उसी की वजह से वो town grow किया एक तरह से.
0: Okay.
1: जो सारी training जो हमारी होती है, चाहे radio की, driving and maintenance की, gunnery की training, tactical training, वो सारी जो basics होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं.
0: And everyone knows about it. There is no secret in it. क्योंकि आप air पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के location भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं.
1: It's a peace station. And it is basically training for training हम लोग जाते हैं.
0: शिरडी के पास जो अहमदनगर है आप उसकी बात कर रहे हैं. Alright. आप training की बात कर रहे थे वहाँ सर, वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग.
1: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
0: जी,
1: जो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहाँ पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी. एंड उसमें एक चीज होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है. मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स.
0: Okay.
1: जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस एंड आई वाज कमांडिंग ए स्क्वाड्रन. एंड वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह, रात को हमें ट्रेवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट, क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे. और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे.
0: Okay.
1: तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे.
0: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
1: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, यू नो उसके जैसलमेर के आगे आसपास.
0: ओके,
1: बॉर्डर के टाइम
0: जी.
1: तो वहां पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह, चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे. So,
0: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे.
1: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे, तो उस जमाने में ये जहरो वगैरह इतना नेविगेशन की जो आप बात कर रहे इतना नहीं था. जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और
0: आजकल भी रखते हैं.
1: हाँ, रखते हैं, वो
0: हम लोग रखते हैं.
1: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है नेविगेशन, कई बार खो जाते थे कि भाई कहाँ जाना है. तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, नीचे आ जाते थे, निकलते थे, एनडीए का ही निकला कोई कोस्ट हेलीकॉप्टर. तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री.
0: ओके,
1: तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का. तो उसने बोला मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर. तो उन्होंने बोला आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए. तो मैं इंस्ट्रक्टर था तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर. बट आई वाज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक.
0: अच्छा,
1: तो अभी आपने एमिंग की बात की तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा? तो मैंने कहा नहीं सर. उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ.
0: ओके,
1: अगर यहाँ से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
0: जी,
1: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा. तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है.
0: गॉट इट.
1: कि आपने

0: उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा,
1: मूविंग व्हीकल पे
0: मूविंग
1: आपको
0: व्हीकल
1: कैसे
0: पे
1: स्ट्राइक
0: कैसे
1: करना है।
0: करना है।
1: या ओके
0: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम, आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज।
1: और कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?
0: हाँ, मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है। एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे।
1: जी
0: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी। आई
1: ओके।
0: विश आई नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहाँ पर।
1: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हमें टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर करते हैं, कैन
0: करेक्ट।
1: वी कम बैक टू दैट?
0: यस, सो व्हाट हैपेंस इज दैट, लेट मी टेल यू अबाउट कारगिल आल्सो। कारगिल में भी जो लड़ाई हुई है, ऊपर जो चढ़े हैं, जो सपोर्टिंग जो फायर्स दिए हैं वो आर्टिलरी गन्स ने दिए हैं। वो सॉफन करते हैं टारगेट को। सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर, उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है, और दैट इज द ओनली वे वेयर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइंब करनी है।
1: ओके।
0: तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे, तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए।
1: ओके।
0: तो दैट इज एन अटेम्प्ट। उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके, और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है वहां
1: जो कि हुआ, मतलब
0: पे। यस
1: हमने देखा
0: यस बिल्कुल
1: वहां,
0: हुआ। यस
1: हमारे पीवीसी
0: यस
1: जो
0: यस
1: हैं
0: पीवीसी
1: परमवीर चक्र
0: आपके
1: से विजेता हमारे
0: यादव,
1: शो में भी आ चुके हैं,
0: यस यस एब्सोल्युटली।
1: संजय कुमार
0: और यही चीज जब पंजाब साइड या प्लेन्स में होती है, वहां
1: जी,
0: टैंक्स का रोल
1: वहां
0: आता है,
1: टैंक्स का रोल होता
0: क्योंकि
1: है।
0: वहां पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है। वहां पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है,
1: जी
0: तो टैंक्स लीड करते हैं वहां पे।
1: ओके।
0: और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं, तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहां पहुंच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया।
1: बट
0: दैट
1: सर,
0: इज हाउ इट वर्क्स।
1: आज के टाइम में जस्ट अ लेमैन क्वेश्चन, टैंक जहाँ पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट, और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच अटैक्स?
0: यू सी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है,
1: जी
0: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन। इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली डिड नॉट रियली क्रॉस द बॉर्डर एंड वी हैड रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन्स। वी सेट ऑफ मिसाइल्स विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर। द एयरक्राफ्ट शॉट देयर टारगेट्स विदाउट रियली क्रॉसिंग द बॉर्डर। इट वॉज ए टोटली डिफरेंट गेम एंड आई वुड क्रेडिट दिस वॉर अ लॉट टू द इंडियन आर्टिलरी, बिकॉज आर्टिलरी का रोल बड़ा हैवी था इधर। दे हैव दिस लॉन्ग रेंज गन्स एंड दे हैड देयर ओन टारगेट्स एंड दे वर डूइंग इट। मौका नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर में। शायद अगर वॉर 2-4 दिन और चलती तो आर्मोर्ड और इन्फेंट्री भी अंदर जाके फिर करना पड़ता, तो वो दूसरी बात थी, लेकिन वो हुआ नहीं।
1: ओके। राइट सर, एक हमारे लिसनर हैं एंड ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, श्री रंगम राजेश, श्री रंगम तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से लिख रहे हैं मैसेज, एंड आपको गुड इवनिंग कहते हो, कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड
0: गुड
1: द
0: इवनिंग
1: कंपनी
0: श्री,
1: हियर, एंड ऑफ
0: यू आर हैविंग
1: कोर्स
0: अ ग्रेट वन।
1: हम यहाँ पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH-16 अहमदनगर अहिल्या नगर मराठा बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू। आई डोंट नो वॉट ही मीन्स बाय दैट, बट समथिंग ही इज रिटन टिपिकल ऑफ महाराष्ट्र इज वणक्कम, एंड दैट इज समथिंग वेरी स्वीट।
0: यस
1: समबडी
0: यस
1: नोन
0: यस
1: टू यू?
0: यस नो नॉट नोन टू मी, बट
1: ओके।
0: यू नो वनकम आई थिंक इज नॉट ए महाराष्ट्रियन वर्ड, परहैप्स तमिल
1: हाँ,
0: वर्ड,
1: तमिलनाडु से लिख
0: बट
1: रहे हैं
0: ही
1: और
0: हैज द स्पिरिट
1: सारा
0: एंड
1: किया, जय हिंद,
0: यस
1: जय
0: जय
1: महाराष्ट्र, जय
0: किया एंड
1: तमिलनाडु,
0: कैवलरी
1: जय
0: एंड
1: भारत, दैट्स द स्पिरिट दैट वी लिव विद है
0: और
1: ना सर।
0: कैवलरी रेजिमेंट को ऑफिसर्स को कई बार कैवलियर बोल जाते हैं, सो
1: ओके
0: दैट व्हाट इज मेंट।
1: ओके। सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूं और सिविलियन हूं, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है, और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की, तो मैं फिर से जानना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा if it's allowed.

0: You were happy with the how the forces responded. I mean, I know it's a funny question, but आपके कुछ सुनना चाह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा. Were you also willing to go कि यार मुझे बुला लो, मैं भी आता हूँ.
1: There and serving at that time because बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने और उनके जो मारे हैं हमने एयरफील्ड्स पे ऑलमोस्ट knocking on the door of their nuclear capabilities. It's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology you are saying ki yehi superiority aap bata
1: rahe
0: hain.
1: Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था.
0: बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहाँ से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो ऑब्वियसली इट्स ए सिटी विच इज बीइंग टारगेटेड. सो इट वॉज डाउन्ड. इट वॉज एब्सोल्युटली शॉट डाउन. So that's a big thing, and I think that was the only real thing which was threatening to the city. And I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and Delhi is gone and Delhi is finished. All
0: you heard that?
1: Yeah, I mean they were saying abhi Delhi pe bombarded ho gayi hai, ye bombardment ho gayi hai. I mean all false fake news.
0: Sir, hamare traffic jam mein phasenge tab unhe pata lagega ki how difficult it is to go out from here. एनीवे सर, ये तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और ये चर्चा हम जारी रखेंगे.

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 350 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं। तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: सो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशन होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हम तीनों थे कोस्ट गार्ड्स। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला वो जो देवर, नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर दे आर ऑल्सो दे यूज टू प्रेडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी आता है?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है आपका रेनबो, बिकॉज इट गिव्स मी lot of retro music also, it gives me all sorts of music, so I like it, it's my favorite.
0: FM Gold भी है जिसमें,
1: FM Gold है, I like it.
0: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
1: देखिए रेडियो तो ever since we were commissioned, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा FM तो

0: नहीं था तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था,
1: जी
0: चाहे
1: जी
0: बॉर्डर पे हो कहीं भी हो।
1: एब्सोल्युटली
0: इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था। हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें
1: अच्छा, उनके गाने हमारे भी जाते हैं
0: उनके
1: सर, सड़क
0: हमारे भी
1: पर
0: जाते हैं,
1: जी
0: तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे,
1: जी
0: वो जमाना था। सो रेडियो हैज हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली।
1: ऑलराइट। तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें, कौन सा गीत प्ले करें?
0: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति नीति भल्ला।
1: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की एक सदस्य हैं।
0: फ्रेंड्स हैं में से, बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी है।
1: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एस के यादव हैं और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं। आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको। जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का।
0: वाह। और मेरे शो में स्पोर्ट्स आई जाता है, लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर। प्लीज गो।
1: एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी।
0: ओके।
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं। तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के, तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी। उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एमिनेशन रखा होता है, वहां जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप।
0: अच्छा।
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक।
0: ओके।
1: सो माई मिस्टेक वॉज दैट आई डिड नॉट इंश्योर दैट देयर वर लेसेस इन द फुटबॉल शूज
0: एवर।
1: So that I used to always remember.
0: And but it groomed you into a good individual.
1: Yes, yes, exactly. NDA में also आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास टेबल मैनर्स नहीं है, they teach you other than they teach you things like table manners, courtesy, opening the door.

0: फॉर द लेडी, टेबल के ऊपर आप एल्बो रख के नहीं खा सकते। अगर आपके
1: वाह
0: सीनियर ने आपको देख लिया
1: जी,
0: तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा,
1: वो
0: या
1: बोलेगा खाओ।
0: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ, और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे। तो ये चीजें आपको याद रहती हैं लाइफ
1: यस,
0: पर, यू नो, कि
1: बट आपको
0: मैनर्स क्या
1: प्रॉब्लम
0: होते
1: नहीं
0: हैं।
1: होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं तो, है
0: काफी फौजियों को होती है, बट
1: ना?
0: एडजस्ट करना पड़ता है, बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट,
1: हाँ,
0: इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट।
1: तो गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
0: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस, जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स, बट यू नो, अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं।
1: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए, बिल्कुल
0: हाँ,
1: नेचर से
0: एडवेंचर
1: बहुत प्यार
0: स्पोर्ट्स
1: करते
0: में
1: हैं
0: चला गया था,
1: जी।
0: एंड माय कंपनी वाज़ द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया, वी वर द सेकेंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया,
1: ओ
0: एंड वी टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, विच वी स्टिल डू। कंपनी, आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वंडरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ।
1: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था
0: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द
1: ऑलवेज,
0: आर्मी
1: जब
0: डेज,
1: तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना
0: एब्सोल्युटली,
1: काम।
0: आर्मी डेज से ही। एंड इवन नाउ टुडे वी आई आई एम ए ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट, वी आर गोइंग फॉर ए हरकी डून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स ट्रैक
1: और कोई
0: ईयर बैक।
1: सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता
0: नहीं, सिविलियंस आर ऑल्सो डिसिप्लिन, दे
1: है?
0: हैव
1: या
0: गुड लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो टूगेदर
1: ओके okay.
0: इन माई ट्रैकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स।
1: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन लाइफ आपकी चली आगे, आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो वो फौजी जैसी जिंदगी, वो डिसिप्लिन लाइफ कैसे जिए?
0: देखिए, मेरा कहना है, एंड इट्स ए पर्सनल ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी, फॉर इवन इफ इट इज़ फॉर 5 ईयर्स, लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये जो बेस बनता है ना, जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन जो बेस होता है वो अर्ली डेज में ही हो सकता है। आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते।
1: ग्रेट पॉइंट।
0: यू हैव टू कैट देम यंग, एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कि कंपलसरी आपको 5 ईयर्स या 3 ईयर्स की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन,
1: यस
0: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेज यू, एंड आई होप समडे दिस हैपेंस।
1: राइट। आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी सर? आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो। टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे, उन्होंने ही बोला टैंक को इधर करो, कुछ
0: जब
1: आपको?
0: यंग ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में,
1: अच्छा
0: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे,
1: जोर जोर से
0: और
1: शॉटे
0: फिर
1: मारते थे। अच्छा
0: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे, तो टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था।
1: बस।
0: दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोज डेज।
1: अच्छा एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर, आप ही की
0: श्योर
1: प्लेलिस्ट से लिया हुआ है, कुछ
0: श्योर
1: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसकी फरमाइश है ये बताते हैं सर, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग्स है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था। एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई हैं, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई RCC फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है। That is it.
0: आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए।
1: मैं वहीं पहुंच जाता हूं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड।
0: वहीं पहुंच जाता हूं। आप डॉग लवर भी हैं सर?
1: यस।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया और मैं भी डॉग लवर हूं। एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे पास मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो।
0: अच्छा।
1: एवर। माय फादर वाज ए डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स। अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम। और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया।
0: ओके।
1: एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहें तो हम
0: विवेक
1: उसका नाम रखा है और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग और बहुत मजा आता है।
0: मेरे पास फोन आते हैं IPL के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे पासेस में। विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा IPL का। मैं नहीं सर, मैं देखे रहूंगा।
1: ओ वैसे विवेक यू अर्नड अ पास IPL पास इफ यू लिसनिंग।
0: टॉप प्लेयर होगा पर
1: लैंडोर में रहते हैं मसूरी के पास।
0: फिर तो बच गए। एनीवे सर, यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड। आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, इज अ फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी। टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर।
1: माय डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
0: जी
1: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज।
0: वाओ।
1: एंड देन जॉइंड द एयरफोर्स।
0: हरियाणा में कहाँ से सर?
1: एक गाँव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा, इट्स नियर कोसली, अगर आपने सुना रेवाड़ी। रेवाड़ी तो सुना।
0: वहां से और भी फाइटर पायलट्स आए?
1: कोसली इज ए विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहाँ पे सारे ऑफिसर्स, यहाँ देयर इज ए ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज।
0: वाह।
1: तो
0: स्क्वाड्रन लीडर मनीष
1: यादव काफी हैं
0: जी,
1: एयरफोर्स के भी हैं।
0: ओके।
1: सो दैट इज हाउ ही इज, दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही ग्रू अप इन।
0: एंड वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर? Hunter उड़ाते
1: yes, yes, he was, he's seen the 71 war, he's seen the 65 war, yes.
0: Okay. और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके?
1: सुबह सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं देखता था छोटा बच्चा और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा, और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे देख।

0: थे हम लोग, एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स.
1: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है?
0: हाँ.
1: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट?
0: यस, आई हैव गॉट अ सीपीएल.
1: ऑलराइट, तो हाउ कम एयरफोर्स को छोड़कर, नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान.
0: आई लेफ्ट द आर्मी, आई वेंट अवे टू यूके.
1: ओके.
0: एंड केंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था.
1: वाओ. राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़े. आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर.
0: काफी है, लेकिन आप अगर एक ये कर दो, अभी ना जाओ छोड़ करके.
1: हाँ हाँ हाँ, दिल अभी भरा नहीं. दिल अभी सर, ये तो हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़कर. मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत है, तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर.

0: राइट देन सर, इट वॉज अ शेयर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज. प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, प्ले लॉट ऑफ वेदर इज टेनिस, स्विमिंग, आउटडोर्स, एंड सी लेस ऑफ स्क्रीन टाइम.
0: वो बहुत जरूरी है सर. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And you please look after yourself. And thank you so much.
1: Thank you. Thank you.

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। थोड़ी देर में हम सीए वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रस्तुत करेंगे।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोधरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये गणेशपुर

0: दलदली, मदनगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंगरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफनगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये इंदरपुर, नीलकंठपुर, महावीरगंज, कनक पुर, रामपुर, प्रेमनगर, कोटराही, नवापारा, रेवतपुर, कुंदी कला, जामदोहर, अखोरा, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के सीतापुर और मैन पाट में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये बंसीपुर, ढोढ़ा गांव, घासीडी, बोड़ा झरिया, दाती ढाप, कंडराजा, चोरकी पानी, डांड केसरा, परपटिया, लोटा ढोढ़ी, ललिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 94 है। ये आम गांव, पोटिया, चैनपुर, रुपुंगा, बनहर, औरानारा, कुड़ुम केला, डूंगा भवना, गलीमार, सारस मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये लबेद और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, नवागांव, चक्रधरपुर, सामारूमा, छर्रा, टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर, डडई पानी, बोतलधारा, खोला पारा, जिडार, सिंहार, छिंदौला, पायली खंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी, बोडापाला, बेगरपाला, हरदीबाय, पंडरी पानी, नगरार, ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे सीए वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए पहला गीत। फिल्म है यलगार। आवाजें उदित नारायण और सपना मुखर्जी की हैं। गीत के बोल लिखे हैं सुदर्शन फकीर ने और धुन बनाई है चन्नी सिंह ने।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तू भी ना आती।

उदित नारायण और सपना मुखर्जी को भी आपने सुना, फिल्म था यलगार। गीत के बोल लिखे थे सुदर्शन फकीर ने और धुन बनाई थी चन्नी सिंह ने। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म है हम दिल दे चुके सनम। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत ने, धुन बनाई है महबूब ने और संगीतकार हैं इस्माइल दरबार।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: भारती।
7: आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत, लीजिए सुनिए अगला गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के युगल स्वरों में, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने, फिल्म है यारा दिलदारा।

और प्यार हो गया। लीजिए सुनिए इस फिल्म से अगला गीत अलका याग्निक की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है नुसरत फतेह अली खान ने।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:35 होने को हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाले सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। सखियों, आप सभी कैसी हैं? हमारी आशा तो यही है कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ और मनमस्त होंगी, और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्यों से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। सखियों, आज हमें आप मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कर दुनिया में कहीं से भी सुन सकती हैं। सखियों, आज डिजिटल तकनीकी से हमारे कई कार्य सरल और आसान हो गए हैं। सखियों, डिजिटल साक्षर होकर हम कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सखियों, डिजिटल साक्षरता का महत्व है, मतलब है मोबाइल कंप्यूटर और इंटरनेट का सही समझदारी और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना। और सखियों, आज के समय में आत्मनिर्भर बनने के लिए डिजिटल साक्षर होना बहुत आवश्यक है। और हमारी कई सखियों को डर भी लगता होगा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो सखियों, डरने की जरूरत नहीं है। सीखने की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें, किसी जानकार से मदद लें, या सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल साक्षरता अभियान का लाभ उठाएं और डिजिटल साक्षर बने। सखियों, डिजिटल साक्षरता हमें सिखाती है मोबाइल और ऐप का उपयोग करना, इंटरनेट पर जानकारी खोजने का सही तरीका, ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट करना, सोशल मीडिया का सही उपयोग और साइबर धोखाधड़ी फ्रॉड से बचाव करना। सखियों, डिजिटल साक्षरता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम डिजिटल साक्षर होकर अपने कई कार्यों को आसान कर सकते हैं, जैसे घर बैठकर ही हम डिजिटल पेमेंट कर बुकिंग कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, शिक्षा और अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो या सरकारी योजना।

योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम सभी ने देखा है कि कोरोना काल के समय किस तरह डिजिटल तकनीक ने ही हमें जोड़कर रखा था। दूर रहकर भी फोन से बात, वीडियो कॉल से हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन वर्क चलता रहा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां मिलती रहीं। और सखियो, आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। हम किसी भी सरकारी संस्थानों में, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां हमें ऑनलाइन पेमेंट ही करना होता है। और सखियो, महतारी वंदन योजना के जो पैसे हमें मिलते हैं तो उसकी जानकारी भी आप स्वयं पता कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा, डिजिटल साक्षर होकर। कब तक सखियो हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, तो सीखें और डिजिटल साक्षर जरूर बने। सखियो, आज डिजिटल युग ने हमें भी डिजिटल साक्षर होना बहुत जरूरी है, ताकि हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े और अपने परिवार और समाज को भी आगे बढ़ाएं और देश के विकास में भागीदार बने। तो सखियो, आप सभी डिजिटल साक्षर बने और आत्मनिर्भर बने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सखियो, आपने कई तरह के आर्ट और कला के बारे में सुना, सीखा और जाना होगा, लेकिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पैरा आर्ट, एक ऐसी अनोखी कला जो धान के पैरों यानी फसल के बचे हुए हिस्सों से बनाई जाती है। यह कला हमारी संस्कृति, मेहनत और प्रकृति से जुड़ाव का खूबसूरती को दर्शाती है। और सखियो, आज हम भी महिला मंडली में ये लेकर आए हैं पैरा आर्ट के कलाकारों को, तो चलिए बातें करते हैं हमारी पैरा आर्ट के कलाकारों से। सखियो, आज हमारे स्टूडियो में पैरा आर्ट से बनी तस्वीरें हैं जो भीमराव अंबेडकर जी की हैं, कान्हा जी की हैं, गौतम बुद्ध जी की हैं, प्रभु यीशु मसीह और मॉडर्न आर्ट की हैं। धान के पैरों से खूबसूरत कला रचकर हमारी विविध संस्कृति को दर्शाने वाली, अलग अलग संस्कृतियों की झलक दिखाने वाली प्रतिभाशाली पैरा आर्ट कलाकार हमारे साथ स्टूडियो में है, श्रीमती उषा बनवा किरण, सविता पटेल और रीमा पटेल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: तो सबसे पहले उषा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पैरा आर्ट की शुरुआत आपने कैसे की, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली?
5: मेरा नाम उषा बनवा किरण है, ग्राम अफरीद से हूँ, जिला जांगी चापा से। मैं पैरा आर्ट जो उसका अनुभव सीखने को उत्सुकता मैं अपने नानी के घर से सीखी हूँ, मतलब वहाँ से जानने को मिला। मैं वहाँ गई थी तो मैं नाना नानी लोग पैरा का काम कर रहे थे, तो मैं वहाँ से देखते हुए उसको सीखी और मतलब उत्सुकता छोटी थी तब से मैं उसको जानने की कोशिश की इससे क्या बनता है। तो लोग बताए थे कि पेंटिंग बनता है, तो कैसे बनता है, क्या बनता है, मतलब देखी तो नहीं थी, बस उतना सुनी थी। उसको आकर मैं घर में खुद से पैरा इकट्ठा की, इससे क्या होता है, कैसे करता है, इसको कैसे करते हैं, मैं तो शुरू में जानती नहीं थी। बाद में फिर मैं उसको ब्लेड से ना छीलना स्टार्ट की, फिर घर वाले भी पूछे क्या करेगी, तो मैं कुछ कुछ पेंटिंग बनाती रहती थी, तो घर वाले सोचे ऐसी कुछ कर रही है। फिर धीरे धीरे उसको मैं बनाना स्टार्ट की, ऐसी कुछ कुछ शादी कार्ड वाडा में, मैं इसको बोर्ड अभी का उपयोग नहीं करती थी, तो मेरे घर वाले देखे कि इसको कैसे बना रही है क्या, लेकिन अच्छा लगा। तो फिर ऐसी बनाते

0: बनाते मैं बनाना सीख गई अपने अनुभव से। फिर भैया लोग मुझे ना बोर्ड अलायद के दिए, तो उस सर से बातचीत हुआ कि वहाँ नानी के गांव में वहीं सिखाते थे, तो उससे संपर्क में आए, तो उससे बातचीत जैसे पता चला तो लोग बोले ठीक है इसका हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे सीखना चाहोगे तो हम लोग समूह में कि कुछ में ट्रेनिंग देंगे ऐसे बोले। फिर हमारे गाँव फ्रीद आए, फिर उसके लिए हम लोग फार्म वार्म डाले तो 20 लोगों का चयन हुआ, तो इसको हम लोग हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायगढ़ से वहाँ से फिर इसको ट्रेनिंग के लिए वहाँ से हम लोग सीखे।
1: मैं सविता बाई पटेल परसापाली की रहने वाली हूँ। मैं और रिया पटेल एक साथ हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रेनिंग लिए पैरा आर्ट का। उसके बाद हम लोग घर में आके कुछ कुछ बनाए, और पहले तो मतलब छोटी थी तब से मेरे को पेंटिंग बहुत पसंद थी, रंगोली बनाना बहुत पसंद थी, और जैसे मैं रंगोली बनाती पेंटिंग करती तो मैं हमेशा फर्स्ट प्राइज जीत के आती ना, तो मेरे को बहुत खुशी होता। तो सहेली साथी बोलते थे कि पैरा आर्ट, तो पैरा आर्ट क्या होता है, पैरे से कैसे चित्र बनाया जाता है, मैं सोचती थी ना। फिर अचानक किसी सहेली ने बोला कि कृषि विज्ञान केंद्र में पैरा आर्ट का ट्रेनिंग दे रहा है, तो मैं सोची कि मैं भी जाऊं। वहां पर गई, मैं ट्रेनिंग ली, वहां के सर लोग अच्छे ढंग से हम लोग को पैरा आर्ट का काम सिखाए, कैसे बनता है, क्या क्या चीज लगता है, सब चीज सिखाए, और सब चीज हम लोग वहां पर सीखे। फिर घर में आके बनाना स्टार्ट किए, अच्छे से बन गया, और बाहर बाहर से भी ऑर्डर आते हैं, समूह में गांव के लोग बोलते हैं, सब चीज हम लोग बना लेते हैं, स्टॉल भी लगाते हैं।
2: मैं रिया पटेल, मैं सविता के साथ सीखी हूँ।
3: हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पैरा आर्ट आप लोग बनाते हैं उनमें किन किन वस्तुओं की, किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, आप बताएं।
2: इसमें कैंची की आवश्यकता होती है, फेविकॉल की होती है, और हम लोग पैरा को खेत से ला के उसको अच्छे से सपाट काट लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका उपयोग करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, फिर उसको बनाते हैं और चिपकाते हैं।
0: पैरा का उपयोग होता है फर्स्ट, फिर हार्डबोर्ड का, फिर कपड़ा का, गोंद का, ब्लेड का, कैंची का, कटर का, पेंसिल का, स्केल का, ये आदि वस्तुएं लगते हैं।
3: हम आपसे जानना चाहेंगे सविता जी कि पैरा आर्ट बनाने में कितना समय लग जाता है?
1: पैरा आर्ट बनाने के लिए पेंटिंग के अनुसार होता है, कोई पेंटिंग छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। तो जैसे छोटा होता है तो 2-3 दिन में बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो 1 हफ्ते लग जाता है। जैसे समय नहीं मिलता है घर में, जैसे 1 दिन में 2-3 घंटा का समय मिल जाता है तो 1 हफ्ते लग जाता है। जैसे बाहर से कोई ऑर्डर करता है कि मेरे को 2-4 दिन के बाद चाहिए, तो हम लोग दिन भर काम करते हैं तो 3-4 दिन में बन जाता है।
3: जो पैरा आर्ट है उसके बनाने की हम पूरी विधि जानना चाहेंगे आपसे।
0: हम लोग पैरा को इकट्ठा करते हैं, हर प्रकार के जो नया पुराना करके, उसमें से जो धान का पोटरी, जो बीज का डंठल होता है उसको निकालते हैं, फिर निकालकर उसको अलग अलग कलर में चुनते हैं नया पुराना, फिर ब्लेड से उसको कटिंग करते हैं, छीलते हैं, छिलाई करने के बाद प्रेस करते हैं, फिर जो ड्राइंग बनाते हैं उसमें चिपकाते हैं, चिपकाने के बाद उसको ट्रेस करके हम लोग रख देते हैं कुछ देर तक, फिर हम हार्डबोर्ड में कपड़ा चिपकाते हैं, हार्डबोर्ड को तैयार करते हैं, उसमें बॉर्डर वॉर्डर करके उतना तक वो चिपक कर सूख जाता है, फिर उसको हम लोग कटिंग करते हैं, फिर कटिंग करने के बाद सीधा हार्डबोर्ड में चिपकाते हैं। जैसा भी आप जो भी बोलो, फेस की चिड़िया का बोलो कि पक्षी का, महापुरुष फेस, मम्मी पापा का, इस तरह से चित्र बनाते हैं
3: जी। मतलब पैरा आर्ट के साथ साथ आप लोग की जो पेंटिंग की कला है बनाने की, वो भी निखरती है।
0: और हम लोग इसमें धान का भी उपयोग करते हैं, धान का ज्वेलरी बनाते हैं, आभूषण। और अभी जो नेचुरल में आता है छत्तीसगढ़ का धरोहर जैसे, तो हम लोग एक केमिकल उमिकल जो चमक धमक का उपयोग नहीं करके अभी हम उसी का उपयोग करते हैं, आभूषण का भी उपयोग, और उसी का राखी बनाकर बेचते हैं, स्टॉल लगाते हैं, तो पैरा और धान दोनों का उपयोग कर लेते हैं हम लोग।
3: जैसे कि हमें नदियाँ चाहिए या फिर पक्षी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कैसे आर्ट तैयार करते हैं?
0: उसके लिए भी ड्राइंग बना के उसके लिए कपड़ा का कलर चेंज करते हैं, जैसे हरा है, नीला है, आसमानी कलर देंगे तो नीला, चिड़िया इधर हरा भरा धान है तो हरा कपड़ा का उपयोग करेंगे, रेड है तो रेड कपड़ा, ऐसे कपड़ा को चेंज करते हैं उस हिसाब से रखते हैं
3: जी। जैसे कि आपकी पेंटिंग है और इतने प्रकार के आप लोगों ने पैरा आर्ट बनाए हैं, तो वो आप कैसे वो लोगों तक पहुंचते हैं, इस बारे में आप बताएं।
0: इसके लिए तो हम लोग जैसे इसको सीखें तब से इसमें एग्जीबिशन के लिए जाते हैं बाहर बाहर, जैसे हम लोग का पंजीयन हो गए हैं, जैसे हम लोग हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायगढ़ से सीखे हैं, तो वहाँ से हम लोग इतना दिन तक ट्रेनिंग किए हैं, तो इसमें वहाँ से हमारे लिए आता है कि हम लोग कहीं स्टॉल लगाना चाहते हैं।

0: कहीं जाना चाहते हैं, जो लोग आगे बढ़, कितने लोग सीख जाते हैं और घर में बैठे रहते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए वहाँ से आता है, तो उसके लिए हम लोग फार्म डालते हैं, और फार्म डालने के बाद वहाँ उसमें चयन होते हैं, तो हमें कहीं भी बाहर भेजा जाता है, तो उस जगह में जाकर हम अपना स्टॉल लगाते हैं, बेचते हैं। अब मैं यहाँ गई हूँ तो जगदलपुर गई हूँ, इधर रायगढ़ गई हूँ, शक्ति गई हूँ, अब ट्रेनिंग भी मैं बिलासपुर रिसदा में सिखाई हूँ, जांजगीर चांपा में सिखाई हूँ और कोंडा गाँव में सिखाई हूँ। इस तरह से हम लोग अपना स्टॉल लगाते हैं, बेचते हैं।
1: और हम लोग को समूह को जो मैडम होते हैं ना, प्यारपी मैडम, वो लोग बोलते हैं कि सविता यहाँ स्टॉल लगाना है, गांव में भी लगता है, सरस मेला लगता है रायगढ़ में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, तो बोलते हैं कि सविता वहाँ सरस मेला हो रहा है, आप लोग जाइए बेचिए, अच्छा मुनाफा कमाइए। तो हम लोग अपना नाम देते हैं, वहाँ पर पंजीयन होता है और हम लोगों को चयनित किया जाता है, फिर स्टॉल लगाते हैं समूह का, वहाँ पर जाते हैं, बेचते हैं, अच्छा मुनाफा हो जाता है। अलग से ऑर्डर भी आते हैं, जो जानते हैं वो लोग कॉल करते हैं कि हम लोगों को ये चित्र चाहिए, तो जैसे जैसे चित्र बताते हैं, कोई नदिया का बोलते हैं, कोई फूल का बोलते हैं, कोई अपने मम्मी पापा का कि मेरे को इसका चित्र चाहिए, तो हूबहू वैसे चित्र बना के देते हैं और वैसे मेहनत करते हैं।
2: बहुत ही मेहनत की जरूरत होती, बहुत पेशेंस की और धैर्य की आवश्यकता होती है इसमें। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस आर्ट के द्वारा आर्थिक आय आप लोग को कैसे प्राप्त होता है?
1: जाके समूह में स्टॉल लगाते हैं तो वहाँ पर तो बहुत बिकता है, सर लोग मैडम लोग कि ये पैरा से बनना है, वेस्ट चीज से, पैरा को तो सब फेंक देते हैं, लेकिन हम लोग उस वेस्ट चीज से कि चित्र बनाए हैं, कोई कोई लोग तो सुने रहे तो ताजुब हो जाते हैं कि पैरा से कैसे बन सकता है, देखते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है, वहाँ पर मान सम्मान भी देते हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा बनाए, इतना अच्छा पेंटिंग बनाए, कितना दिमाग लगा होगा, कितना मेहनत लगा होगा, बोलते हैं और तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है और अच्छा बिक जाता है वहाँ पर, सब आर्थिक आय भी हो जाती है, तो उसमें घर के खर्च चलाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, सब चीज के लिए, मतलब आत्मनिर्भर महिला हो जाते हैं।
3: अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो इसमें पढ़ाई में पैसा लगता है तो मदद हो जाता है इस काम को करती हूँ तो।
2: हम ये भी जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग जब कार्य करती हैं, जब ज्यादा वर्क रहता है तो घर वालों का सहयोग किस प्रकार से आप लोगों को मिलता है?
1: ज्यादा वर्क रहता है तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, घर के लोगों को बोलते हैं, सास है, ससुर है, देवरानी है, देवर है, कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा मदद कीजिए, तो घर के काम में भी मदद करते हैं, ये सब चीज पैरा जो है ना उसको प्रेस करने के लिए, छीलने के लिए, सब चीज के लिए घर वाले भी मदद करते हैं।
0: जैसे हम लोग को घर गृहस्थी का काम होता है, बच्चों का सबको देखना पड़ता है, तो हम लोग इसके लिए अलग से टाइम भी निकालते हैं और साथ ही साथ घर का भी सपोर्ट मिलता है, जैसे खाना बनाने में, वो करने में, तो हम लोग को अलग से टाइम दिया जाता है और काम के लिए हमें फुल समय देते हैं, सपोर्ट करते हैं।
2: जी, बहुत जरूरी है। और कितनी खुशी मिलती है कि जब सब मिलजुल कर काम करते हैं, और आज तो ऐसा हो गया कि महिलाओं को बिल्कुल हर परिवार सपोर्ट करता है, और हमने देखा कला जो आप लोगों ने बनाई है बहुत ही सुंदर कला है और वाकई में सराहनीय है आप लोगों का कार्य। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हमारी कोई सखियां जो हमें सुन रही हैं और वो पैरा आर्ट सीखना चाहती हैं तो उन्हें क्या करना होगा, कैसे उस आर्ट को सीख सकती हैं?
0: जैसे उनको सीखना है तो हमारे हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायगढ़ से या महिला समूह से, जैसे आप ये बोली हैं महिला दीदी कि कृषि विज्ञान, इस तरह से केंद्र से संपर्क करके वो सीख सकते हैं। और प्राइवेट जैसे सीखते हैं तो हम लोग सीखे हुए सीनियर जैसे रहते हैं, उनके संपर्क के माध्यम से हम लोग सिखा सकते हैं। अभी सीखना चाहते तो मैं इसको सिखाती हूँ, मेरा मतलब ग्राम अफरी से है और अभी वर्तमान में मैं घनवा में रहती हूँ तो वहाँ मैं सिखाती हूँ।
1: गाँव में भी लोग प्राइवेट सीखना चाहते हैं तो 8-10 जने हो जाते हैं और वहाँ पर सिखाते हैं, और ये नाम भी देना पड़ता है, जैसे सरकार तरफ से सीखने को होता है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है तो उसमें चयनित होता है तो सीखते हैं, और प्राइवेट भी सीख सकते हैं।
2: आप लोग यहाँ पे आए हमारे आकाशवाणी केंद्र अपना समय निकालकर, और आपने अपनी प्रतिभा के बारे में और अपने कार्यों के बारे में हमें बताया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप चलते चलते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं मैम कि अभी के जो महिला हैं, पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, कि इसमें वो आए और पैरा के माध्यम से, पैरा आर्ट के माध्यम से हो या सिलाई कर, इसके माध्यम से अपना आर्थिक सहयोग ले सकते हैं, अपने पैरों में खड़ा हो सकते हैं, सीख सकते हैं, किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ता, अपनी रोजगार खुद पैदा कर सकते, दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहे।
3: जी, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपना खुद आत्मनिर्भर बने, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे।
2: सविता जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारी सखियों को?
1: मैं

0: को ये संदेश देना चाहती हूँ, पैरा आर्ट का जो प्रशिक्षण लेके घर में पैरा का चित्र बना के दूसरों को बेच सकते हैं, आर्डर में बेच सकते हैं, समूह में जो स्टॉल लगता है उसमें बेच सकते हैं, और अपनी आमदनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, घर की खर्चे के लिए वो आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकती है। तो सभी महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ।
1: रिया जी, उषा जी और सविता जी, आपने अपने कार्य से पैरा आर्ट के बारे में हमें ढेर सारी जानकारी दी है और महिलाओं का बिल्कुल उत्साहवर्धन किया है कि कैसे आप समय निकालकर इस कार्य को कर सकती हैं और कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखियो, अभी आप सुन रहे थे क्रम महिला मंडली में जांजगीर चांपा की पैरा आर्ट कलाकार श्रीमती उषा बनवा किरण, सविता पटेल और रीमा पटेल को।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सखियो, अब आइए आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है लुटेरा फिल्म से। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत है अमित त्रिवेदी का, स्वर है मोनाली ठाकुर का।

0: सखियो, गर्मी के मौसम में गांव हो या शहर, हर घर में आम से कुछ ना कुछ खास जरूर बनाया जाता है। और सखियो, आज आम का अचार और आम का पन्ना बनाने की रेसिपी लेकर आई हैं हमारी सखी श्रीमती राधा शाश्वत तिवारी जी।
1: तिवारी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक गृहिणी। सखियों, जैसे कि आप सभी जानती हैं कि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों की शुरुआत से ही शुरू हो जाता है मौसम हमारे सबके प्यारे फल, फेवरेट फल आम का। सखियों, आम भारत का लोकप्रिय फल है जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है। ये गर्मी के मौसम में मिलने वाला रसीला और मीठा फल है। आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और पोटेशियम पाया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसीलिए आम से बनी हुई कई सारी चीजें हम गर्मियों में बनाते हैं जिसे हमारे घर के बच्चे, बूढ़े सभी बड़े चाव से खाते हैं। आम से बनी हुई चीजें जैसे कि आम कैंडी, आम का अचार, आम का पन्ना, पके हुए आम हो तो उसका आम रस, आइसक्रीम आदि विशिष्ट चीजें बनाई जाती हैं जिसे सभी उम्र के लोग बड़े चाव से खाते हैं। सखियों, आज मैं यहाँ आपके साथ कच्चे आम मतलब कैरी, जिसकी सुगंध अभी हवाओं में फैली हुई है, जहाँ देखो वहाँ जिन जिन के बाग में आम की कैरियां लगी हुई है तो एक मंद मंद महक अपने साथ हवा लेके चल रही है आम की, तो उसी कच्ची कैरी का अचार एवं कच्ची कैरी का पन्ना बनाने की विधि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसे मैंने भी अभी हाल फिलहाल में ही बनाया है। मेरी एक सहेली द्वारा मुझे कुछ कच्चे आम यानी कि आम की कैरी प्राप्त हुई थी जिनका मैंने आम का अचार बनाया है। देसी आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे आमों को धोकर काटकर कम से कम 5-6 घंटे में सुखा लेना चाहिए। इसमें हल्दी और नमक लगाकर रात भर रखें। बस इससे क्या है, जो उसका पानी रहता है वो निकल जाता है। और फिर सरसों के तेल में सौंफ, मेथी, कलौंजी, राई, हींग और लाल मिर्च का दरदरा मसाला मिलाकर आम के साथ मिक्स करें। इसे कांच के जार में भरकर 3-4 दिन धूप दिखाएं और हमारा स्वादिष्ट अचार तैयार है, जो तुरंत तो नहीं खा सकते, हाँ मतलब 5-6 दिन बाद जब आम अपनी थोड़ी खटास इसमें छोड़ देते हैं उसके बाद हम इसको खाना शुरू कर सकते हैं और इसको 1-2 साल स्टोर करके भी रख सकते हैं। आम के अचार के अलावा से दूसरी चीज जो मैं अधिकतर गर्मियों में बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए जब वो धूप में निकलते हैं, तो वो चीज है आम का पन्ना। आम पन्ना बनाने के लिए अगर हम अंदाजन आधा किलो कच्चे आम को धोकर, छील कर और काट कर 1-2 कप पानी में कुकर में 2-3 सीटी अगर लगा ले और उनको उबाल ले, उबालने के बाद ठंडा होने पर उस आम का गूदा यानी जो पल्प हम कहते हैं उसको निकाल लें और उसे पुदीना, काला नमक, भूरा जीरा पाउडर, काली मिर्च, चीनी या गुड़ आपकी स्वाद के अनुसार, इन सबको मिला के एक साथ मिक्सी में पीस कर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को जब भी हमें जरूरत हो 1 गिलास पानी में इस पेस्ट को अपने स्वाद अनुसार और कुछ बर्फ के टुकड़े डालकर ठंडा ठंडा हम परोसे तो ये भी गर्मी में काफी हद तक शीतलता हमें प्रदान करेगा। सखियों, इसी के साथ मैं अपना आज आम की 2 रेसिपी का ये विवरण समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।
0: सखियों, अभी आप सुन रहे थे आम के अचार और पन्ना बनाने की रेसिपी, बता रही थी राधा शाश्वत तिवारी जी। सखियों, अब आइए आपको ले चलते हैं संगीत की मधुर बेला में और सुनवाते हैं मृत्युदंड फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है आनंद मिलिंद का और स्वर है उदित नारायण और अलका याग्निक के।

अभी आपने सुना महिला सभा, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। शाम के 6:05 हुए हैं, पेश है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में आइए, आपको हमारे आज और कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सबसे पहले लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष आकर्षण। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:20 पर सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, जिसका शेष भाग आप सुनेंगे शाम 7:00। आज शाम 7:00 आप सुनेंगे ग्राम सभा, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा माटी जांच पर ध्यान देवो। आज शाम 7:30 पर सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा सॉयल हेल्थ कार्ड, विषय ध्यान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आर के एस तिवारी, प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर, जिनसे बात करेंगे बैसाखू भैया। साथ ही सुनिएगा मौसम मंडी और सामायिक सुझाव।

आज रात 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम चिट्ठी मिली का। प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और अंतरा चक्रवर्ती। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे आज शाम 8:20 पर। तो ये थे हमारे आज के शेष आकर्षण।

आइए अब आपको हमारे कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। खेती की बात सुनिएगा कल सुबह 6:30 पर, विषय होगा संतुलित।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना खेती की बात सुनिएगा। कल सुबह 6:30 पर विषय होगा संतुलित खेती, स्वास्थ्य, मिट्टी, अधिक उत्पादन। वाचन स्वर होगा अभिनव गौराहा का। 6:35 का समय होगा रामचरित मानस गान का। नवविहान फ्लैगशिप डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 6:45 पर। कल सुबह 7:05 पर सुनिएगा आज सुबह गांधी चर्चा आप सुनेंगे कल सुबह 7:20 पर, जिसमें आप सुनेंगे धर्म की इज्जत। कल 7:30 का समय होगा कार्यक्रम यादों के झरोखे से का। कल 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे इनसे मिलिए गूंजे स्वर गांव के आप सुनेंगे कल 10:00। आपकी पसंद का समय होगा कल 10:30 का और प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी आप सुनेंगे कल 11:00।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुनेंगे कल 5 बजे। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। चितपट संगीत सुनिएगा कल शाम 5:05 पर। युवा जगत का समय होगा कल शाम 5:35 का, जिसमें आप सुनेंगे कौशल विकास और उद्यता। ईमेल करें गीत सुनने का समय होगा कल शाम 6:20 का और शाम 7 बजे का। ग्राम सभा सुनिएगा कल शाम 7:20 पर, जिसमें बेरा के गोट का विषय होगा वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश लाभकारी होते। कल शाम 7:30 पर प्रस्तुत करेंगे किसान वाणी, जिसमें डॉक्टर आर के एस तिवारी प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर जानकारी देंगे खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व एवं सावधानियां। संचालक होंगे पंचू भैया। सुगम संगीत सुनिएगा कल रात 8 बजे और रजनीगंधा का समय होगा रात 8:15 का। तो ये थे हमारे आज के कार्यक्रम। अभी आपने सुना कार्यक्रम विवरण। FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है।
1: छत्तीसगढ़ में प्रादेशिक समाचार। जय जोहार। आप सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। देश आज ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ मनावत थे। प्रधानमंत्री है ये मौका मां सशस्त्र बल के शौर्य ला करिन नमन। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रमिक मन पर आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के करीन शुरुआत। और प्रदेश के सब्बो ग्राम पंचायत में आज चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस के आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार ले। देश आज ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ मनावत है। पाछू बछर 7 मई के भारत धारले ऑपरेशन सिंदूर करेगे रिहिस, जेमा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मा आतंकवादी मन के 9 ठन ठिकाना मा हवाई हमला करेगे रिहिस, जेमा कमती ले कमती 100 आतंकी मन मारे गे रिहिन। ये कार्रवाई पाछू बछर 22 अप्रैल के पहलगाम मा पर्यटक मन ऊपर हुए पाकिस्तान के आतंकी हमला के भारत धारले करारा जवाब रिहिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ में सशस्त्र बल के शौर्य ला नमन करिन है। उमन है आतंकवाद अवेला बढ़ावा देवैया तंत्र ला नष्ट करे के राष्ट्र के प्रतिबद्धता ला दोहराइन। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स मा श्री मोदी है किहिन की भारतीय सशस्त्र बल है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प के प्रदर्शन करिन। उन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन की ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, फिर नवा भारत के अटूट इच्छा शक्ति, निर्भीक संकल्प और निर्णायक शक्ति के प्रतीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल है राष्ट्रगीत वंदे मातरमला राष्ट्रगान जैसनेच वैधानिक संरक्षण दे जाए बर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम मा संशोधन प्रस्ताव ला मंजूरी दे दे है। एमा संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अपमान करे जाए मा 3 बछर के सजा, जुर्माना या दोनों के प्रावधान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है ये फैसला के स्वागत करत कहिन कि ये देश के सांस्कृतिक चेतना, स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली विरासत और राष्ट्रभक्ति के भावना ला

0: सम्मान देने वाला कदम बताए है। ओमन किहिन की वंदे मातरम भारत की आत्मा, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरणा और करोड़ों देशवासी मन के राष्ट्रभक्ति के प्रतीक रहे है। मुख्यमंत्री हा प्रदेशवासी मनला राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय प्रतीक मन के सम्मान और गरिमाला बनाए रखे के आह्वान करीन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हा नवा श्रम संहिता के तहत 40 बच्छर और ओखर ले ज्यादा उम्र के श्रमिक मन पर आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के शुरुआत करें। नई दिल्ली के कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उद्घाटन करत डॉक्टर मांडविया हा कहिन कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अगुवाई में पाछू 12 बच्छर ले देश के कार्यबल और युवा शक्ति पर सम्मान में बढ़ोतरी हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हा प्रसव के पहली और बाद मा और नवजात शिशु एकीकृत देखभाल पर जननी के शुरुआत करे है। जननी हा एक ठन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिला माई लॉगिन मन के गर्भधारण के पहली और बाद तक उनकर स्वास्थ्य रिकॉर्ड के निगरानी और रख रखाव पर बनाए गए है। बताया गया है कि अभी तक 1,34,00,000 लाभार्थी मन हा ये पोर्टल मा पंजीकरण कराए हैं। राज्य सरकार हा माई लॉगिन के नाव में होवैया भूमि रजिस्ट्रेशन पंजीयन शुल्क में 50% के छूट दे जाए के फैसला करे है। एकर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दे गए है। ये प्रावधान तत्काल प्रभाव ले लागू माने जाही। एकर अलावा सरकार हा सेवारत सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और उनखर विधवा मन के कल्याण ला देखत 25,00,000 तक के संपत्ति के रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क में 25% के छूट दे जाए के फैसला ले है। प्रदेश के सब्बो ग्राम पंचायत में आज चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस के आयोजन करेगी। रोजगार दिवस में ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम के समीक्षा के संग रोजगार के नवा अवसर के कार्य योजना बनाएगी। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित मामला के प्राथमिकता के संग निपटारा करेगी। एकर अलावा जल संरक्षण पर मोर गांव मोर पानी मोर तरिया अभियान के तहत नवा तरिया आय के जरिया थीम में विशेष चर्चा होइस। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। देशभर संग्रह छत्तीसगढ़ में अवैया 9 मई की राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन करे जाही। ये दौरान न्यायालय में लंबित मामला के आपसी सहमति ले निपटारा करे जाही। उन्हें 21 ले 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के लंबित मामला मन के घलो सुनवाई होही। पक्षकार मन ला अपन लंबित मामला ला विशेष लोक अदालत में शामिल करे बर जानकारी सर्वोच्च न्यायालय के वेबसाइट में 31 मई तक गूगल फॉर्म में दे बर पड़ी। ज्यादा जानकारी पर बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ले संपर्क करे जा सकत है। सरगुजा जिला के पहाड़ी कोरबा आबादी में पेयजल संकट के स्थायी समाधान पर 113 हैंडपंप और बोरवेल लगाए जाहे। जिला के कलेक्टर अजीत बसंता, जनपद पंचायत के CEO संग्रह, संबंधित विभाग मन ले 1 महीना के भीतर ये कामला पूरा करे बर कहिन है। कलेक्टर हा बताए कि लुंड्रा में 34, बतौली में 6, लखनपुर में 22, अंबिकापुर में 11, सीतापुर में 16, मैनपाट में 20 और उदयपुर में 4 हैंडपंप और बोरवेल के खनन DMF के मदले करे जाही। महासमुंद पुलिस 1 करोड़ रुपया ले ज्यादा के करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद करे है। ये मामला में 2 जन अंतर्राज्यीय तस्कर मनला गिरफ्तार करे गए है। दूरो आरोपी मन के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई करे जावत थे। मुखबिर ले मिले सूचना के आधार में आरोपी मन हा एक ठन मालवाहक गाड़ी में गांजा लेके ओडिशा ले महाराष्ट्र कोती जावत रहिन। यही दौरान पुलिस हा सिंघोड़ा तीर घेराबंदी करके गाड़ी के तलाशी लीस, तभे ये मामला के खुलासा होइस। अब पेश है मौसम के हाल। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश में कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के या गरज चमक के संग

0: छींटा पड़े के संभावना हे। उन्हें एक दू जगह में अंधड़ चले के और आकाशीय बिजली गिरे के चेतावनी घलो दे गे हे। मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा के एक ठन चक्रीय चक्रवाती घेरा ओडिशा और ओखर ले लगे छत्तीसगढ़ के ऊपर बने हैं। उन्हें एक ठन द्रोणिका दक्षिण मध्य प्रदेश ले छत्तीसगढ़ होवत झारखंड तक बाढ़े हे। एकर प्रभाव ले प्रदेश के मौसम में बदलाव देखे जाते। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अवैया 10 और 13 मई के आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेले जाही। आईपीएल के तैयारी पर मुख्य सचिव विकास सिल्हा काली मंत्रालय में उच्च अधिकारी मन संग समीक्षा बैठका करीन। बैठका में उमन आयोजन ले जुड़े व्यवस्था पर सबो झनला चौकस रहे के निर्देश दिन। मुख्य सचिव हा कि इनकी स्टेडियम में अवैया दर्शक मन के सुरक्षा और सुघर यातायात प्रशासन के पहली प्राथमिकता हवै। अब थोरकुन समाचार सार मा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद डहार ले कक्षा 10वीं के दूसर बोर्ड परीक्षा 15 मई ले आयोजित करे जाही। परीक्षा पर प्रवेश पत्र जारी कर दे गए हे। बीजापुर जिला के मारुड़बाका गांव में पुलिस डहार ले सिविक एक्शन कार्यक्रम और चलित थाना के आयोजन करेगे, जहां पुलिस अधिकारी मन हा ग्रामीण मन ले उनकर समस्या सुनिन और युवा मनला खेल सामग्री और ड्रेस के संगे संग ग्रामीण मनला उनकर उपयोग के सामान बांटिन। पेंड्रा के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल हा दूझन माई लोगिन संग्रह 3 जन लोगन ऊपर जानलेवा हमला करे के मामला में आरोपी ला 10 साल के सश्रम कारावास के सजा सुनाई है। रायपुर के कुम्हारी पुलिस हा अवैध हथियार के तस्करी करैया युवक ला गिरफ्तार करे है। पुलिस हा आरोपी तिले हथियार और नकदी बरामद करे है और ओखर खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर ले है। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर डहार ले 12 मई के जोरा के लाइवलीहुड कॉलेज में जिला स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। देश आज ऑपरेशन सिंदूर के पहली वर्षगांठ मनावत है। प्रधानमंत्री हा ये मौका में सशस्त्र बल के शौर्य ला करिन नमन। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हा श्रमिक मन पर आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच के करें शुरुआत। और प्रदेश के सब ग्राम पंचायत में आज चावल महोत्सव रोजगार दिवस और आवास दिवस के आयोजन करेगी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने में लीजिए सुनिए पहला गीत। फिल्म है मौसम। आवाजें भूपेंद्र और लता मंगेशकर की हैं। शब्द रचना गुलजार के हैं और संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। इस गीत को सुनना चाहा है ग्राम बेवारा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, निरोत्तम वर्मा, तुषार और वंशिका वर्मा, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम सौरव रावत, ग्राम गतौर से बोधीराम आर्यन, शंकर अमन सूरज, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान, विजय संतोष, जितेंद्र श्रीवासचंद्र और प्रकाश लहरे, लोहारा बलौच छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा आरती और प्रभा देवी तामोरिया, मारहरा दरवाजा एटा से नवी हसन अब्बासी, रसीद वारिस नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, यशफ और अनमन अब्बासी, पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा, पीपरा पारा पलचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानु प्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, रानीगांव नगरी जिला धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू, करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, प्रजापति, इप्सिता शर्मा और हरिपाल कौर, तेलीपारा बिलासपुर से

श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयु श्रीवास, विवेक बेबी आयुषी श्रीवास, लोरमी ग्राम चेचरी से कमलकांत मारावी, प्रमिला मारावी, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मारावी, कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी चौहान, अंकिता और अनिकेत चौहान, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, अनिल, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन, जेल रोड बक्सर से असलम आजाद, मुस्ताफ तन्हा, शमशूल हक, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन बेगम, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन और गौसिया फातिमा, ग्राम लसूड़िया से तहसील नरसिंहगढ़, जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुनील, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, कुभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, पूना वाले अजय सोनावाले और करिश्मा अविका। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, उत्कर्ष चौहान, बोरीखुर्द से श्री सुधाकर देवमुखी, देशमुखी, प्रथमेश देशमुखी और चिवास्वनी, रेडियो क्लब बिहार से वसीम अकरम, शबनम, गुड़िया खातून, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है ग्राम कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से सैयद मशरूम शाइना, परवीन, नाजिया इब्राहिम, रया रोड राजकोट से राजेश, कृष्णा, प्रथम, स्वाति और ख्याति कुमारी, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग, पूना राम देवांगन, कृषि देवांगन, इन्होंने ये ईमेल भेजा है पलारी से, लुतरिया खमरिया से अकरम, अमीन, अर्श, अतिका, दे दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोकेलाल वर्मा, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्राजेश और प्रीतेश संघई, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक, सीमा साहू, कोपरगांव से सुरेश और वर्षा, नेवसा से अमोल लोखंडे और शारदा लोखंडे, नैला बटसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद तिवारी, अमन कुमार, उमाबाई तिवारी, मीनाक्षी, अंजुला तिवारी और विष्णु प्रसाद, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार, ध्रुव, श्रीमती संतोषी ध्रुव, निम्मी पम्मी, सिया और हर्षिता, निशांत ध्रुव, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा, नवाज हसन, नवाज बाबू अहमद और नवाज बेबी चाहत, बड़बुआ पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, कच्छ गुजरात से गंगा, प्रीति, जूली और गीता महिमा, शादुलसहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मस्तानपुर पुणे जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना और चेतन भगत, ग्राम कोयलारी कवर्धा से कलेश चंद्र कुमार, मुकुंद, पूर्णिमा और साहिल चंद्रकर, टैगोर गार्डन न्यू दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना ताई और प्रणय, पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन साह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्वनी, मंगला बहन और राजेंद्र जी शाह, बिहार स्टैंड डुमराव से अस्मा अंसारी, आमना अंसारी, वसीमुल्ला अंसारी, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई, गुड़िया, यामिनी और उमा तिवारी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, छिपा, कपिला और पूजा परिहार, पलारी से वीरेंद्र साहू, सोनी, आशीष और कपिल साहू। तो आइए सुनते हैं इन सबके द्वारा पसंद किया गया ये गीत।

ईमेल करें, गीत सुनने में लीजिए सुनिए। अगला गीत फिल्म है धनवान, आवाज़ें सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की हैं, बोल लिखे हैं साहिर ने और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का। इस गीत के लिए हमें ईमेल किया है भूचो कैचिया बटिंडा से मनजीत कौर, करणवीर करण, एकमन दमन और अभिजोत, तीसगढ़ मनकी से नारायण खांडे, रजनी तुषार खांडे और समीर खांडे, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश, छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति राधे गुप्ता, दीपक और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खांडे और विनोद खडसे, बैठना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, निधि, निखिल, संजय, अंशु, रमीजा और रजमत वर्मा, गांधी चौक बड़मेरा राज से बलेश्वर पवार, डैनी और मनीष पवार। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरुनूर सिंह और शुभदीप सिंह, शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल, कोटा रोड महाराष्ट्र से मास्टर बिट्ठल सुरेश, सुषमा परिधि और मायरा, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा और अनामिका दामोदर, दुल्हा पर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, बलवीर सिंह, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल और जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका, डबकी रोड अकोला से सुशील देवी मंदूरकर, सदानंद कुमार गौरव मंदूरकर, मदनपुर

श्रवण कुमार योगेश और राहुल साहू, डबावली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरीज वसीम, नदीम अकरम, शमीम और ममता रानी, जमशेदपुर से अपूर्वा सिंह, अनुप कुमारी, राकेश कुमारी, पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सैजल श्लोक अग्रवाल, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस खान, रेहान, अनारकली जगराओं से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, भाटापारा से विष्णु साहू, पथरिया भैरवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वानिया सिंगरौल, नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश जाघव, अनीता, आरती, पूजा, सोनल और बेबी सिया, सरगुजा मेन पार्ट से रुबीना थापा, रेशमा, सोनम फातिमा और आविदा आसमा थापा, महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल ध्रुव, किरण, दिव्यांश और खेमू ध्रुव, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेश, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, मिंटू, लक्ष मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी से पीयूष सिक्का, कुनिका और डुगू सिक्का, रोहासी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू, नंदनी मनीष, मयंक, जानकी साहू, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, दतरिंगी भाटापारा से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, महाराष्ट्र से हेमंत कुमार, श्रीमती प्रिया, मास्टर ओमी कुमार, समीक्षा, तिवर्ता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जोगेंद्र, गजेंद्र, जयंती, मनीषा, सुरेंद्र, मोहन सिंह मरकाम, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम और चंद्रपाल मरावी, सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांशी वर्मा, बुलढाणा से नारायण हांगे, कमल, दिव्या और जय हांगे, राजापुर जिला सूरजपुर से माणिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता, घनश्याम राम, हरी शंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति और कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम, राजवाड़े, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बविता, सुभाष और डब्बू बब्बू।

0: अभी आप सुन रहे थे ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे,
1: प्रसारित किए जाएंगे।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए,

0: मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का आज किया शुभारंभ। राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पंजीयन शुल्क में 50% की छूट देने का निर्णय लिया। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ताड़मेटला नक्सली हमले में राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब समाचार विस्तार से। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमले किए गए थे और इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। यह कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि नए भारत की अटूट इच्छा शक्ति, निर्भीक संकल्प और निर्णायक शक्ति का प्रतीक है।
4: पहलगाम में हमारी माता बहनों की मांगे जिन्होंने लूटा था, उसका बदला हमारे देश ने लिया। ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हुए ऐसे सभी जवानों के साहस को भी नमन करते हैं। और आज का ये भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है, जो किसी को छेड़ता नहीं है, छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं और दुश्मन को घर में घुसकर मारता है।
3: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
5: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
3: इधर रायपुर के रामाभाठा स्थित ESI अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में बीमित व्यक्तियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के उप संचालक धीरेन्द्र पटनायक ने बताया कि यह कार्यक्रम श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6: कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से जो अपने लाभार्थी हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक पहल शुरू की गई है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के रावा भाटा हॉस्पिटल में भी इसका अनावरण हुआ। इस पहल का इनॉग्रेशन के बाद करीब 200 बीमित व्यक्तियों का, इन शॉर्ट पर्सन का जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है, उनका पूरा फुल बॉडी चेकअप का टेस्ट वहाँ अस्पताल में करवाया गया। साल भर हमारे जो ESIC के जितने भी अस्पताल हैं, प्रदेश में 4 अस्पताल हैं, रायपुर, रायगढ़, कोरबा और भिलाई, जहां पे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
3: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने पर 3 साल की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय

का स्वागत करते हुए इसे देश की सांस्कृतिक चेतना, स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत और राष्ट्रभक्ति की भावना को सम्मान देने वाला कदम बताया है। राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पंजीयन शुल्क में 50% की छूट देने का निर्णय लिया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। ये प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। इसके अलावा सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 25 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट देने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ताड़मेटला नक्सली हमले में राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में ताड़मेटला में हुए नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद कुछ ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों द्वारा ग्रामीणों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाने पर जिला कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आज चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस का आयोजन किया गया। रोजगार दिवस पर ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही रोजगार के नए अवसरों पर कार्ययोजना बनाई गई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित मामलों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया गया। इसके अलावा जल संरक्षण के लिए मोर गांव मोर पानी मोर तरिया अभियान के तहत नवतरिया आय के जरिया थीम पर विशेष चर्चा हुई। सरगुजा जिले के सुदूर और पहाड़ी कोरवा बसाहटों में पेयजल संकट के स्थायी समाधान के लिए 113 हैंडपंप और बोरवेल की खुदाई की जाएगी। जिले के कलेक्टर अजीत वसंत ने जनपद पंचायत के सीईओ सहित संबंधित विभागों से 1 महीने के भीतर यह कार्य पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में सरगुजा जिले की पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। देशभर सहित छत्तीसगढ़ में आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान न्यायालय में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। वहीं 21 से 23 अगस्त के बीच सर्वोच्च न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत के माध्यम से भी लंबित मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पक्षकारों को अपने लंबित मामलों को विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए जानकारी सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर 31 मई तक गूगल फॉर्म में देना होगा। अधिक जानकारी के लिए बार रूम के वन स्टॉप सेंटर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर से संपर्क किया जा सकता है। बीजापुर जिले के मारूड़ बाका गांव में पुलिस द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम और चलित थाना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को खेल सामग्री और ड्रेस वितरित किए गए, साथ ही ग्रामीणों को उनकी दैनिक उपयोग के सामान बांटे गए। महासमुंद पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से अधिक कीमत का करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है। इस मामले में सिंघोड़ा के पास 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी एक मालवाहक वाहन में गांजे की खेप ओडिशा से महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आगामी 10 और 13 मई को आईपीएल T20 क्रिकेट मैच खेला जाएगा। आईपीएल की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव विकास शील ने कल मंत्रालय में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गौरतलब है कि 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच तथा 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच खेला जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रसव के पहले और बाद तथा नवजात शिशु एकीकृत देखभाल के लिए जननी पहल का शुभारंभ किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। पेंड्रा के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पिछले वर्ष 29 सितम्बर को धनौली गांव में इस घटना को अंजाम दिया था। प्रदेश में किसानों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्रों और सिंचाई उपकरणों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। किसान
दौरान चेम्स पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। रायपुर की कुम्हारी पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार और नकदी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के कुदरी बैराज में डूबे कक्षा 11वीं के छात्र का

शव बरामद कर लिया गया है। भिलाई स्थित आदर्श शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 11 मई को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 12 मई को जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का आज किया शुभारंभ। राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पंजीयन शुल्क में 50% की छूट का निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ताड़मेटला नक्सली हमले में राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। ईमेल करें गीत सुने में, लीजिए सुनिए हम आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म है दयावान, आवाजें अनुराधा पोडवाल और पंकज उदास की है, बोल लिखे हैं अजीज ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल योगेश, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्वनी विपुल कामड़े, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली, धनंजय सरोज चौक अमरावती से नसीम बेगम और कमरुल्ला। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है महाराष्ट्र नगर यवतमाल से सरला मनवर, विशाल, चेतना, रोशनी और बेबी प्रियांशी, मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिता पलक, लुबाना और यश मंसूरी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गजानन, पूनम गजानन, विशाल, प्रिया, दिशानी और अमित आहूजा, अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, शुभम, पवन, संजीव, जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लविश मुनेश, देवी प्रजापति, बागामुड़ा कोमाखाना छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, अशोक देवी, राघव कुमार, मेघा और भानु, खमरिया से सविता खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, संबलपुर कांकेर से फगुराम, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, बोलातारा से मोहनलाल प्रजापत, उषा बाला, अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत, राहुल और गुरशब्द राहुल, बरकाकाना से अफजल ताज, साहिन सुल्ताना, तस्नीम, निप्पी सहानी और मोहम्मद अफजल मलिक, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सुमन, सना और डॉक्टर आबिदा, पंजाब से भूषण खैर और विष्णु खैर, यवतमाल से पंजाब रामटेक, यशोधरा और श्राव्या रामटेक, पंजाब से ही हरजिंदर छिंद्रा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, अम्बागढ़ चौक से रिजवान खान, आयशा सबीहा, नसर रेहान, मेन रोड तिलहरा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा और सुजाता पोहरकार, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवान, बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता प्रजापति, राजस्थान

से राजेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पिता चौहान, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक और श्रीमती रोशनी प्रांजल राय, नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल राधिका, तन्मय और बेबी अनिष्का, हसदा से कमलेश साहू, जितेंद्र पायल साहू, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम चौराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कमरी, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, भानवेड़ा से भरत राम, हेमंत, उमंग, मोक्ष और जयंती, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह, चिरमिरी कुर्सिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, राम नारायण, दिनेश कालिंद्री लहरे, बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, मयंक, विमला, आभणी, लोहेंद्र, होलेंद्र, आचार्य, रोनी और प्रमोद दामणी, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डब्बार, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा से सोहन जोशी और पायल जोशी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम भगत, श्वेता, किसु, तासु अर्णव, आनंद सत्यम, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेहराज जहां। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है महाराज से विजय सुरलेकर, रतनमाला और आरती, बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा, कमलेश्वर सोमार साया, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन और माही सेन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहाना, अरजान और अबन अब्बासी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, योगिता, रजक साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास।

0: सेहत की बात जो है ये कार्यक्रम आकाशवाणी बिलासपुर से हर हफ्ते रविवार को प्रसारित होता है। तो आप इन सभी कार्यक्रमों से जुड़े, हमारी सेहत ही हमारी सबसे बड़ी नेमत है,
1: बिल्कुल,
0: तो इसे संभाले रखना है। तो ये कार्यक्रम सुने, कुछ आपके ऊपर लागू हो रहा है तो जरूर उसका फायदा उठाएं। पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद देते हैं। और ये अगला पत्र हमारे पास आया है नांदघाट कातल बोर्ड से, भाग सिंह, भाग्यश्री, टिकेश्वर, ऋतु राजपूत का। इन्होंने 30 तारीख को प्रसारित कार्यक्रम हेलो किसान वाणी सुना और बहुत अच्छा लगा, जिस कार्यक्रम में हमने पुनः एक डॉक्टर से ही बात की थी और अनियमित महावारी के संदर्भ में जो बातचीत हुई थी वो इन्हें बड़ी उपयोगी लगी। और आगे लिखते हैं, 1 मई स्थापना दिवस के संदर्भ में जो विशेष कार्यक्रम था ये भी बहुत अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता सुनील चिपड़े, संज्ञा टंडन और पूरी टीम को बधाई दे रहे हैं और लिखते हैं कि चिट्ठी मिली कार्यक्रम के लिए भी ये बधाइयां भेज रहे हैं सुप्रिया और मोनाली ठाकरे को।
1: जी।
0: तो सभी लोगों को बधाई देते हुए इन्होंने ये पत्र भेजा है, पत्र के लिए इनका भी धन्यवाद। और अगला ईमेल कहाँ से आया है?
1: लोरमी छछड़ी से हमारे साथी हैं कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी का। ये लिखते हैं कि 3 मई के ईमेल करें कि सुने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरती जी ने, अधिक से अधिक पत्रों को पढ़ा और अच्छे अच्छे गीत सुनाए, लाजवाब प्रस्तुति के लिए आरती को बधाई दे रहे हैं और पूरे आकाशवाणी परिवार को भी ये प्रशंसा भेज रहे हैं, धन्यवाद भेज रहे हैं।
0: क्या बात है, देखिए एक ही कार्यक्रम है लेकिन उसको कितनी तल्लीनता से और ध्यान से इन्होंने सुना है और वाकई श्रोता खुश हो जाते हैं जब बहुत सारे नाम पढ़े जाते हैं और बड़ी मेहनत से जो ईमेल भेजे जाते हैं वो शामिल हो जाते हैं। हम मानते हैं कि बहुत मेहनत आप करते हैं हमारे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है अंतरा कि कोई पत्र हम नहीं ले पाते क्योंकि 200 से ज्यादा ईमेल उस कार्यक्रम में आते हैं, तो मलाल भी कई बार श्रोताओं का रहता है, लेकिन इस बार तो तारीफ है तो हम खुशी हो जाए। और ये चिनमरी कुरसिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश कालिंदी का पत्र है अंतरा। और ये लिखते हैं कि 3 तारीख 2026 के कानून की बात कार्यक्रम के तहत इन्होंने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी सुनी और इन्हें बड़ी जागरूकता से भरी हुई लगी और इस संदर्भ में हम सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, ऐसा लिखते हैं, चाहे परिवार हो, अभिभावक हो, समाज हो, सभी को। तो ये जिम्मेदारी वाकई में जरूरी है कि हमारे बच्चे भटके नहीं और किसी तरीके से गलत संगत में पड़कर गलत कार्यों की ओर न चले जाएं। और आगे ये लिखते हैं कि पूरे अप्रैल महीने में इन्होंने लगातार 7 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख को अलग अलग जयंतियों पर कार्यक्रम सुने, एक एक दिवस जो हमने मनाया, जो कुछ भी विशेष दिन और अवसर थे उन सब पर आकाशवाणी से जो कुछ भी प्रसारित हुआ इनको बहुत अच्छा लगा। और 28 तारीख का हेलो आपकी पसंद जो अंतरा जी ने प्रस्तुत किया ये कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। और लिखते हैं कि आप सभी बड़े शानदार और मजेदार प्रस्तुतियों के साथ आते हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी कार्यक्रम में जो भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी सुनने को मिल रही है वो बहुत जरूरी है और काबिले तारीफ है, सभी कार्यक्रम ये सुनते हैं और पत्र के लिए धन्यवाद हम इन्हें दे दें।
1: बिल्कुल।
0: अगला पत्र कहाँ से आया?
1: अगला पत्र है उड़नताल कतौरी से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, समीर गायकवाड़ का। ये लिखते हैं कि 1 मई को आकाशवाणी बिलासपुर की 35वां स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम रात्रि 8 बजे प्रसारित किया गया जिसमें वरिष्ठ श्रोताओं, उद्घोषकों एवं सम्मानीय प्रबुद्धजनों की सारगर्भित विचार और आकाशवाणी के प्रति स्नेह, प्रेम, खट्टी मीठी यादें और रोचक जानकारियां इन्हें अच्छी लगी। कार्यक्रम की सुंदर और मनभावन प्रस्तुति के लिए संज्ञा टंडन जी को, सुनील चिपड़े जी को ये बधाई प्रेषित कर रहे हैं और साथ ही हम इनको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का संयोजन सुप्रिया भारतीयन जी ने किया था जो कार्यक्रम में शामिल है और उन्हें भी हम सभी बधाई प्रस्तुत करते हैं।
0: सच में अंतरा वाकई इतना अच्छा लगा था क्योंकि 35 साल का सफर कुछ कम नहीं होता है, हम अपनी शैशव अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ते अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और श्रोताओं का जो प्यार है वो कई गुना बढ़ते बढ़ते आज भी हमारे साथ है। तो यही आकाशवाणी बिलासपुर की सबसे बड़ी सौगात है, हमारी नेमत है कि आप सब हमारे साथ शुरू से जुड़े और अभी तक वो सभी श्रोता जुड़े हैं, तो हम सब अपने साथ इतने सारे अनुभव समेट लिए हैं कि समय कम पड़ता है कि हम क्या क्या बताएं अपने श्रोताओं को, अपने पुराने दिनों के बारे में, आकाशवाणी बिलासपुर से अपनी दोस्ती के बारे में और आपकी दोस्ती के बारे में। लेकिन कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ पहुंचा उसे आपने पसंद किया, पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं।
1: और हाँ, प्रेम को ही संजो सकते हैं हम लोग।
0: सच, बिल्कुल सही, क्या बात कही है तुमने। वही एक भाव है जो मन के अंदर हमेशा हरा भरा रहेगा, जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। धन्यवाद देते हैं। और ये चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू रविंद्र और रौनक सेन का पत्र है और बड़े सुंदर, मतलब छत्तीसगढ़ी बोली की मिठास इनके पत्र में छाई रहती है। लिखते हैं, जेठ के महीना चरचर चरचर करत घाम ऐसे लागते कि 11 बजे के बाद घर ले झन निकलतीस और कभू कभू काम पड़े म निकले पड़ते। और लिखते हैं, पर आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम ला सुने बर कहीं कोई गर्मी

0: जाड़ बरसात कुछ भी नहीं बाधा करे और हम आकाशवाणी बिलासपुर के कार्यक्रम हर मौसम एक बरोबर लगते और जैसन ढंग से हमार मयारू बहिनी मन और भैया मन सब जिन मिल के प्रस्तुत करते तो इमन के मन गदगद हो जाते। और 30 तारीख के चिट्ठी मिली कार्यक्रम ला अब्बड़ सुघर ढंग ले परोसिन और बहुत अकन श्रोता मन के ईमेल पाती ला फुरिया फुरिया के विस्तार पूर्वक पढ़िन तो इमन के अंतस में मया के फूल है रिगबिग फूल गए। अब हमार मयारू बहिनी अंतरा जी के आनंद में मुखार बिंद ले ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम ला सुनन माटी के स्वर कार्यक्रम सीमा साहू जी के चहकती बोली संग और ये सब मन के मदरस कस मीठ मीठ बोली सुन के ये मन के अंतस है समागे अंतस है एकदम गदगद हो गए। और 1 मई के आकाशवाणी बिलासपुर के स्थापना दिवस के विशेष कार्यक्रम अब्बड़ सुघर लागिस और इस सब कार्यक्रम पर हमन ला अपन अंतस ले माया भरे बहुत बहुत धन्यवाद देवत है। तो भाई अंतस आपके हमार अंतस ले जुड़ थे तो वही माया दुलार के यहाँ से वहाँ आना जाना होते तो वही माया दुलार से हम आप मनला भी धन्यवाद देतन ए पाती बर
1: बस दया माया बनाए रहे।
0: सही बात है।
1: ये अगला पत्र आया मैम बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं विनेश कुमार रागिनी और मुस्कान। लिखते हैं कि 1 मई को रात 8 बजे केंद्र से प्रसारित आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर जो प्रस्तुति दी गई वास्तव में बहुत शानदार लगी। इस कार्यक्रम के लिए दिल से बधाई देते हैं। 30 अप्रैल को चिट्ठी मिली कार्यक्रम की अच्छी प्रस्तुति के लिए भी बधाई दे रहे हैं। 3 मई को आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर रायपुर से जो प्रस्तुति अरविंद जी के इंटरव्यू द्वारा दी गई वो भी इन्हें बहुत अच्छी लगी। रजनीगंधा कार्यक्रम में नरगिस दत्त के कैरियर पर प्रस्तुति अच्छी लगी। 4 मई को रजनीगंधा में मीनाक्षी जी की प्रस्तुति अच्छी लगी। 5 मई को सदाबहार गीतों की प्रस्तुति का चयन अच्छा लगा और 6 मई को यादों के झरोके से कार्यक्रम में भी बहुत अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले। शानदार प्रस्तुति के लिए बधाई प्रेषित कर रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा के शानदार सफर में पूरी टीम के योगदान के लिए इन्होंने शुभकामनाएं लिख भेजी।
0: वाह वाह। अंतर जो पुराने हमारे ब्रॉडकास्ट कास्टर रहे हैं चाहे अरविंद माथुर हरिश्चंद्र वाद्यकार रजत सेन गुप्ता अमरेश्वर दुबे ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़े रहे आकाशवाणी बिलासपुर से और मुझे लगता है हमारे कई सारे पुराने श्रोता आज भी उनकी आवाज और उनकी प्रस्तुति को याद करते हैं। तो ये सफर ऐसा ही है आवाज की दुनिया का कि आवाजें रह जाती हैं लोग जरूर चले जाते हैं लेकिन आवाजें रह जाती हैं और वो अपनी अपना एहसास दिलाती रहती हैं कहीं ना कहीं हमारे दिल के भीतर तक वो छूती हैं इसीलिए हम याद रखते हैं लोगों को जिन्होंने अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं।
1: सही बात।
0: तो पत्र के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन अखिलेश लोकेश आशीष रवि शनि रयांश कान्हा आदित्य ने पत्र भेजा है। 3 मई का माटी का स्वर अच्छा लगा। सीमा साहू जी की प्रस्तुति ने अच्छी लगी बधाई दे रहे हैं। 4 तारीख का तुहर गोठ हमर गीत भी अच्छा लगा श्वेता जी को बधाई दे रहे हैं। 5 और 6 मई का ईमेल अच्छा लगा मानस को बधाई और हेलो आपकी पसंद के लिए 6 मई के लिए सुनील चिपड़े को भी बधाई दे रहे हैं। इस तरीके से आंधी हो तूफान हो तेज धूप हो या पानी हो हमें अपने जीवन की रक्षा करना है ये संदेश भी दे रहे हैं। खान पान का ध्यान रखना है और अपने को स्वस्थ रखना है और साथ में हम कहेंगे कि रेडियो भी सुनते रहना है।
1: बिल्कुल।
0: पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं।
1: अगला पत्र ले अडार नांदघाट से हमारे साथी हैं माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा। ये लिखते हैं कि 2 मई सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में डॉक्टर पुष्पा राव से रमाशंकर शुक्ला जी की बातचीत अच्छी लगी जिसपे पेट रोग के कारण लक्षण एवं उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी सुनने को मिली प्रेरणादायक लगी। ये इस कार्यक्रम के लिए बधाई लिख भेजते हैं। 7 मई सुबह 7:30 पर सदाबहार नगमे में अच्छे अच्छे गीत सुनवाए गए अच्छे लगे। 8:30 पर माटी के स्वर कार्यक्रम में बहुत सारे को शामिल किया गया अच्छे गीत सुनवाए गए इसके लिए पुष्पा साव जी को ये बधाई प्रेषित कर रहे हैं।
0: पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद देते हैं। और भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव बसंत भृगु विनय ठाकुर चोआराम सूरज बारेकर और नारायण ने पत्र भेजा है। 30 तारीख का चिट्ठी मिली कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा सुप्रिया जी मोनाली जी को बधाई। 1 तारीख का हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम इन्होंने भी पसंद किया है। 4 तारीख को मीनाक्षी द्वारा रजनीगंधा कार्यक्रम को भी पसंद कर रहे हैं और 3 मई का आरती द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा भी इन्हें अच्छा लगा है। 5 तारीख को मानस जी द्वारा प्रस्तुत रजनीगंधा अच्छा लगा है, जिसमें जल और पानी के संरक्षण पर केंद्रित करके बड़ी अच्छी प्रस्तुति थी। 6 तारीख का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम सुनील चिपड़े को बधाइयां जा रही है और 7 तारीख को मानस जी ने रजनीगंधा बड़े सुंदर अंदाज में बदलते मौसम पर केंद्रित करके प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से सप्ताह भर के कार्यक्रमों की ढेर सारी बधाई सभी प्रस्तुतकर्ताओं तक पहुँच रही है और हमारे श्रोताओं को भी पत्र के लिए
1: धन्यवाद देते हम
0: और आगे बढ़ते हैं।
1: अगला पत्र है बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति राम शरण चंद्रेश कुमार

0: चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति का। ये लिखते हैं, चिट्ठी मिली कार्यक्रम में 30 अप्रैल का प्रसारण इन्हें बहुत अच्छा लगा। दिलकश अंदाज में प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की और मोनाली ठाकरे जी की अच्छी लगी, हार्दिक बधाई। और आगे लिखते हैं, 3 मई को आकाशवाणी बिलासपुर की स्थापना दिवस पर ग्राम सभा कार्यक्रम में एक विशेष कार्यक्रम श्रोताओं की पुरानी यादों पर केंद्रित प्रस्तुत किया गया, हमें अच्छा लगा। प्रस्तुतकर्ता मंगू भैया और संयोजन इस कार्यक्रम की संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन जी को ये बधाई प्रेषित करते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा कि आप लगातार हमसे जुड़े हैं और कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सभी लोगों को जोड़ सकें, आपके शिक्षा, सूचना, मनोरंजन के जो हमारे लक्ष्य अंतरा, उनको हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकें। पत्र के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला पत्र हमारे पास आया अंतरा दतरंगी भाटापारा से। लिखने वाले हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखीलाल वर्मा। और ये लिखते हैं कि स्थापना दिवस पर प्रसारित विशेष कार्यक्रम किसानवाणी कार्यक्रम में जब इन्होंने सुना तो इसमें हरिश्चंद्र वाधिकार जी से मंगू भैया मैंने गोपाल पांडे की बातचीत सुनी, दिल खुश हो गया। मैंने कहा ना अंतरा कि जब हमारे श्रोता हमारे पुराने उद्घोषकों की आवाज फिर से सुनते हैं तो एक अलग सा जुड़ाव फिर से महसूस होता है। और इन्होंने अपने घर में केक काटकर आकाशवाणी बिलासपुर का स्थापना दिवस मनाया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप कितने अपनेपन से हमसे जुड़े हुए हैं। पत्र के लिए आपका भी धन्यवाद देते हैं।
0: अगला पत्र है रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू का। ये लिखते हैं कि 1 तारीख को रात्रि 8 बजे आकाशवाणी बिलासपुर की स्थापना दिवस पर प्रस्तुत कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा। पुराने बहुत सारे जानकार श्रुधी लोगों से बातचीत इन्हें बहुत अच्छी लगी। और प्रस्तुति के लिए संज्ञा टंडन और सुनील चिपड़े जी को बधाई देते हैं। संयोजन के लिए सुप्रिया भारतीयन जी को भी ये धन्यवाद और बधाई प्रेषित करते हैं। आगे लिखते हैं मैम कि 3 तारीख को ग्राम सभा कार्यक्रम में आकाशवाणी बिलासपुर के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम जो प्रसारित किया गया था गोपाल कृष्ण पांडे और जीतू भाई द्वारा, वो भी इन्हें बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात है।
0: और पूर्व उद्घोषक श्री हरीश चंद्र वाद्यकार जी द्वारा बताई गई जानकारियां भी इन्हें बहुत अच्छी लगी। इस पूरे कार्यक्रम के लिए इन्होंने आकाशवाणी बिलासपुर की पूरी टीम को बधाई संदेश भेजा है। आगे 5 तारीख और 6 तारीख के ईमेल कार्यक्रम के लिए मानस तिवारी जी को इन्होंने बधाई प्रेषित की है। 6 तारीख का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, सुनील चिपड़े जी को बधाई प्रेषित की है। 7 तारीख का माटी के स्वर कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, पुष्पा साव जी को भी इन्होंने प्रशंसा और बधाई भेजी है।
1: वाह, पत्र के लिए आपको भी हम बहुत सारा धन्यवाद देते हैं। और बढ़ते हैं अगले ईमेल की ओर। अंतरा, ये हमें भेजा है इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल मानस चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा ने। ये लिखते हैं कि मधुर स्मृति और बहुत सारा प्यार स्नेह के अभिलाषी होते हुए ये बोल रहे हैं कि 30 अप्रैल को चिट्ठी मिली कार्यक्रम इन्हें बहुत अच्छा लगा, मोनाली और दीदी को बहुत सारी बधाइयां। और 1 तारीख को शांतनु कपूर ने ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम की प्रस्तुति बड़े ही सुंदर ढंग से दी, उन्हें बधाई। और 8 बजे मधुर स्मृतियों को समेटे हुए आकाशवाणी केंद्र का 35वें वर्ष के पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, बड़ा ही जानदार, शानदार, मजेदार, जोरदार, जायकेदार, मसालेदार, यादगार और धमाकेदार लगा। ये काफी था, है ना, बहुत सारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है।
0: बहुत चटपटा बना दिया इन्होंने।
1: सुनील चिपड़े, संज्ञा टंडन, सुप्रिया जी सभी को बधाई दे रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि 2 तारीख को सुनील चिपड़े ने रजनीगंधा कार्यक्रम गुलजार पर केंद्रित करके प्रस्तुत किया था, बहुत अच्छा था। 3 तारीख को रजनीगंधा कार्यक्रम बहुत अच्छा था। 4 तारीख को रजनीगंधा कार्यक्रम के लिए प्रस्तुतकर्ता को बधाई दे रहे हैं। और 5 और 6 को मानस जी ने ईमेल करे गीत सुने रजनीगंधा कार्यक्रम बेस्ट बेस्ट प्रस्तुत किया, बेस्ट बेस्ट। तो सभी कार्यक्रमों के लिए इन्होंने हमें बधाई दी है। तो पत्र के लिए आपको भी उतना ही सारा शानदार, यादगार, धमाकेदार धन्यवाद।
0: चटपटा, खट्टा, मीठा, हाँ, सब कुछ
1: बिल्कुल।
0: अगला एक पत्र है, लिखने वाले हैं तेलीपारा बिलासपुर से रजन साहू, छन्नूलाल श्रीवास, सुशील देवांगन, एसएन प्रजापति। ये लिखते हैं कि 3 तारीख का माटी के स्वर कार्यक्रम सीमा जी की प्रस्तुति अच्छी लगी, 4 तारीख को तुहर गोट अमर गीत में श्वेता जी की प्रस्तुति अच्छी लगी, 5 तारीख का ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में मानस जी की प्रस्तुति, 6 तारीख को हेलो आपकी पसंद में सुनील चिपड़े जी की प्रस्तुति, 7 तारीख का सदाबहार नगमे और माटी के स्वर आपकी पसंद में पुष्पा साव जी की प्रस्तुति को इन्होंने बहुत सराहा है। इन्होंने बहुत सारी बधाई और प्रशंसा लिख भेजी।
1: क्या बात है, पिछली बार हमने स्थापना दिवस पर इनका एक बहुत ही खूबसूरत पत्र पढ़ा था और फिर हमने उसको अपने डिस्प्ले में भी लगाया था। तो जो भी आते हैं वो देखते हैं आपके उसके पत्र को कि आपने कितना सुंदर एक चित्र बनाकर भेजा था आकाशवाणी बिलासपुर के लिए।
0: इनके पत्र कलात्मक होते हैं
1: बहुत, और हर बार ये बकायदा उसको स्कैन करके फिर मेल करते हैं, अपना चित्र बनाते हैं फिर उसको स्कैन करते हैं फिर उसको मेल करते हैं। लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हैं, अपनी मौलिक जो

0: अभिव्यक्ति है उसको बरकरार रखते हुए वो नई तकनीक के साथ इसे हम तक प्रेषित कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या बात है भाई, जारी रखिएगा ये जुड़ाव, ये सम्मान, ये प्यार, यही तो हमारी सब कुछ है जिसके लिए हम प्रसारण करते हैं। और अब चलते चलते अपने श्रोताओं को इतना ही कहेंगे कि भीषण गर्मी का जो रेड अलर्ट है वही अभी सबसे चिंताजनक बात है, तो उसका ध्यान जरूर रखेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतेंगे इस गर्मी में, क्योंकि वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो अपना ध्यान रखना है और पर्यावरण का ध्यान रखना है, और साथ साथ रेडियो आपके साथ लगा हुआ है उसे सुनते रहिए और पत्र भेजिए। तो पत्र भेजने का, पोस्ट कार्ड का मैं पता बता रही हूँ, इस भीषण गर्मी में शायद हमारे श्रोता पोस्ट कार्ड डालने के लिए जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए पोस्ट कार्ड अभी कम है या नहीं ही आ रहे हैं। फिर भी पता है, कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, नूतन कॉलोनी सरकंडा बिलासपुर, पिन कोड है 495006। और पत्र भेजने का हमारा ईमेल का पता क्या है?
1: मेल का पता है PATREMAILBSP@gmail.com।
0: क्या बात है, आज बड़े विस्तार से हमने अक्षर अक्षर आपको ईमेल का पता बताया, ताकि कोई गलती ना हो और आपका पत्र सही ढंग से हम तक पहुंच जाए। तो अब इसी हंसी खुशी के साथ अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। सभी श्रोताओं को सुप्रिया
1: और अंतरा का
0: नमस्कार।

अभी हम प्रस्तुत कर रहे थे चिट्ठी मिली। प्रस्तुति थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और अंतरा चक्रवर्ती की। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत में संतूर वादन पंडित भजन सोपारी का।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: अभी आपने सुना शास्त्रीय संगीत में संतूर वादन पंडित भजन सफारी का। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 होने को हैं। समाचारों का अनुप्रसारण थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
3: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
4: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
2: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
5: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
2: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को

0: देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
1: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगु वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि

0: सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला

समाचारों का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है प्रेम पर्वत। गीत जानिसार अख्तर ने लिखा है और संगीत जयदेव का है।

अभी आपने देवता फिल्म का गाना सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत गुलजार का था, संगीत आर डी बर्मन का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में इशारा फिल्म का गाना, गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: आप हैं विविध भारती के संग। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाते हो, जंप कर जाते। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसके कुछ देशभक्ति गीत हमारे जहन में हर वक्त गूंजते हैं।

0: मेरा कंगना।
1: जैसा कि हमने आपसे कहा, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं प्रेम धवन को। प्रेम धवन की शख्सियत के कई पहलू रहे हैं। वो गीतकार रहे, संगीतकार रहे, यहां तक कि उन्होंने कुछ फिल्मों की कोरियोग्राफी भी की है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी जिंदगी की कहानी। इसके लिए हमें चलना होगा साल 1923 में अंबाला शहर में। अंबाला शहर में थे एक जेल सुपरिंटेंडेंट, जिनके घर 13 जून 1923 को एक बालक का जन्म हुआ। ये बालक आगे चलकर प्रेम धवन के नाम से विख्यात हुआ। प्रेम धवन के पिता जेल सुपरिंटेंडेंट थे और कुछ ही दिनों में उनका तबादला हो जाया करता था, इसलिए प्रेम का बचपन कई शहरों में बीता और शहर शहर भटकते हुए परिवार का कारवां पहुंचा लाहौर। तब तक प्रेम धवन कॉलेज जाने की उम्र में पहुंच चुके थे। मशहूर लाहौर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। यहां उनके सहपाठी थे इंद्र कुमार गुजराल और साहिर लुधियानवी। आई के गुजराल आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने और साहिर लुधियानवी एक जाने माने गीतकार। ऐसे जागरूक साथियों का साथ मिला और प्रेम धवन का रुझान युवा राजनीति में हो गया। उन्होंने उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में जुट गए। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई के लिए चेतना जगाने का काम नौजवान करते थे। प्रेम धवन पंजाब में इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के बैनर तले प्रेम धवन अपने साथियों के साथ गांव गांव, शहर शहर जाते नाटक और गीत संगीत के जरिए आजादी के लिए चेतना जगाते, लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा देते और इस तरह एक दिन भारत आजाद हो गया।

प्रेम धवन की दिलचस्पी इप्टा के हर पहलू में थी, संगीत में, गीत में, यहां तक कि नृत्य में भी। उन्होंने पंडित रविशंकर से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। उन दिनों में वे पंजाबी में गीत गाया करते थे। यही वो दौर था जब रविशंकर के भाई मशहूर नर्तक उदय शंकर के साथ ही शांतिवर्धन से प्रेम धवन ने शास्त्रीय नृत्य की तालीम ली। उन दिनों में वो डांस ट्रूप का हिस्सा हुआ करते थे। आगे चलकर प्रेम धवन मुंबई आ गए। उन दिनों के मशहूर संगीतकार खुर्शीद अनवर ने प्रेम धवन को अपना सहायक बना लिया। साल 1946 में प्रेम धवन की शुरुआत हुई बतौर गीतकार फिल्म पगडंडी के जरिए। सन 1948 में प्रेम धवन ने खेमचंद प्रकाश के लिए मशहूर फिल्म जिद्दी के गाने लिखे। आपको बता दें, जिद्दी वही फिल्म है जिसमें किशोर कुमार ने अपना पहला पार्श्व गीत गाया। हालांकि वो गाना जज्बी ने लिखा था, मरने की दुआएं क्यों मांगू, लेकिन इसी फिल्म में प्रेम धवन का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, राग छाया नट पर आधारित ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ।

0: साथ ये हमारा।
1: सलील चौधरी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है प्रेम धवन ने। सन 1955 में आई फिल्म तांगे वाली और इसका ये तांगा गीत।

0: झूठ बोलिया
1: कोई ना,
0: देखी मैं फुफुर तोलिया
1: कोई ना,
0: देखी मैं जहर तोलिया
1: कोई ना, भाई कोई ना।

सलील चौधरी के लिए प्रेम धवन ने फिल्म आवाज के गाने भी लिखे। अब बात करते हैं प्रेम धवन और हिंदी फिल्म संगीत जगत के बेहद वरिष्ठ संगीतकार अनिल विश्वास की जोड़ी की। सन 1951 फिल्म तराना, तलत महमूद का ये गाना।

सन 1953 में अनिल बिस्वास ने कई रागों पर आधारित एक गाना बनाया जो रागावली कहलाता है। फिल्म हमदर्द का ये गीत मन्ना डे ने गाया। इसके बोल प्रेम धवन के थे।

करीम धवन और रवि ने हिंदी फिल्म संगीत जगत के कुछ बेमिसाल गाने दिए हैं। रवि की पहली कामयाब फिल्म 10 लाख का ये गाना।

धवन की शख्सियत के कई पहलुओं में से एक था उनका संगीतकार वाला पहलू। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में संगीत नहीं दिया, गिनी चुनी फिल्में हैं उनके संगीत निर्देशन में। प्रेम धवन के दोस्त और मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने जिद करके फिल्म शहीद के संगीत निर्देशन की जिम्मेदारी प्रेम धवन को सौंपी।

0: ये सन 1965 की बात है। इस फिल्म के निर्माण के दौरान प्रेम धवन ने शहीद भगत सिंह की मां से मुलाकात की। ये उनके लिए बहुत जज्बाती अनुभव था और उन्होंने इस यादगार मुलाकात को एक गाने में ढाल दिया और वो गाना है मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये गाना।
1: तू न रोना के तू है भगत सिंह।

प्रेम धवन की संगीत निर्देशन वाली कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनके हीरो रहे हैं तारा सिंह। इन फिल्मों के नाम हैं वीर अभिमन्यु, किसान और भगवान, मेरा देश मेरा धर्म, भारत के शहीद। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रेम धवन ने नृत्य की तालीम भी ली थी और फिल्म संसार में जब जब मौका आया उन्होंने कोरियोग्राफी की। सन 1949 में फिल्म सिंगार के लिए उन्होंने नर्तकी कुक्कू को कोरियोग्राफ किया था। फिल्म नया दौर के इस गाने का नृत्य निर्देशन प्रेम धवन का ही था।

इसके अलावा प्रेम धवन ने आरजू, धूल का फूल, वक्त और गूंज उठी शहनाई जैसी फिल्मों के लिए नृत्य निर्देशन किया। जब जब मौका लगता, प्रेम धवन फौजियों के पास जरूर जाते। जब अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने अजंता आर्ट्स के जरिए फिल्मी सितारों के एक ट्रूप को फौजियों के पास पहुंचाया और उनके लिए कुछ कार्यक्रम किए, तब लद्दाख और नाथुला की यात्रा में प्रेम धवन उनके साथ थे। अपने बैनर त्रिवेणी पिक्चर्स के जरिए प्रेम धवन ने सामाजिक मुद्दों पर कई डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण किया। फिल्म संसार में योगदान के लिए सन 1970 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है। अभिनेत्री सुरैया अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। फिल्म का नाम था मोती महल और हुआ यूं कि स्टूडियो आते वक्त उनकी गाड़ी बिगड़ गई और वो शूटिंग के लिए बेहद लेट हो गई। जब वो शूटिंग के लिए फ्लोर पर पहुंची और उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि उनकी गाड़ी बिगड़ गई थी, इस वजह से वो लेट आई। उफ, कभी ना बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में। बस प्रेम धवन ने इस घटना को गाने में ढाल दिया और ये गाना सुरैया ने ही गाया।

मिसाल कलाकार, एक नायाब गीतकार, एक अद्भुत संगीतकार और प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर, बहुमुखी व्यक्ति

0: व्यक्तित्व के धनी प्रेम धवन को हमारा नमन। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को, मेरी तन्हाइयों को अपनी हंसी उधार दे दे, मेरे सूने लम्हों को अपना एक इकरार दे दे। मैं क्या दे पाऊंगा तुझे इस मोहब्बत के सिवा, बस तू मुझे अपना बना ले, मुझ पर ये एक एहसान कर दे।

0: मत जाओ मुझे यूं अकेला छोड़कर ऐ मेरी जान, मेरी हर धड़कन तुझसे ही है ये बात तू मान। अगर जाना ही पड़े तो वादा कर जल्दी लौट आएगी, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम है यूं देर तक मुझे ना तड़ पाएगी।
1: इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। इकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई।

चांद खिड़की पे ठहरा है तेरी राहों की तरह, और रात खामोश है मेरे जज्बातों के साथ।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। ना कल की फिक्र, ना आने वाले पल का हिसाब, जो मिला उसी में ढूंढ लिया हर बार कुछ खास। हवाओं के संग बहते हुए जीना ही उसूल बना लिया। जैसी भी मिली जिंदगी, उसे वैसे ही हंसकर गले लगा लिया।

चेहरे की लकीरों में भी नूर सवसता है, हर गुजरा हुआ लम्हा तुझ में फिर से हंसता है। वक्त चाहे जितना भी सफर तय कर ले, पर तू आज भी दिल को पहली मोहब्बत सा लगता है।

रास्तों से हर कांटा चुन लूं मैं, तेरे हर ख्वाब को अपना बना लूं मैं, तेरी हर खुशी पे अपनी दुनिया लुटा दूं मैं, तेरे हर गम को हंसकर अपना बना लूं मैं। बस एक अर्ज है दिल से, उम्र भर साथ निभाने का वादा कर दे।

मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।